एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 और 35 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियाँ अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाज़ों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन सृष्टि का चक्र भी अनोखा है। मनुष्य जन्म लेता है और समय पूरा होने पर शून्य में विलीन हो जाता है। ना जन्म मनुष्य के अधिकार में है और ना ही मृत्यु। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है जिसके द्वारा वह अपने समय का सदुपयोग कर सकता है, पर संसार में आने के बाद वह स्व और अहम के माया जाल में उलझ जाता है। भगवान ने उसके भीतर जिस स्नेह, प्रेम और सहानुभूति के कण बिखेर दिए हैं, उन्हें भूल वह अभिमानी हो उठता है। वह भूल जाता है कि उसे जो मिला है प्रभु की कृपा से ही मिला है। चिंतन के बाद लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जो सुख परमेश्वर की भक्ति में है वह तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। सच्चे मन से ईश्वर को याद करने से मन के विकार दूर होते हैं और आनंद की अनुभूति होती है।

मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। यह मनुष्य जन्म आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, मुक्ति एवं अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए ही मिला है, परमात्मा के साथ एक हो जाने के लिए ही मिला है। इस अमूल्य मानव देह को पाकर भी इसकी कद्र न की तो फिर मनुष्य जन्म पाने का क्या अर्थ? फिर तो जीवन व्यर्थ ही गया।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 117।

विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: सुबह 7:10 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर सुनिएगा गांधी चर्चा। गाने सुहाने ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर। सुबह 9:00 पेश किया जाएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी। गीतों का कारवां कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10:00। 10:30 पर आनंद लीजिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम होगा पहाड़ों के सुर। जय हिंद गीतमाला कार्यक्रम का समय रहेगा 11:05। 11:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:00 सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 12:30 पर आप सुनेंगे महिला साथियों के लिए विशेष कार्यक्रम सुनो सखी। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिलीज किए जाएंगे। 5:10 पर सुनिएगा गैर फिल्मी भजन। 5:30 पर युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवा मंच। आज कार्यक्रम में बातें होंगी फिल्मों के बारे में फिल्मी फ्राइडे के अंतर्गत। 6:05 पर किसान वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा मौजा ग्राइंडियां। कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 6:35। 7:10 पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम जन विश्वास। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 8:00 सुनिएगा विविध संगीत कार्यक्रम होगा सबरस। 9:15 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वर्ष 1986 में आई मजलूम फिल्म के गीत कारवां सुरों का। कार्यक्रम में सुनिएगा फिल्म संगीत 9:30 पर। 10:00 सुनिएगा नई फिल्मों से गीत। कार्यक्रम होगा बॉलीवुड बीट्स चित्रपट संगीत। ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से 9:20 11:00 3:00 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिलीज किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रिलीज किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा सुबह 8:00 समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 1:00 5:00 7:00 और 11:00 हिंदी में समाचार। 1:05 5:05 7:05 और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 News@9। तो ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिलीज किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। थोड़ी देर में 6:55 पर आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिलीज किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासी परिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वं अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जा क्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलम् एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षानिर्माणक्षेत्रे निर्यातोन्मुखनीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्यविषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 85th नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूर भाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः चिंतां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्राद् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्रीगोयलः तत्रत्य भैषज उद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां

0: सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। एतद् पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज, सनी दयानन्दः, तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has said that when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi yesterday, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. The centre has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Centre under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic, deep fake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovering systems, and unauthorized access to financial and digital services. The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms, or phone calls. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Uttarakhand beginning today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed concern that ongoing conflicts are imposing costs and triggering changes far beyond the regions. The minister said this while participating in a discussion with his Finnish counterpart Elina Voltunen and Assistant Foreign Minister of UAE Lana Nusebe on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland. Dr. Jaishankar also stressed the need for the international community to continue efforts to mitigate their consequences and create conditions for diplomacy. The Enforcement Directorate ED has arrested Naresh Kumar, the then superintendent in the Office of Director Development and Panchayat Haryana, in connection with the ongoing investigation in IDFC Bank fraud case. He was arrested under the provisions of Prevention of Money Laundering Act, PMLA, 2002. Investigation in the case has revealed embezzlement of public funds amounting to 645 crore rupees from the bank accounts of Haryana government, Chandigarh administration, and two private schools maintained with IDFC First Bank. US President Donald Trump said last night that he has called off new military strikes on Iran hours after threatening to escalate the war by seizing control of the country's oil industry. In a social media post, Trump said that he made the move based on the fact that discussions with Iran have been brought to the highest level of Iranian leadership and approved. The announcement came after 2 days of back-and-forth attacks between the US and Iran had pushed the Middle East closer to the resumption of a full-scale war. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston in Birmingham. The month-long tournament will be hosted across England and Wales, with the final set to take place on the 5th of July at the iconic Lord's Cricket Ground. India will start their campaign against arch-rivals Pakistan on Sunday. Harmanpreet Kaur-led Indian side will be looking to create history as they aim for their first Women's T20 World Cup title. And that is the end of this news bulletin.
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सुहानी।
5: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: दोस्तों नमस्कार, सुबह सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आज के विचार के साथ।
2: आज का विचार,
1: जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। चांद और सूरज दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, इसलिए स्वयं को पहचानिए और अपनी क्षमता पर विश्वास रखिए। जो स्वयं पर भरोसा कर लेता है, उसके लिए कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती।

इस खूबसूरत से गीत के बाद सुबह सुहानी कार्यक्रम में बात करते हैं उन घटनाओं की जिनके कारण आज का ये दिन खास बन गया। बात करते हैं वर्ष 2002 की। स्वीडन के साथ मैच ड्रॉ होने के साथ ही अर्जेंटीना आज के दिन विश्व कप फुटबॉल से बाहर हो गया। 2004 में आज के दिन सवन्ना जॉर्जिया में समूह 8 सम्मेलन आज के दिन संपन्न हुआ था। 2007 में आज ही के दिन कनाडा में होने वाले जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 भारतीयों का चयन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 2008 में प्रख्यात फिल्म निर्देशक मृणाल सेन को 10वें ओशियाना सिनेफेन फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया। आज के दिन 2016 में साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब अपने नाम किया।

0: अनस्थियों के जन्म आज के दिन हुए आपको बता देते हैं। 1915 में आज के दिन जन्म हुआ था कन्नड़ लेखक, नाटककार, मंच कलाकार, निर्देशक, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सी के नागराज राव का। 1932 में आज के दिन हिंदी, तमिल और मलयालम चलचित्र अभिनेत्री पद्मिनी का जन्म हुआ। आज के दिन 1932 में जन्म हुआ था देश के प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर ई श्रीधरन का। जी हाँ दोस्तों, देश के प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर, कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो रेल का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनकी इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में इन्हें पद्मश्री और वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ई श्रीधरन को भारत के मेट्रोमैन के रूप में भी याद किया जाता है।
1: आओ बच्चों, खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला, मोहन सोहन जादो माधो, सब पैसेंजर सब पैसेंजर, रेडी, एक।

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक।

कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुलपक डंडी टीले पे झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडीगल डिंडीगल कुक्कल मछलीपट्टनम दिल्लीपट्टनम दिल्लीपट्टनम मछलीपट्टनम उंगोल नर्दिगोल नर्दिगोल उंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर चुक चुक चुक चुक चुक चुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक

सुबह सुहानी कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे कि इन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए। आपको बता दें 1947 में आज के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का। किन महान हस्तियों के निधन आज के दिन हुए ये भी आपको बता देते हैं। 1972 की बात करते हैं। आज के दिन महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक डीजी तेंदुलकर का निधन हुआ। आज के दिन निधन हुआ था 1976 में गोपीनाथ कविराज का। संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक थे गोपीनाथ कविराज। 1989 की हम बात करते हैं। आज के दिन तुर्की के ओटोमन राजसी वंश की आखिरी शहजादी नीलोफर का निधन हुआ। आज के दिन 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी नारायण रेड्डी का निधन हुआ। कार्यक्रम में एक बार फिर रुख करते हैं मनोरंजन की ओर। आपको सुनवाते हैं ये गीत।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में बात करते हैं आज की, आज है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम के विरोध में ये दिवस विश्व भर में 12 जून यानी आज के दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बाल श्रम की समस्या का समाधान एवं प्रत्येक बच्चे को उसका अधिकार दिलाने में सहायता प्रदान करना है। हमारे देश में बाल श्रम की समस्या सदियों से चली आ रही है। इसे समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। सरकार द्वारा 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत एक बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति नियुक्त की गई। इसके अलावा वर्ष 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाई गई। बाल श्रम बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक एवं सामाजिक हितों को प्रभावित करता है। दोस्तों, हमारे देश में बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है, ऐसे में उनके हाथ में कलम और पुस्तक होनी चाहिए, ना कि काम या मजदूरी का बोझ। याद रहे, हमारे देश में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार के व्यवसाय में श्रम कराना पूरी तरह से गैर कानूनी है और एक दंडनीय अपराध है।

0: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शुरू करते हैं कार्यक्रम में खबरों का सिलसिला।
1: खबर आज की।
0: विश्व प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में कल यानी 13 जून को भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा, जिसके लिए स्थानीय लोगों और क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मैच के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोस्तों, आजकल हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन चल रहा है, जिसके चलते बाहरी राज्यों से बहुत से पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ग्रीष्मोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका लुत्फ शिमला में पर्यटक ले सकते हैं।

मौसम की बात करें तो पिछले रोज धर्मशाला में बरसात हुई, जिसके कारण धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों का मौसम सुहावना बना हुआ है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा में आप सुना करते हैं महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से वाचन। आज प्रस्तुत है दूसरे भाग का 18वां अध्याय, रंग भेद। न्यायालय का चिन्ह तराजू है, एक निष्पक्ष अंधी परंतु चतुर बुढ़िया उसे थामे हुए है। विधाता ने उसे अंधी बनाया है जिससे वह मुंह देखकर तिलक ना करे, बल्कि जो व्यक्ति गुण में योग्य हो उसी को टीका लगाए। इसके विपरीत नेटाल के न्यायालय से वहां की वकील सभा मुंह देखकर तिलक करवाने के लिए तैयार हो गई थी, परंतु अदालत ने इस अवसर पर अपने चिन्ह की प्रतिष्ठा रख ली। मुझे वकालत की सनद लेनी थी, मेरे पास बंबई के हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र था। विलायत का प्रमाण पत्र बंबई के हाई कोर्ट के कार्यालय में था। प्रवेश के प्रार्थना पत्र के साथ सदाचरण के दो प्रमाण पत्रों की आवश्यकता मानी जाती थी। मैंने सोचा कि ये प्रमाण पत्र गोरों के होंगे तो ठीक रहेगा, इसलिए अब्दुल्ला सेठ के द्वारा मेरे संपर्क में आए हुए दो प्रसिद्ध गोरे व्यापारियों के प्रमाण पत्र मैंने प्राप्त कर लिए थे। प्रार्थना पत्र किसी वकील के द्वारा भेजा जाना चाहिए था और साधारण नियम यह था कि ऐसा प्रार्थना पत्र एटर्नी जनरल बिना पारिश्रमिक के प्रस्तुत करे। मिस्टर एस कम्ब एटर्नी जनरल थे। हम यह जानते हैं कि वे अब्दुल्ला सेठ के वकील थे। मैं उनसे मिला और उन्होंने खुशी से मेरा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार किया। इतने में अचानक वकील सभा की ओर से मुझे नोटिस मिली। नोटिस में न्यायालय में मेरे प्रवेश का विरोध किया गया था। उसमें एक कारण यह दिया गया था कि वकालत के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र के साथ मैंने मूल प्रमाण पत्र नथी नहीं किया था, पर विरोध का मुख्य मुद्दा यह था कि अदालत में वकीलों की भर्ती करने के नियम बनाते समय यह संभव ना माना गया होगा कि कोई काला या पीला आदमी कभी प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र देगा। नेटाल गोरों के साहस से बना था, इसलिए उसमें गोरों की ही प्रधानता होनी चाहिए। यदि काले वकील प्रवेश पाने लगेंगे तो धीरे धीरे गोरों की प्रधानता जाती रहेगी और उनकी रक्षा की दीवार नष्ट हो जाएगी। इस विरोध के समर्थन के लिए वकील सभा ने एक प्रसिद्ध वकील को नियुक्त किया था। इन वकील का भी दादा अब्दुल्ला के साथ संबंध था। उन्होंने मुझे उनके मार्फत बुलवाया, मेरे साथ शुद्ध भाव से चर्चा की, मेरा इतिहास पूछा, मैंने यह बताया। इस पर वे बोले, मुझे तो आपके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है, मुझे डर इस बात का था कि कहीं आप यहीं जन्मे हुए कोई धूर्त तो नहीं है, दूसरे आपके पास

प्रमाण पत्र नहीं है, इससे मेरे संदेह को बल मिला। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दूसरों के प्रमाण पत्रों का उपयोग करते हैं। आपने गोरों के जो प्रमाण पत्र पेश किए हैं उनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे आपको क्या जाने, आपके साथ उनकी पहचान ही कितनी। मैं बीच में बोला, लेकिन यहां तो मेरे लिए सभी नए हैं। अब्दुल्ला सेठ ने भी मुझे यहीं पहचाना है। ठीक है, लेकिन आप तो कहते हैं कि वे आपके गांव के हैं और आपके पिता वहां के दीवान थे, इसलिए आपके परिवार को तो वे पहचानते ही होंगे ना। आप उनका शपथ पत्र अगर पेश कर दें तो फिर मुझे कोई आपत्ति ना रह जाएगी। मैं वकील सभा को लिख दूंगा कि मुझसे आपका विरोध नहीं हो सकेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa. जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
5: Nexa.
6: दोस्तों, इस दौड़ती भागती जिंदगी में संवाद बहुत जरूरी है और यही कोशिश करता है आपका अपना आकाशवाणी धर्मशाला का परिवार।
7: जी श्रोताओं, चैटिंग और मैसेजिंग की इस दुनिया में आकाशवाणी धर्मशाला आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा मंच जहां जुड़ती है आम जनता की आवाज, उनके विचार, उनके सुझाव और उनकी उम्मीदें।
6: आपकी इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम जनवाणी, जहां हर राय मायने रखती है, हर आवाज गूंजती है।
7: साथियों, जनवाणी सशक्त माध्यम है आपके और हमारे बीच संवाद का, जिसमें आप फोन कॉल्स के माध्यम से सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं।
6: क्योंकि आपकी हर बात हमारे लिए मायने रखती है, तो आइए मिलकर अपनी बातें साझा करते हैं कार्यक्रम जनवाणी में, हर शुक्रवार सुबह 9 बजे FM धर्मशाला।

0: SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स, और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। नई विक्टोरियस, स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम। अब हर सफर बनाएंगे और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, लीजिए सुनिए ये भक्ति रचना।

0: अभी आप सुन रही थी देशगान, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ही धर्मशाला केंद्र है। 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिलीज किए जाएंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
4: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है, उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है, इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
4: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
3: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
5: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
6: We signed this year a free trade agreement with Europe.
7: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
8: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
9: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
8: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार PM ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में PM ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
12: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over Rs. 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
4: वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
11: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilized for the nation.
13: In the area, we see immense potential of hydrocarbon. At the initiative of Union Home Ministry, particularly at the initiative of Honorable Union Home Minister, both Assam and Nagaland is joining hands to share the proceeds of this hydrocarbon potential in terms of royalty and facilitate its extraction so that nation at large can be benefited.
11: Nagaland Chief Minister Nephew Ryu has also termed the signing of the tripartite MOU for mineral oil operations in the Assam-Nagaland boundary areas as a historic milestone. We have more from our correspondent in Kohima.
14: Expressing gratitude to the central government, Mr. Ryu said its commitment to peace, stability and development in the Northeast had made the agreement possible. He also thanked Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and the government of Assam for their cooperation and goodwill. Mr. Ryu said the MOU reflects the maturity of relations between Nagaland and Assam and their shared commitment to regional development. He noted that while unresolved border issues had hindered resource development for decades, the MOU provides a framework that will benefit both present and future generations. Mr. Ryo said the agreement will unlock the economic potential of sectors A to F along the Assam-Nagaland border, enhancing economic activity, resource management, interstate cooperation, and creating new opportunities for the people. Mary Mayase, Akashvani News, Kohima.
11: The center has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Center under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic deepfake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. More from our correspondent.
15: The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms, or phone calls. They collect facial data of victims, sometimes by convincing them to perform simple actions such as blinking, turning their head, or speaking on camera. The government has advised financial institutions, including fintech companies, to strengthen deepfake detection mechanisms and enhance customer onboarding systems. The individuals have also been urged to secure their biometric data, remain alert to suspicious login attempts, and regularly monitor email or SMS notifications related to financial activities. Citizens are also advised to report any suspicious financial transactions immediately through the National Cybercrime Reporting Portal. With Dipendra Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
11: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has stressed the need for resilient and diversified supply chains, sustained diplomatic efforts, and greater international cooperation to deal with the fallout of ongoing conflicts. Participating in a discussion on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland, Dr. Jaishankar said, "The impact of the conflicts extend far beyond the regions where they occur." He said there is broad agreement that the international community must continue efforts to mitigate the consequences of conflicts and create conditions conducive to diplomacy. On energy security, Dr. Jaishankar reiterated that India's energy choices are guided by national interest and that purchases are made on considerations of affordability and availability.
16: Today, our largest oil supplier, little less than 40%, is Russia. Our largest gas supply is the United States. And that was not the case till the 28th of February of this year. The main supplier was Qatar. So what is happening is the world is also de-risking on the region. People are looking for alternative energy sources and saying, okay, I'm prepared to buy at longer distance, maybe at a higher cost, but there is a greater security about it, predictability about it. So what I see in a way is that the global energy scenario will fundamentally change after this.
11: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal, Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards positioning India as a global leader through its foreign policy. A report.
8: Over the last 12 years, India emerged as a formidable global leader driven by bold initiatives that fuse ambition with action. Prime Minister Narendra Modi's leadership has anchored these efforts in responsibility and inclusivity, ensuring India's voice resonates across global platforms. India strengthened its old relationship while making new friends, infusing fresh energy into India's foreign policy while keeping the principle of India first supreme. Humanitarian assistance and disaster relief operations are a vital part of India's global engagement. Cyclone Dithwa made landfall on the eastern coast of Sri Lanka In November 2025, leaving hundreds dead, thousands displaced, and critical infrastructure damaged. Standing in solidarity with the people of Sri Lanka, India launched Operation Sagar Bandhu to provide immediate humanitarian assistance and disaster relief to Sri Lanka. The effort brought together the Indian Navy, Air Force, Army, and disaster response team in a coordinated rescue and relief operation. India provided comprehensive support to Sri Lanka, including immediate relief supplies, medical aid, search and rescue assistance, and restoration of damaged infrastructure. Thanking the Indian government, Sri Lanka's Deputy Minister for Ports and Civil Aviation, Janith Ruwan Kodithuwakku, stated that India had shown immense warmth and solidarity toward the people of Sri Lanka.
17: We are very, very thankful to India because since

जी हाँ दोस्तों, धर्मशाला और इसके आसपास का मौसम आजकल खुशगवार बना हुआ है। धूप निकलती है तो गर्मी भी होती है, लेकिन जैसे ही बादल आ जाते हैं, हल्की सी बरसात हो जाती है तो हल्की सी ठंड का एहसास भी होता है। जी हाँ, यही मज़ा है पहाड़ों में रहने का, और ऐसे मौसम में घूमने का भी एक अलग ही मज़ा है।

0: लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
6: Nexa.
9: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC apply.
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last.

0: विजिट योर नियरेस्ट नेक्सा शोरूम, TNC अप्लाई।
1: ब्रेक के बाद गाने सुहाने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में लीजिए सुनिए अनोखा अंदाज फिल्म का ये गीत। संगीत नदीम श्रवण का है।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: नई विक्टोरियस, स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम। अब हर सफर बनाएंगे और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
4: रिश्तों की खुशबू से महकेगा हर पल,
5: जहां संवरेगा सखियों का आज और कल,
6: जानकारी, मनोरंजन और भावनाओं से भरपूर,
5: जहां आप नहीं रह पाएंगे हमसे दूर।
4: आ रहा है आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी,
6: जहां मिलेंगे जीवन को बेहतर बनाने वाले विचार
5: और खान पान में बनाएंगे कई व्यंजन और अचार।
6: तो सोमवार से शनिवार सुनना ना भूलिए
5: आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी,
4: दोपहर 12:30 पर
6: सिर्फ आकाशवाणी धर्मशाला से।
7: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ ₹1999 डाउन पेमेंट और ₹1999 EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स ₹72,100 तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
8: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
9: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹60 से बढ़ाकर ₹80 प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य ₹40 से बढ़ाकर ₹50 प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य ₹90 से बढ़ाकर ₹150 प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को ₹60 से बढ़ाकर ₹80 प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए ₹30 प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
0: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में अनाड़ी फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गानी सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नशा चाहे किसी भी रूप में हो, व्यक्ति विशेष और समाज दोनों के लिए घातक ही होता है। देश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में भारत सरकार और राज्य सरकार कृत संकल्प है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया था, जो एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और समुदाय के बीच मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना और एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश सरकार भी एंटी चिट्टा अभियान चलाकर समय समय पर नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है। लेकिन ये मुहिम तभी सफल हो सकती है जब ये एक जन आंदोलन का रूप ले ले। नशा मुक्त भारत, ये विषय है आज के जनवाणी कार्यक्रम का। 01892224391 यह है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। नशा मुक्त भारत में आपका योगदान क्या है, इस विषय पर आप क्या सोच रखते हैं, यही कुछ बातें आज इस कार्यक्रम में हम आपसे करने वाले हैं। तो डायल कीजिए 01892224391 स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर और कीजिए हमसे बात। हेलो,
1: संजीव जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: आज आपने बहुत ही बढ़िया विषय चुना है, क्योंकि जो नशाखोरी है हमारे देश और समाज को ऐसे खोखला करके रख दिया है इसने कि हमारे जो नौजवान है उनकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: देखिए, नशा जो है ये केवल पैसे का खर्चा नहीं है, इससे जो भी नशा करता है उसकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है, उसके परिवार और देश और समाज के लिए भी इतना खतरनाक है कि पूछो ना
0: जी।
1: तो इसलिए हमको चाहिए कि मिलजुल करके जो भी हमारी नजर में आता है उसकी शिकायत की जाए पुलिस विभाग में या किसी जो भी इसके संबंधित है। और जो भी बच्चे हैं, मैं उनको शिक्षा देना चाहता हूँ कि आप पहले तो शौक शौक में शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद आपको उसकी इतनी लत लग जाती है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। तो इसलिए आपका कोई ऐसा दोस्त हो जो आपको इसके बहकावे में लेकर के आपको उसकी लत लगाए, तो उसके साथ छोड़ दीजिएगा।
0: जी, परिचय देना चाहेंगे अपना?
1: मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरिया के गांव मेहतापुर से महेंद्र सिंह राणा।
0: जी राणा जी, बहुत अच्छे विचार आपने रखे आज के विषय के संबंध में। इसी तरह से जुड़े रही आकाशवाणी धर्मशाला के संग। धन्यवाद कॉल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप भी नशा मुक्त भारत विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। 01892224391 यह स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर।

0: जी हाँ दोस्तों, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और नशे के खिलाफ जो जंग छिड़ी है उसमें पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आप कितने तैयार हैं बताइए। 0182224391 है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए।
1: हेलो
0: जी, कौन सा बोल रहे हैं?
1: जी भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के बारे में?
1: विषय बहुत अच्छा है भैया, जागरूकता के लिए। और आज के समय में हम देखते हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि ज्यादातर गांवों में कस्बों में मतलब आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इस ओर काफी लिप्त होने लग गए।
0: जी तो किस तरह से
1: किसी भी राष्ट्र की धुरी वहाँ का नौजवान युवक होता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको चाहे वो शासकीय रूप से मतलब प्रतिबंध हो या फिर सामाजिक रूप से, किसी न किसी रूप से इसको जड़ से खत्म करना होगा।
0: जी आप इस मुहिम में किस तरह से साथ निभा रहे हैं ये बताइए।
1: हम तो बहुत बचपन से इस दिशा में सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं भैया, और लगातार किसी न किसी माध्यम से या हम लोग जैसे कार्यक्रम एक संगठन बना के कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं, जिसमें जो व्यक्ति नशा वगैरह छोड़ता है उसको पुरस्कृत भी करते हैं।
0: जी बहुत
1: तो
0: अच्छा कार्य कर रहे हैं।
1: छोटे रूप में ही सही, अगर आप चार लोगों का भी अगर काम कर दे तो ये बहुत बड़ा काम होगा।
0: जी बिल्कुल, और देखिए जागरूकता बहुत जरूरी है, खुद जागरूक रहिए, दूसरों को जागरूक कीजिए और एक नशा मुक्त भारत का निर्माण करने में सहयोग
1: दीजिए। नशा परिवार को खोखला कर देता है भैया, इसलिए ये हम बहुत जरूरी समझते हैं कि उससे पूरा परिवार जुड़ा रहता है तो काफी ज्यादा नुकसानदेह रहता है।
0: जी और कुछ कहना चाहेंगे योगेश जी?
1: नहीं भैया, और इतने अच्छे विषय को रखने के लिए पूरे आकाशवाणी परिवार को हम शुभकामना देते हैं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।
1: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों ये थे योगेश जांगड़े जी, छत्तीसगढ़ से इन्होंने फोन किया था और बहुत ही खूबसूरत विचार इन्होंने रखे आज के विषय के बारे में। और ये सही बात है दोस्तों, जागरूकता ही बचाव है। हेलो
2: हेलो।

0: जी नाम बताइए।
1: हेलो नमस्कार संजीव जी, मैं रतन चंद बोल रहा हूँ।
0: जी नमस्कार रतन जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद।
0: जी कहिए क्या कहना चाहेंगे।
1: मैं तो ये कहना चाहूंगा जी कि ये बिल्कुल जो आप फरमा रहे हैं कि ये तो पूरा हमारा जो युवा पीढ़ी है वो इसकी गिरफ्त में आ चुकी है, और हिमाचल जैसे प्रदेश में भी अब ये चिट्टा वगैरह का जो प्रसार हो रहा है बहुत, इससे तो ये तो एक चिंता का विषय है
0: जी बिल्कुल, और इसीलिए प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।
1: करा रहे हैं बहुत है, सारी एजेंसियां सतर्क हैं, हिमाचल सरकार भी बहुत जोर लगा रही है, परंतु आपका जो विषय है कि हमारा क्या योगदान है।
0: जी बिल्कुल,
1: अब मैं हूं तो मेरे को मिला के ही समाज बना है, हर आदमी कड़ी है समाज की, तो हमारा पूरा समाज का दायित्व है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बच्चा हमारा इसमें लत में चला तो नहीं गया।
0: जी
1: इसके लिए हम हर माँ बाप को, चाहे उनका बेटा कितना ही संस्कारी है, एक नजर उसके ऊपर रखनी चाहिए। जब उसके कपड़े धोते हैं तो क्या उसकी जेब में से कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं आपको मिल रहा है?
0: जी
1: उसके शरीर में कोई सिरिंजिंग के निशान तो नहीं है?
0: जी
1: ये इंडिकेटर है जो मैं बता रहा हूँ
0: जी बिल्कुल, और सबसे पहले तो उसके व्यवहार से ही हमें पहचान लेना चाहिए।
1: बाहर से भी पता लग गया। और दूसरा देखिए कि आपके छोटे मोटे पीतल के बर्तन तो नहीं घर से गुम हो रहे हैं, गड़बी लोटा जिसको आसानी से बैग में छुपा के ले जाया जा सकता है।
0: जी तो उन बर्तनों से क्या किया जाता है?
1: उन बर्तनों से अब जब बंदा नशेड़ी बन जाता है तो इस हमारे नशा जो कोई भी नशा है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसको अफेक्ट करता है, तो जैसे उसका नशा टूटता है तो फिर मन उसको वे करता कि भाई जल्दी कोई जुगाड़ कर, नहीं तो अब मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तेरी टांगे जवाब दे जाएंगे, तेरे बाजू जवाब दे जाएंगे।
0: जी
1: तो पैसे तो हर आदमी के पास इतने नहीं होते हैं, आस्ते आस्ते पैसे का होती जाती है, नहीं मिलता पैसा, तो क्या करता है कि जब वो टूटता नशा तो अब पैसा है नहीं, तो छोटा मोटा बर्तन ले जाके उसको जैसे 500 रुपए की चीज है उसको 50 रुपए में बेच देता कि मेरा एक पुड़िया का छोटी मोटी का जुगाड़ बन जाए, मेरा आज का दिन निकल जाए।
0: जी लेकिन रतन जी, अगर समाज में जागरूकता रहे और सभी इसके लिए तैयार हों तो इस तरह के कामों से बचा जा सकता है और अपने युवा साथियों को भी बचाया जा सकता है।
1: क्यों नहीं बचाया जा सकता? मैं, मेरा बच्चा एक पीतल का बर्तन बेचने जा रहा है तो दुकानदार का फर्ज बनता है, क्यों बेच रहा तू इसको?
0: जी बिल्कुल सही बात अपनी की है।
1: तो दुकानदार भी समाज का अंग है ना जी।
0: जी
1: तो यदि समाज, देखो सर संजीव जी, ये तो एक बहुत गंभीर विषय है, जब पूरा समाज यदि जो मैं बोल रहा हूँ जागरूक हो जाए तो कोई हिम्मत नहीं है कि कोई नशा बेच सके और किसी की हिम्मत नहीं है जो नशा कर सके।
0: जी और इसीलिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
1: जागरूकता, हाँ, कितना पैसा तो एड्स पर खर्च कर रहे हैं हिमाचल सरकार, ये कर रही है, कोई मैराथन दौड़ हो रही है और दूसरे कोई जो एनजीओ हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, पर जैसे फिर भी पता लग जाता तो समाज का एक भी दायित्व है, क्योंकि माँ बाप कई ऐसे लाचार होते हैं और जो बेटा है उनका वो जवान होता तो उनका तो कहना ही नहीं मानता कि मैं तेरे को हॉस्पिटल ले चलेंगे। आप किसी थोड़ा दिमागी तौर पर जो आदमी ठीक नहीं है उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो बोलते क्यों ले जा रहे हैं, कोई मैं पागल हूँ?
0: जी बिल्कुल,
1: तो इसी तरह से फिर भी नहीं जाना चाहता है, तो समाज का एक कर्तव्य है कि उसको किसी न कैसे डी एडिक्शन सेंटर में उनकी मदद करे माँ बाप की और उसको वहां पहुंचाए।
0: जी रतन जी, आप जैसे बुद्धिजीवी अगर समाज में है तो समाज में जागरूकता जरूर फैलेगी और नशे की लत से बहुत लोगों को हम बचा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में फोन करने के लिए। सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।
1: नमस्कार, धन्यवाद
0: जी। दोस्तों आप भी कार्यक्रम में हमें फोन कर सकते हैं। जनवाणी कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa.
3: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
4: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
3: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
4: भाभी छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
5: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: जनवाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है नशा मुक्त भारत। एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो
6: सर, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार। रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए पहले, या उसे दूर हट जाइए।
6: जी सर, मेरा नाम सुखवीर सिंह है सर।
0: सुखवीर जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
6: मैं सर बोल रहा हूँ भड़ियाड़ा गांव गड्डल से जी।
0: जी जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे?
6: सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी रतन जी ने जो बातें बताई बहुत अच्छी बताई, बड़ा अच्छा किया, पर मेरे अपने एक विचार हैं जो मेरे ही विचार हैं सर।
0: जी बताइए।
6: अदरवाइज नशे का सिर्फ एक ही रूप नहीं हम देख रहे हैं ना, चिट्टा ये ड्रग्स ये नशे का सिर्फ एक ही रूप नहीं है सर।
0: जी
6: नशा कई रूपों में मतलब यहाँ क्या बोलते हैं है हमारे समाज में ना जी।
0: जी बिल्कुल।
6: हाँ, छोटा नशा और बड़ा नशा बोल सकते हैं इसको हम। सबसे बड़ी बात छोटे नशे में बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा
0: जी
6: है ना जी, ये भी तो नशे का ही रूप है सर।
0: जी बिल्कुल।
6: हाँ, और लिकर, लिकर जिसको हम दारू बोलते हैं या शराब बोलते हैं, ये भी नशे का रूप है सर।
0: जी कहने की बात है कि कोई भी मादक पदार्थ है वो हानि तो पहुंचाएगा ही। सुखबीर जी कार्यक्रम में हम आपसे अभी बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय हुआ जाता है प्रादेशिक समाचारों का। प्रादेशिक समाचारों के बाद फिर से इस कार्यक्रम में हम हाजिर होंगे। धन्यवाद फोन करने के लिए। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी। कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निःशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज शिमला में मोदी सरकार के 12 साल विश्वास विकास और जनकल्याण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की अंतिम संध्या में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि होंगे उपस्थित। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र किए जारी। 13 व 14 जून को आयोजित होंगी परीक्षाएं। आकांक्षी जिला चंबा में जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर। 1400 अधिकारी व कर्मचारी देंगे अपनी सेवाएं। और प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भाजपा आज शिमला में प्रबुद्धजन संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। इस संगोष्ठी में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। संगोष्ठी का विषय मोदी सरकार के 12 साल विश्वास विकास और जनकल्याण के रखा गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। संगोष्ठी में आयुष्मान भारत, जन औषधि, उज्ज्वला, पीएम आवास जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं और देश के विकास में आए बदलावों पर मंथन किया जाएगा। संगोष्ठी के माध्यम से भाजपा केंद्र सरकार की नीतियों और विजन को समाज के बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुंचाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 में आज समर फेस्टिवल के तहत हेलीकॉप्टर जॉयराइड का आयोजन किया जा रहा है। इस जॉयराइड के लिए पंजीकरण लिंक शिमला के उपायुक्त की फेसबुक पेज पर जारी होगा। इस जॉयराइड का पिकअप और ड्रॉ पॉइंट ऑकलैंड टनल को रखा गया है। यह जॉयराइड 8 से 10 मिनट की होगी, जिसमें शिमला की 7 हिल्स का नज़ारा दिखाया जाएगा। ग्रीष्मोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आज पंजाबी गायक जस्सी गिल और बब्बल राय की जोड़ी रोमांचक प्रस्तुति देगी। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। यह सेवा बहुत प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से भारत का कोई भी तिलहन किसान व्हाट्सएप के माध्यम से निःशुल्क, विश्वसनीय और तत्काल फसल संबंधी सलाह प्राप्त कर सकता है। आकांक्षी जिला चंबा में इन दिनों जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर हैं। इस कड़ी में 16 जून से भवन सूचीकरण एवं आवास गणना आरंभ होगी, जो 15 जुलाई 2026 तक संचालित की जाएगी। इस कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला चंबा को 22 विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
1: जिला चंबा में जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला में लगभग 1400 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत प्रगणन अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 32 फील्ड प्रशिक्षुओं द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण बैचों के लगभग 200 प्रगणन अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं जनगणना के दूसरे चरण में 11 से 30 सितंबर 2026 के बीच जिला के शीतकालीन एवं दुर्गम क्षेत्रों भरमौर, पांगी, होली सहित अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में जनगणना का कार्य संपन्न किया जाएगा। इस दौरान लगभग 1050 गांवों को कवर किया जाएगा। इसके पश्चात जिला के शेष क्षेत्रों में जनगणना का कार्य 9 से 28 फरवरी 2027 तक संचालित होगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक अनधिकृत पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क शुरू करते हैं और वे पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जून 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 13 व 14 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में प्रदेश भर के 24,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, जेबीटी और टीजीटी संस्कृत विषयों को परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें धर्मशाला पहुंच गई है। मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि धर्मशाला के मैदान पर दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। सिरमौर जिला के नाहन की ऐतिहासिक विला राउंड सहरगाह को जल्द ही पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए विकसित किया जाएगा। विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि सहरगाह के सौंदर्यीकरण के लिए नई कार्य योजना तैयार की जा रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
2: नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने अधिकारियों के साथ सैरगाह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि ऐतिहासिक सैरगाह बिलाराम का सौंदर्यकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा ताकि यहां स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने बताया कि बिलाराम में जल्द ही ओपन जिम स्थापित की जाएगी जिससे युवाओं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा पूरी सैरगाह में बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी जिससे शाम के समय सैरगाह में आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा।
0: प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। बीती रात राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तेज आंधी व तूफान के साथ वर्षा हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा।
3: 13 और 14 जून को भी संभावना है कि जो स्पेशली जो मध्यवर्ग डिस्ट्रिक्ट है, जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बारिश का दौर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ जारी रहेगा। हालांकि जो मैदानी क्षेत्र है जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर है और सोलन, यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। फिर 13 जून के उपरांत 13 और 14 जून को जो एक्टिविटी है बारिश और थंडरस्टॉर्म की, ये हमारे स्पेशली मध्यवर्ती जो डिस्ट्रिक्ट है चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और जो लाहौल, किन्नौर, यहाँ पे क्लाउडिंग के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके चलते जो तापमान स्पेशली पूरे प्रदेश में ही जिसमें मैदानी क्षेत्रों से लेकर जो हाई डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे दिन के तापमान में देखिए 3 से 6 डिग्री गिरावट औसतन पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी।
0: कुल्लू जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत रामपुर जल विद्युत परियोजना के संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ड्रोन अथवा यूएवी संचालन और उड़ान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। कुल्लू के उपायुक्त अनुराग शर्मा ने कहा कि पावर हाउस, स्विचयार्ड, सुरंगों, ट्रांसमिशन सुविधाओं और अन्य संबद्ध प्रतिष्ठानों के ऊपर ड्रोन का अनाधिकृत संचालन सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और परियोजना की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, पीएम मोदी से बोले सुक्खू, आरडीजी की भरपाई के लिए पहाड़ी राज्यों को 50,000 करोड़ दे केंद्र। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सुक्खू ने हिमाचल के लिए मांगी 50,000 करोड़ रुपए की मदद। दैनिक भास्कर लिखता है, नीति आयोग की बैठक में उठे आरडीजी और हिमाचल हितों के प्रमुख मुद्दे। प्रदेश के सरकारी भवनों का होगा नियमित सुरक्षा ऑडिट, शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है, स्कूलों, अस्पतालों समेत सभी महत्वपूर्ण भवनों की होगी जांच। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज शिमला में मोदी सरकार के 12 साल विश्वास विकास और जनगणना कार्यक्रम में करेंगे शिरकत।
4: प्रादेशिक समाचारों के बाद जनवाणी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, आज के जनवाणी कार्यक्रम का विषय है नशा मुक्त भारत। इस विषय पर अपने विचार आप रख सकते हैं 01892224391, यह है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। हेलो।
5: हेलो, नमस्कार
4: जी। नमस्कार,
5: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
4: कोटखाई से राकेश?
5: जी जी जी
4: जी। कहिए राकेश, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के बारे में?
5: आज के विषय के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी आज का विषय चल रहा है कि हम नशे से समाज को कैसे मुक्त करें। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें घर से शुरुआत करनी चाहिए।
4: जी।
5: कैसे? जैसे कि मैं सभी पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर नशे करते हैं तो आप, कई पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे, कई बार जो है जैसे मानो कि आप बाजार जा, अगर आपके बच्चे अगर बाजार जाते हैं तो बोलते हैं कि चलो आप स्कूल से आना, मेरे लिए सिगरेट ला देना, मेरे लिए कबीर का पैकेट ला देना, मेरे लिए मतलब ये छोटी छोटी, हम क्या करते हैं बच्चों से मंगा देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर दुख के बदले वो तीन ला देते हैं, तो अपने, क्योंकि कई बच्चे जो है अपने माँ बाप से नशा गुप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप उनको पैसे स्पेशल देते, कई बार माँ बाप घर से भेज देते कि भाई तुम जाओ और मेरे लिए कबीर का पैकेट या सिगरेट की डब्बिया लाओ। ऐसे में क्या बोलते हैं, घर से शुरुआत करनी चाहिए बच्चे को, बच्चों से कभी नशीली चीज नहीं मंगानी चाहिए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि पेरेंट्स भी कई बार नशा करते हैं तो, और बच्चों से, बच्चों के सामने पीते भी और बच्चों से मंगाते भी है।
4: जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ कही है राकेश जी, और ये बहुत गंभीर विषय है।
5: जी जी
4: जी। और कुछ कहना चाहेंगे?
5: और ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने ये बात बोली, और सबसे बड़ी बात है अगर आपका बच्चा, अगर आपको पता है कि नशे में जा रहा है, लेकिन कई लोग माँ बाप ये भी कहते हैं कि मेरा बच्चा नशा नहीं करता, लेकिन कई बार वो अपने बच्चों की गलती पचा लेते हैं। क्योंकि ताकि समाज में मतलब पूरी से बेस्ट ना हो, लेकिन अगर आपका बच्चा अगर नशा कर रहा है तो तुरंत जो है उनको नशे मुक्त केंद्र में ले जाना चाहिए। ये आप समाज क्या करेगा ये विषय नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं बच्चा अंधकार में नहीं जा रहा होगा।
4: जी राकेश, बहुत अच्छे विचार आपने रखे, और लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं वो यह सुनकर आपकी बातों पर अमल जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
5: जी, धन्यवाद
4: जी। दोस्तों, आप भी अपने विचार रख सकते हैं, नशा मुक्त भारत ये विषय है आज के जनवाणी कार्यक्रम का। और एक और श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
6: हेलो
4: जी, नाम बताइए।
6: राकेश मुक्तधारी से बोल रहा हूँ।
4: जी राकेश जी, बताइए।
6: अच्छा, सबसे पहले तो सर मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने नशा मुक्त के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हुए सर।
4: जी बिल्कुल, और देखिए ये सभी संभव हो पाता है जब आम जनमानस भी इस मुहिम में सहयोग करे।
6: हाँ जी। अच्छा सर, ऐसा ना, नशे से सबसे बड़ी बात है कि एक तो घर की शांति हमारी जो है भंग होती है। हाँ जी, घर को भी नशा जो है बर्बाद करता है सर।
4: जी बिल्कुल।
6: घर में हर वक्त टेंशन ही क्रिएट रहती है सर। और सर एक बात और ना सर, अगर घर में ना जी स्वस्थ व्यक्ति होगा तो परिवार भी स्वस्थ होगा सर।
4: जी बिल्कुल।
6: अगर परिवार, यदि परिवार स्वस्थ होगा ना सर, तो समाज भी स्वस्थ होगा, और यदि समाज भी स्वस्थ होगा तो पूरा देश सुरक्षित होगा सर।
4: जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है राकेश गुप्ता जी।
6: हाँ जी सर, क्योंकि जिस जहाँ भी नशा नहीं होगा ना सर, वहाँ देश भी और समाज हमेशा सुरक्षित रहता सर।
4: जी, और देखिए राष्ट्र निर्माण में युवाओं की जो भूमिका है वो युवा साथी अच्छे से जानते हैं।
6: हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर।
4: जी
6: तो हाँ जी सर
4: जी कहिए।
6: तो सर मैं तो इतना ही कहूंगा सर कि आज की जो जनरेशन है ना सर, तो जहाँ तक हो सके तो नशे से दूर रहे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे समाज भी ठीक रहेगा, घर भी ठीक रहेगा, और बच्चा स्वयं भी स्वस्थ रहेगा और आगे भी अपना।
4: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने कार्यक्रम में फोन किया और अपने विचार रखे।
6: धन्यवाद।
4: जी जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग। जनवाणी कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
7: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through six airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
8: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
9: Nexa. आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
10: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जनवाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। हेलो,
11: नमस्कार सर जी।
4: जी नमस्कार,
11: मैं जयकरण सराल से।
4: जी पहचान लिया जयकरण जी आपको।
11: तो बहुत ही बढ़िया विषय रखा है क्योंकि आज की तारीख में तो ये बहुत ही भयंकर रूप ले चुका है जी नशा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो जी, पिछले एक दो सालों में हिमाचल के जो सरकारी इम्प्लाईज हैं वो लिप्त पाए गए हैं जिससे, और दुख इस बात का होता कि जो बड़े बड़े औहदे पे बैठा था ना, एक डॉक्टर मंडी साइड का यहाँ मोगा में ये है अपना डॉक्टर तैनात है वहाँ जी, वो भी इस धंधे में पाया गया है जी। MBBS डॉक्टर कम से कम 3-4 लाख इनकी सैलरी होती है, लोग पता नहीं इन पैसों से कितना बड़ा महल खड़ा करना।
4: जी जयकरण जी, देखिए जब नशे का आदि हो जाता है इंसान तो वो ये नहीं देखता कि उसका ओहदा क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका लिंग क्या है।
11: नहीं साहब जी, तो पता नहीं था कि नहीं, पर वो मतलब व्यापार करता था, धंधा करता था
4: जी। और ये
11: और
4: जो
11: कितने सरकारी एम्प्लॉइज हैं वो सस्पेंड भी हो चुके हैं, पर लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं।
4: जी हाँ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जागरूकता में ही कमी है, हमारा समाज ही कहीं पीछे है जो इस तरह के कृत्य समाज में होते रहते हैं।
11: देखो जी, हम सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तब ये कभी भी सफल नहीं होगा भैया।
4: जी हाँ बिल्कुल, और देखिए प्रदेश सरकार ने तो
11: 40 करोड़ युवाओं का देश है, अगर युवा आगे बढ़ेगा तो सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है जी।
4: जी प्रदेश सरकार ने तो इनाम भी रखा है कि अगर कोई सूचना देगा नशे के कारोबार करने वालों के लिए तो उसके लिए बहुत सा इनाम भी प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है,
11: और नाम भी गुप्त रखने का ऐलान किया है जी।
4: जी हाँ बिल्कुल, ऐसे में भी समाज अगर जागृत नहीं
11: कर सकते हैं, सरकार आपके साथ है जरूर, इस अपना अभियान में साथ दें गवर्नमेंट का, तभी जाके ये सफल होगा।
4: जी हाँ बिल्कुल, और कुछ कहना चाहेंगे जयकरण जी?
11: बस जी बस
4: जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में फोन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत से श्रोता बहुत ही जागरूकता दिखा रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। जो विषय हमने रखा है नशा मुक्त भारत, इस विषय पर आप भी अपने विचार रख सकते हैं। एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो
12: सर जी, नमस्कार।
4: जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं हमें?
12: जी आवाज आ रही सर जी। मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
4: जी तोमर साहब कहिए।
12: सर जी, नशा मुक्त भारत तो होना चाहिए, इसमें हम सबका ही प्रयास होना चाहिए, किसी एक का काम नहीं है, पूरा देश ही इसमें प्रयास करेगा तभी नशा मुक्त भारत होगा। जैसे भारत में युवाओं की संख्या 65% है और युवाओं पर ही हमें पूरा भरोसा है कि देश के विकास में वो सहयोग करेंगे, और अगर युवा ही हमारा भटक गया तो फिर देश का विकास योगदान कहाँ से होगा। युवाओं में लत ज्यादा लगती है, उसको हमें प्रेरित करना चाहिए, उसके नशा के दुष्प्रभाव बताना चाहिए कि नशा से परिवार भी बिखर जाते हैं, सब कुछ बिखर जाता है, जीवन पंगु बन जाता है, तब उसके दुष्प्रभाव उनको समझ में आएंगे, तब वो नशा से दूर हो पाएंगे सर।
4: जी बिल्कुल, और देखिए सरकारें अपना कार्य कर रही हैं, प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है, पुलिस भी अपना कार्य कर रही है, और लोग भी बहुत जागरूक हैं, फिर कहाँ कमी रह जाती है जो नशे का ये खेल है अभी तक चल रहा है।
12: सर जी कमी रह जाती है, अपने आप में कमी रह जाती है, हमारी आवाज सोच है वो थोड़ी समझ में नहीं आ रही उनकी किस तरफ मुड़ रहे हैं, वो ने ड्रग्स लेते हैं, बीड़ी सिगरेट, तो आप भी फैशन समझते हैं, यही कमी रह जाती है सर जी।
4: जी, और देखिए पुरुषों की तो बात है ही, साथ में महिलाएं भी इस कार्य में पीछे नहीं है,
12: बिल्कुल नहीं है। मद्यपान वो भी करने लगी है, सब कुछ करने लगी है, सिगरेट पड़ा, तम्बाकू, शराब।
4: जी, तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, स्वस्थ देश का निर्माण करना है, तो नशा मुक्त तो हमें होना ही पड़ेगा
12: जी। और ऐसे आंदोलन का

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: जनवाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। नशा मुक्त भारत, यह है विषय आज के कार्यक्रम का। 01892224391 यह है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। हेलो हेलो जी, नाम बताइए।
3: नमस्कार जी।
2: नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं अमर से बोल रहा जी, गांव बजाज
2: जी। नाम एक बार फिर से बताइए।
3: मेरा नाम अमर सिंह है जी। अमर सिंह।
2: अमर सिंह जी।
3: हाँ जी, हाँ जी, गाँव बजाज है, तहसील पलाथ, जिला कपूरथला, पंजाब से बोल रहा जी।
2: क्या बात है, क्या बात है, आपने तो पूरा एड्रेस भी बता दिया।
3: हाँ जी,
2: आपने पूरा पता ही बता दिया, आपके घर तक पहुँचना बहुत सरल हो जाएगा। आप
3: बहुत बढ़िया।

0: या मैं भी एक सरकारी मुलाजम रिटायरमेंट हूँ से
1: जी।
0: हाँ जी, तो यहाँ अभी शॉप है मेरी इधर घर पे ही
1: जी,
0: गली की तरफ छत निकाला है। हाँ जी,
1: आकाशवाणी धर्मशाला की कार्यक्रम सुनते हैं काफी?
0: बहुत ज्यादा सुनता हूँ जी, जो वंदना प्रोग्राम सुबह से चालू होता है बहुत सारा देवी, जो शॉप है ना हमारी जर्नल से तो रहा है
1: जी, जी जी जी,
0: रिटायर होने के बाद मैंने डाला हुआ है
1: जी,
0: तो सारा कुछ सुनते हैं जी।
1: जी बिल्कुल, आज का जो विषय है वो नशा मुक्त भारत है और इस विषय पर अपने विचार रखिए।
0: देखो जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की आयत सुनते हैं, हम उनके भाषण सुनते हैं, तो वो कहते हैं नशा मुक्त करना है मैंने हिमाचल, और इधर भगवंत मान जी भी पंजाब के मुख्यमंत्री जी भी ऐसे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के मोदी जी भी कह रहे हैं कि नशा मुक्त करना, बाहर तो करना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना
1: जी,
0: वो स्वास्थ्य उनका सही रहेगा, अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे, तभी तो देश की बागडोर संभालेंगे ना, बॉर्डर पर रेफर लेके या ऑफिसर बन के खड़े होंगे ना, तो
1: जी
0: तभी
1: जी।
0: हम सोएंगे वो जागेंगे
1: जी बिल्कुल, क्योंकि नशा जो है वो एक युवा को दिशाहीन कर देता है।
0: हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया
1: जी। आप दुकान करते हैं तो आप तो कुछ ऐसा नहीं बेचते है ना?
0: ना तो 1987 से नशा मुक्त हो गई, मेरे मम्मी डैडी ने कहा तेरी शादी नहीं करनी।
1: क्या बात है,
0: जब तक तू शराब छोड़ेगा तो शादी करेगा, नहीं तो रंडवा ही रहेगा, जब रंडवा तो दाने लगेंगे तो आप गुस्सा करोगे, ऐसा तक बोल दिया, तो मेरे छोड़नी पड़ी फिर उनके आगे नहीं चली मेरी
1: जी जी।
0: हाँ जी,
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: इधर मेरी शाम जी एक बात बता रहा हूँ, जो घर वाली है ना मेरी, वो बड़ा हिमाचल कांगड़ा की है, उसने भी ऐलान कर रखा था मैं उससे शादी करूंगी जो नशा मुक्त होगा, जो नशा कोई नहीं करता होगा।
1: चलिए देखिए, आप पंजाब के रहने वाले हैं और आपकी जीवन संगिनी जो है वो हिमाचल से हैं, और दोनों ही जगह आप दोनों ने मुहिम चलाई हुई है नशा मुक्त भारत के लिए।
0: हाँ जी, हाँ जी, नशा दोनों ने, उधर उनने कहा कि जो नशा मुक्त होगा उससे शादी करूंगी, इधर मेरे मम्मी डैडी ने मेरी शादी करेंगे नशा छोड़ेंगे, तो देखो नशा छोड़ना बढ़िया बात है, काला ना आ गया जी,
1: और देखिए आपकी जो बात है उससे एक संदेश हमारे उन युवा साथियों तक पहुँच चुका है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो वो नशा छोड़ देंगे तो उनका भी विवाह हो जाएगा, है ना?
0: देखो शादी कैसे हुई, भगवान ने कैसा करा, मंदिर और गुरुद्वारा नंदा चौरा है हमारे होशियारपुर में, वहाँ मंदिर और गुरुद्वारा एक ही इमारत में है, उधर मेरे घरवाली की दीदी वहाँ जाती है, और इधर मेरी दीदी जाती है वहाँ, तो दोनों को आपस में बात हो गई, तो दोस्ती मेरी दीदी की और इसकी मेरे घरवाली की दीदी की रिश्तेदारी में बदल गई, बातों में बात चल गई, जो ये लड़की जो है जो नशा मुक्त से शादी करना चाहती है, इधर मेरी दीदी ने कहा कि जो मेरा भाई है वो नशा नहीं करता है, देख लो, देख दवाइयां कर लो
1: जी, जी, तो जी।
0: ऐसे देख दिखाइए करके फिर शादी होगी हमारी
1: जी। तो अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग।
0: बहुत ज्यादा जुड़ा हूँ जी, मिट्टे तो मेरे घर वाले यहाँ की है, फतेहपुर प्रोपर की है
1: जी जी। जी दोस्तों, समय हुआ है 9:49:45, बहुत ही कम समय अब हमारे पास बचा है, जल्दी से फोन मिलाइए, कीजिए हमसे बात, नशा मुक्त भारत ये विषय है आज के जनवाणी कार्यक्रम का। हेलो,
2: नमस्ते
1: जी। नमस्ते,
2: आपका शुभचिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ बंधु
1: जी। बड़े आराम से आप बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों?
2: ये तो मेरी उम्र का तगादा है,
1: अभी
2: मेरी उम्र 84 साल चालू है भैया जी।
1: क्या बात है, और देखिए आप एक उम्र दराज श्रोता हैं आकाशवाणी धर्मशाला के
2: जी।
1: जी कहिए, आज के विषय के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपने तो बहुत से सावन देखे हैं।
2: हाँ जी जी, नशाबंदी के बारे में है ना
1: जी? बिल्कुल,
2: तो हमारे युवा पीढ़ी में आजकल जो एक नशीली

0: की चीजों का इस्तेमाल जो हो रहा है ये हमारे देश के लिए और भविष्य के लिए एक चिंताजनक वस्तु स्थिति है भैया जी।
1: जी
0: क्योंकि हमारा राष्ट्र नौजवानों में और उनके होनहारी से ही उन्नत हो सकता है, तो ये जो आदत है इसको बोले तो बुनियादी तौर पे दूर करने का एक प्रयास हर पीढ़ी ने और हर नौजवान ने करना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्र अपना परिवार और भविष्य का बोले तो एक जहर मिला हुआ रहता है, इसलिए सब नशीली चीजों का त्याग करना यह अपने जीवन को सार्थक बनाने की एक किमिया है भाई साहब।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे विचार रखते हैं आप।
0: ये तो आप लोगों का देन है, आप लोगों से थोड़ी बहुत बात सीख लेते हैं
1: जी। हमारी खुशनसीबी है कि आप इतनी उम्र में भी आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुनते हैं और प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं।
0: जी जी जी, ये तो मेरा बचपन का एक शौक है, हॉबी है
1: जी।
0: और आज तक वो मुकर्रर है, भारतवर्ष के विविध केंद्रों से मेरा संपर्क रहता है, बहुत बार तो विविध भारती मुंबई से तो बहुत मैं उसमें बोले तो एक मेरा सहभाग रहता था, मगर अभी थोड़ा सा उम्र के लिहाज से उसमें शिथिलता आ गई है भैया जी।
1: लेकिन आपके हौसलों में कोई कमी नहीं है, आप पूरी तरह से जागरूक हैं और हर विषय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में सक्षम हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए।
0: बाहुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर, बाहुबली।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में फोन करने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग। जी दोस्तों, आप भी अपने विचार रख सकते हैं। नशा मुक्त भारत, यह है आज के कार्यक्रम का विषय। हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी
2: नमस्कार।
1: जी नमस्कार
2: सर, मैं धर्मशाला से बोल रहा हूँ।
1: जी कौन सा बोल रहे हैं धर्मशाला से?
2: जी धर्मशाला में अनिल।
1: अनिल जी,
2: अनिल अनिल
1: जी, अनिल जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के बारे में?
2: विषय बहुत बढ़िया है सर, बढ़िया। मैं तो ये मेरा मानना तो ये है कि जैसे से हम तरक्की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो नशे की ओर भी हम विकास कर रहे हैं।
1: जी
2: मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो जमाने में मैंने सुना कि दारू और भांग ही हुआ करती थी, आज कल तो ना जाने किस प्रकार के नए नए नशे निकले हुए।
1: जी बिल्कुल।
2: और पुरुष ही नशा करते थे, आजकल के जमाने में महिलाएं बहुत अग्रणी स्थिति में पहुंच चुकी हैं।
1: जी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है तो यहाँ क्यों पीछे रहे? जी देखिए, बात ऐसी है कि जब किसी भी उपभोग की वस्तु की डिमांड ज़्यादा होती है तो उस पर दिन प्रतिदिन कार्य चलता रहता है और उसमें नए नई चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध होती हैं। लेकिन जागरूकता की बात यह है कि हम यदि उन मादक पदार्थों का उपयोग करना बंद कर दें, उनको लेना बंद कर दें, तो वो अपने आप ही समाज से दूर हो जाएंगी।
2: जी माननीय, ऐसा कि मैं समझता था कि कुछ वर्ष पहले हम महिलाओं को इस तरफ मानते नहीं थे, पर जब से हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अग्रसर हुए है ना, मानने उसको पाश्चात्य को ज्यादा मानते हैं
1: जी,
2: तो हमारा विकास से नशे की ओर बहुत बढ़ गया है
1: जी। और देखिए इसका उल्टा अगर हम देखें तो जो पाश्चात्य संस्कृति वाले हैं, बहुत से हमारे बाहर के देशों से जो भारत घूमने आते हैं, वो यहाँ की संस्कृति को अपनाते हैं। हेलो।
2: हाँ जी जी
1: जी, और कुछ कहना तो चाहेंगे?
2: जैसे हम विकास कर रहे हैं नशे की ओर, बहुत ज्यादा विकास हो रहा हमारा
1: जी। तो आप नशा मुक्त भारत में अपना क्या योगदान दे रहे हैं, आप अपने बारे में कुछ बता

0: चाहेंगे?
1: जी मैं तो यही कह सकता हूँ कि बच्चों को इस तरह से इससे बिल्कुल ही देखना चाहिए थे इसको।
0: जी, तो इस क्षेत्र में आप कुछ कदम उठाते हैं, बच्चों को समझाते हैं या अपने युवा साथियों को?
1: जब हमारे युवा है तो वो ही नशे की ओर भागेंगे
0: जी,
1: तो हमारा जो देश का क्या बनेगा
0: जी,
1: देश के कर्णधार तो वही है ना
0: जी। बिल्कुल, चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके अनिल जी, सुनते रहिए कार्यक्रम, शुक्रिया फोन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, समय बहुत कम बचा है और श्रोता लगातार हमें फोन कर रहे हैं। एक और फोन कॉल हम ले लेते हैं यहाँ। हेलो,
2: हेलो
0: जी,
2: नमस्ते जी। मैं जब से पठानिया पठानकोट से, मैं ये कहना चाहती हूँ कि चीन में अफीम खिला के उनकी जो नस्ल थी खत्म कर दी गई थी, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट ने इतना साइलेंट कर्टन कर दिया, अपने देश को संभाल लिया। मेरे को सिस्टम समझना होगा बच्चों को, मतलब ये वॉरफेयर है कि अगली जो नस्ल है वो खराब हो जाए तो इंडिया कमजोर हो जाएगा और वो दूसरे के हाथों में चले जाएगा, तो उसके लिए हर स्कूल में बच्चों का ब्लड टेस्ट होना चाहिए। जिनके पास पावर है वो इम्प्लीमेंट करे, हमारे विचार सुनने से और हमारी सूचना देने से कोई काम नहीं हो सकता। तो जिनको पावर है अभी भी करप्ट होंगे तो वो कभी काम नहीं होगा।
0: जी जी, उतना जी, बहुत अच्छे विचार आपने रखे और ऐसा होना चाहिए, और साथ ही साथ घर से भी शुरुआत होनी चाहिए। बच्चों पर पूरी तरह से नज़र भी रखनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां क्या हैं और उनका व्यवहार किस तरह का है।
2: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं करते वो आपके बच्चों को कभी पसंद नहीं करेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। और कुछ कहना चाहेंगी ज्योत्सना जी?
2: जी, बच्चों पे नजर रखनी चाहिए, उनके स्कूल फ्रेंड्स, उनके घर के फ्रेंड्स और उनका माहौल पे बहुत नजर रखनी चाहिए।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में फोन करने के लिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग।

जी दोस्तों, इसी के साथ आज का जनवाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह। अब अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, गीतों के कारवां के सफर में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मीनाक्षी। स्वागत है आप सभी का और सभी श्रोताओं को मेरी प्यार भरी नमस्ते।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म गोरा और काला का ये गीत सुना। गीत को गाया था लता मंगेशकर और मुकेश ने, बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तीन देवियों से, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोंसले की, संगीत एस टी बर्मन का और शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरे की।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: श्रोताओं, गीतों का कारवां कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म सीता और गीता का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में, शब्द रचना आनंद बख्शी की और सुरों से सजाया है RD वर्मन ने।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं।
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: फिल्म अनामिका का अब ये गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। संगीत है RD वर्मन का और बोल दिए हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी की आवाज़ों में लीजिए सुनिए फिल्म फर्ज का ये गीत, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए झुक गया आसमां फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर ने गीत को गाया है और बोल हैं हसरत जयपुरी के, संगीत शंकर जयकिशन का।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुनील राणा की आवाज में इस लोकगीत के साथ।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC apply।
1: श्रोताओ, अब आपको सुनवाते हैं कुंजू चेंचलो, एक प्रेम गाथा का ये लोकगीत।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: this June. Make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: लीजिए, अब सुनिए संदीप की आवाज में ये पहाड़ी सुर।

कार्यक्रम पहाड़ों के सुर का ये आखिर में सुर आपको सुनवाते हैं पूनम शर्मा और सपना कुमारी की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से पहाड़ों के सुर एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और यह अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से मदद कर रही है। यह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश भाजपा आज शिमला में प्रबुद्धजन संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। इस संगोष्ठी में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत

0: करेंगे। संगोष्ठी का विषय मोदी सरकार के 12 साल विश्वास, विकास और जनकल्याण के रखा गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। संगोष्ठी में आयुष्मान भारत, जन औषधि, उज्ज्वला, पीएम आवास जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं और देश के विकास में आए बदलावों पर मंथन किया जाएगा। संगोष्ठी के माध्यम से भाजपा केंद्र सरकार की नीतियों और विजन को समाज के बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुंचाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 में आज जॉयराइड का आयोजन किया जा रहा है। इस जॉयराइड का पिकअप और ड्रॉप पॉइंट ऑकलैंड टनल है। यह जॉयराइड 8 से 10 मिनट की होगी, जिसमें शिमला की सेवन हिल्स का नजारा दिखाया जाएगा। वहीं ग्रीष्मोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आज पंजाबी गायक जस्सी गिल और बब्बल राय की जोड़ी रोमांचक प्रस्तुति देगी। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आकांक्षी जिला चंबा में इन दिनों जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर है। इस कड़ी में 16 जून से भवन सूचीकरण एवं आवास गणना आरंभ होगी, जो 15 जुलाई 2026 तक संचालित की जाएगी। इस कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला चंबा को 22 विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
1: जिला चंबा में जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला में लगभग 1400 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत प्रगणन अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 32 फील्ड प्रशिक्षुओं द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण बैचों के लगभग 200 प्रगणन अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं जनगणना के दूसरे चरण में 11 से 30 सितंबर 2026 के बीच जिला के शीतकालीन एवं दुर्गम क्षेत्रों भरमौर, पांगी, होली सहित अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में जनगणना का कार्य संपन्न किया जाएगा। इस दौरान लगभग 1050 गांवों को कवर किया जाएगा। इसके पश्चात जिला के शेष क्षेत्रों में जनगणना का कार्य 9 से 28 फरवरी 2027 तक संचालित होगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जून 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 13 व 14 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में प्रदेश भर के 24,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, जेबीटी और टीजीटी संस्कृत विषयों की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें धर्मशाला पहुंच गई है। इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि भारत धर्मशाला के मैदान पर दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है, जिससे बीती रात राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तेज आंधी व तूफान के साथ वर्षा हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के अलावा एफएम शिमला पर भी प्रसारित किए गए। ये आकाशवाणी शिमला है।
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे जय हिंद गीत माला। कार्यक्रम का आगाज करते हैं लक्ष्मी अय्यर, महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में फिल्म फना के इस देशभक्ति गीत के साथ।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
4: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
5: Nexa. जय हिंद गीतमाला का ये अगला देशभक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरफरोश से। आवाजें हैं रूप कुमार राठौर, सोनू निगम और साथियों की।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ इसके आकर्षक डिजाइन आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट जल्दी कीजिए कीमतें जल्द बढ़ने वाली है आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम नियम एवं शर्त लागू
4: जय हिंद गीत माला का ये अगला देशभक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म केसरी से बी प्राक की आवाज में

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद गीतमाला का ये आखिरी देशभक्ति गीत सुनिए फिल्म लगान से ए आर रहमान की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जय हिंद गीतमाला। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है। ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है। खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
3: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अब ये एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
3: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है। और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
3: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती

0: चींटी
1: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: दाना चुनकर लाती चींटी।
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
1: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हमारा अगला कार्यक्रम है सैनिकों के लिए। कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने को हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में सरफरोश फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इसरार अंसारी के बोल थे, संगीत जतिन ललित का था।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की।

अनु मलिक की बनाई तर्ज पर समीर का लिखा गीत अभी आपने सुना। ये गीत हमने लिया था अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म से। आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। शंकर एहसान लोय के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए दिल चाहता है फिल्म का ये गीत। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की हैं।

सैनिक भाइयों, ये है आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में यह है दिल से फिल्म का गीत। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार ए आर रहमान।

सैनिक भाइयों, दिल से फिल्म की सीखित के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

सैनिक भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुनो सखी।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

नमस्कार सखियों, मैं हूं मीनाक्षी और स्वागत करती हूं अपनी सभी श्रोता सखियों का आज के इस विशेष कार्यक्रम सुनो सखी के उड़ान के अंक में।

0: और आज का शुक्रवार का दिन है और आज के इस खास दिन में मिलता है हमें मौका एक खास शख्सियत से मिलने का, उन्हें जानने का। लेकिन उससे पहले बात करते हैं बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस पर, जो कि आज के दिन मनाया जाता है। हर साल इस दिन हम उन लाखों बच्चों को याद करते हैं जो स्कूल की जगह कारखानों, खेतों और दुकानों में काम करने के लिए किसी न किसी कारण मजबूर होते हैं। बाल श्रम उनके बचपन, शिक्षा और भविष्य को छीन लेता है। तो आइए हम सब मिलकर बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठाएं और अच्छी शिक्षा के द्वारा अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाएं। और अब बात करते हैं आज के इस बेहद खास अंक की, जिसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगी अपनी इन पंक्तियों से। हर आंगन को अपनी खुशियों से महकाए रखना, हर आंगन को अपनी खुशियों से महकाए रखना, ये सुंदर जीवन मिला है तो अपनी पहचान बनाए रखना। यूं तो बहुत सी मुश्किलें आएंगी रास्ते में हमारे, यूं तो बहुत सी मुश्किलें आएंगी रास्ते में हमारे, लेकिन ज़रूरी है हर मुश्किलों से निकलकर अपनी उड़ान बनाए रखना। मेरी ये पंक्तियां समर्पित हैं सभी महिलाओं और एक खास महिला को जो आज हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जिन्होंने अपने कार्य, समर्पण और उपलब्धियों से समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शिक्षाविद और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में अतिरिक्त सचिव यानी कि एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अंबिका शर्मा जी का और उनसे जानते हैं उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा के बारे में। तो डॉक्टर अंबिका जी, सबसे पहले आपका आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में हार्दिक स्वागत है। अपने बारे में और अपनी प्रारंभिक जीवन यात्रा के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: धन्यवाद मीनाक्षी। जैसे कि आपने बताया कि मैं अंबिका शर्मा बोर्ड में कार्यरत हूँ अतिरिक्त सचिव के रूप में। तो अगर जीवन यात्रा की बात करें तो शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर हमने जन्म लिया होता है। तो हमारी मेरी जो है कि घर भी, मेरे जो माता पिता है वो भी धर्मशाला में ही रहते हैं और पिताजी मेरे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में थे और माताजी मेरी एक गृहिणी के रूप में वो रही हैं और हम चार भाई बहन हैं जिनमें मैं सबसे छोटी हूँ। और मैंने अपनी एजुकेशन जैसे PhD करा है इकोनॉमिक्स में और MPhil और BEd भी करा है और सन 2000 से मैं सरकारी क्षेत्र में काम करती हूँ एजुकेशन के क्षेत्र में। 2000 में मेरी जॉब जो है वो सरकारी क्षेत्र में एज ए प्रवक्ता अर्थशास्त्र जो है वो लगी थी।
0: जी मैम, तो आपने अर्थशास्त्र में PhD, BEd और MPhil की उपाधि प्राप्त की है। तो अंबिका जी, हमें ये बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
1: शिक्षा के क्षेत्र में आगे पढ़ने की प्रेरणा तो मुझे मेरी माँ से मिली हैं, क्योंकि मेरी माताजी थी तो वो गृहिणी, लेकिन वो अपने समय में मीनाक्षी वो BA BEd थी और उन्होंने जॉब को छोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाना जो है उन्होंने चुना कि मैं बाकी बच्चों को पढ़ाने की बजाय मैं अपने बच्चों को अगर अच्छे से पढ़ाती हूँ तो मैं घर गृहस्थी को संभालूँ। वो उनकी अपनी च्वाइस थी, तो वो हमें हमेशा ही पढ़ने की प्रेरणा देती थी और आगे पढ़ लिख कर अपना कुछ अपना जीवन में कर दिखाने की प्रेरणा जो है वो हमें देती रहती थी। तो मैं अपने ये जो उपलब्धि का अपना जो है वो अपनी श्रेय अपनी माता को देना चाहूँगी जो हमें लगातार पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी।
0: जी बहुत बढ़िया। और घर में ऐसा माहौल था आपके कि माता जी आपकी शिक्षित थी और आगे आप में भी वही चीज़ पनपी? तो अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स विषय को अपने उच्च अध्ययन के लिए चुना, इसके पीछे क्या सोच रही आपकी?
1: हाँ देखिए, इकोनॉमिक्स विषय क्योंकि बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण विषय है और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स की अगर हम देखें तो व्यावसायिक रूप में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती हैं। और दूसरी मेरी एक रुचि भी अपनी इकोनॉमिक्स की तरफ को थी, क्योंकि ज़्यादातर उस समय पर हमारे जैसे मेरे बड़े भाई बहन थे तो वो साइंस की तरफ को उनका बेंट ऑफ माइंड था। वो तीनों मेरे भाई बहन जो थे वो साइंस ग्रेजुएट हैं और उसके बाद जब मुझे ऐसे लगा कि नहीं मुझे कुछ हटके करना है, तो इकोनॉमिक्स विषय एक साइंस और सोशल साइंस का एक हम कह सकते हैं ना परफेक्ट ब्लेंड के रूप में हम इसको देखते हैं, और इसमें लॉजिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल जो भी हमें अपनी इकोनॉमी अपने देश के बारे में जानने का अवसर मिलता है, तो मेरी शुरू से ही एक रुचि भी रही है। और दूसरा नेचुरली जब हम पढ़ रहे होते हैं कोई विषय तो हम कैरियर के ऑप्शंस भी देखते हैं, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा देखा था कि नहीं इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं।
0: जी बहुत बढ़िया। अब हमें ये बताइए कि शैक्षणिक यात्रा के दौरान कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने आई और आपने उन्हें कैसे पार किया?
1: अब देखिए मीनाक्षी, जैसे मैंने बोला कि हमारी तो एक पढ़ा लिखा परिवार था, मेरी माता जी भी शिक्षित थी और पिताजी भी अच्छे एक सरकारी अफसर के रूप में कार्यरत थे, तो अगर चुनौतियों की बात देखा जाए तो ऐसी कोई खास चुनौतियां नहीं आई, क्योंकि प्रेरणा हमें हमेशा ही घर वालों से मिलती रही, पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती रही, क्योंकि अब मेरी माता जी भी यही कहती थी कि घर के काम काज को छोड़कर पढ़ाई की तरफ को ध्यान दो, तो पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो चुनौतियाँ हम एज सच तो नहीं कह सकते कि पढ़ने के रास्ते में रुकावट की चुनौतियां तो नहीं है, लेकिन पढ़ने में अच्छा करने की चुनौती थी
0: जी।
1: क्योंकि अब देखिए, अब आपको पता ही है कि जब हम जिस घर में अगर पढ़ाई का माहौल हो तो उसमें हमेशा यही रहता है कि बच्चों के अंक अच्छे आए, उनकी जो भी अचीवमेंट होगी वो अच्छी होगी, सफलता हासिल करें, तो ये सब चुनौतियां होती हैं कि आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हो, इस तरह से कि एग्जाम पास करना है, ये सब चुनौतियां रहती हैं, तो वो तो हर किसी के रास्ते में रहती हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मेहनत, चाहे आपको घर में माहौल मिले, लेकिन मेहनत तो आपकी अपनी होती है,
0: सफलता का पहलू ही मेहनत है।
1: बिल्कुल, तो वो मेहनत करनी पड़ती है, तो वही एक चुनौती है कि मेहनत करनी पड़ी।
0: जी बहुत बढ़िया। श्रोताओं, बहुत सी जानकारियां और बातें हमें अभी अंबिका जी से करनी है, लेकिन फिलहाल हम अपनी बातों को देंगे थोड़ा सा विराम और करवाएंगे आप सभी का मनोरंजन इस खूबसूरत से गीत के साथ। तो आइए साथ में मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: गीत और विज्ञापन के बाद फिर से स्वागत है हमारी सभी श्रोता सखियों का सुनो सखी के कार्यक्रम उड़ान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अंबिका शर्मा जी से। तो अंबिका जी हमें ये बताइए कि एडिशनल सेक्रेटरी यानी कि अतिरिक्त सचिव के रूप में आपकी प्रमुख जिम्मेदारियां क्या हैं?
5: हाँ देखिए मीनाक्षी, जैसे ये अतिरिक्त सचिव जो है प्रशासनिक एक पद है जिसमें अब एजुकेशन बोर्ड के जो काम करने का तरीका है उसमें डिफरेंट ब्रांचेस काम करती हैं, तो उस ब्रांचेस के जो भी प्रशासनिक फैसले या फाइल वर्क, मैं कह सकती हूँ कि मेनली फाइल वर्क है, और थोड़ा डिसीजन मेकिंग में भी साथ में रहता है कि बोर्ड किस तरह से आगे फर्दर कुछ भी इनोवेटिव प्रोसेस में किस तरह से काम करेगा, थोड़ा सजेशंस वो सेक्रेटरी के लिए थोड़ी उस तरह से भी कुछ मीटिंग्स वगैरह हमारी होती रहती हैं। तो ये मेन काम हमारा फाइल वर्क हम कह सकते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ बोर्ड है तो एग्जामिनेशन के को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में हम विचार विमर्श करते रहते हैं।
4: तो मैम, हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों में आप कौन से महत्वपूर्ण जो बदलाव है वो देखती हैं?
5: देखिए शिक्षा में तो बहुत ही बदलाव आजकल के समय में हम देख सकते हैं, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि आजकल की शिक्षा जो है हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल और स्किल की शिक्षा है, प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और टेक्नोलॉजी आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, और आप तो जानते ही हैं जैसे अब AI का ज़माना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी शिक्षा में की जा रही है, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम स्कूल के करिकुलम में भी एक हिस्से के रूप में देखते हैं कि हमारी जो शिक्षा है उसमें स्किल बेस्ड लर्निंग पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, और पुराने समय में जैसे एजुकेशन एक क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड तक सीमित थी, तो आजकल की एजुकेशन जो है वो डिजिटल वर्ल्ड के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, उसमें हम क्लासरूम के अंदर भी स्मार्ट बोर्ड्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ आप देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, यूट्यूब से भी शिक्षा लेते हैं, और बहुत सारे आप देखते होंगे ऐसे चैनल्स जैसे अब कुछ ऐसे खान सर बहुत आजकल जैसे बच्चे उनको भी फॉलो करते हैं, तो वो भी शिक्षा, मतलब शिक्षा केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है लेकिन बच्चे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक अपने आप भी शिक्षा ग्रहण करने में उनका रहता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से शिक्षा ली जाए, और एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन को भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आजकल की शिक्षा जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज्यादा रहती है, जिसमें हम केस स्टडीज और प्रोजेक्ट वर्क और इंटर्नशिप वगैरह को ज्यादा महत्व देते हैं।
4: वही कि समय के साथ जो शिक्षा का है वो स्वरूप भी बदल रहा है।
5: बिल्कुल मीनाक्षी जी।
4: अच्छा, जैसे ही परीक्षा समीप आती है विद्यार्थियों में तनाव बढ़ जाता है, ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी?
5: देखिए एग्जामिनेशन का जो तनाव होता है अब हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक है, जब से हम भी छात्र के रूप में थे तो थोड़ा बहुत तनाव तो रहता था, स्ट्रेस तो रहता था, लेकिन मेरा एक बच्चों के लिए यही एक सुझाव रहेगा सबसे पहले कि एग्जामिनेशन का स्ट्रेस हमें कम तब होगा अगर हमारी रेगुलर स्टडीज़ रहेंगी, अगर हम

0: शुरू से ही जैसे ही सत्र की शुरुआत होती है उसी समय से अगर हम हर कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना और समझ के साथ पढ़ना शुरू करेंगे तब हमें ये स्ट्रेस नहीं होगा कि कौन हमें क्या प्रश्न पूछ लेगा
1: जी।
0: जब हमें हर टॉपिक की समझ होती है फिर हम इसलिए तैयार रहते हैं कि आओ अब कुछ भी प्रश्न पूछो, किसी भी तरह से पूछा जाए। और दूसरा हम ये कहते हैं कि अब बच्चों के नज़र से अगर मैं देखूँ तो वो एक एग्ज़ाम को एक थ्रेट के रूप में लेते हैं कि एक उनको एक ऐसा लगता है कि एक जैसे एक बहुत बड़ा एक थ्रेट है और तनाव है उनके सामने। तो जब हम ऐसा दिमाग को मैसेज देते हैं तो दिमाग भी वो एक ट्रिगर करता है कि फाइट और फ्लाइट
1: जी।
0: कि या तो इससे लड़ो या इससे उड़ जाओ, भाग जाओ। ठीक
1: हाँ।
0: है तो ये एक बच्चों के अंदर रहता है। तो हम कहते हैं कि अगर इस तनाव को कम करना है तो बच्चों को अपने आदमी आप में जो उनकी मानसिक हम कह सकते हैं कि तैयारी वो भी बच्चे की शुरू से ही रहनी चाहिए। और उसके लिए मैं ये कहूँगी कि बेहतर खान पान में बच्चा ध्यान दे कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम के आसपास जो है वो खाना पीना छोड़ देते हैं तो हम मैं ये कहूँगी कि हेल्दी ईटिंग करें और उसके साथ साथ सोने के लिए भी अगर 7 घंटे की नींद हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है क्योंकि नींद और ब्रेन के साथ उसका एक कनेक्शन रहता है तो नींद भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ सबसे पहले सबसे ऊपर तो मेरा यही रहेगा कि पूरे साल जो है हर कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझने और एक अंडरस्टैंडिंग वे में पढ़ना शुरू करें, यही मेरा एक सुझाव।
1: जिस तरह से अध्ययन करवाया जाता है तो शुरुआती दिनों में ही उसको पढ़ना शुरू कर।
0: बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी जी।
1: तो अच्छा, क्या केवल अच्छे अंक ही विद्यार्थियों की सफलता का पैमाना है कि बच्चों को अच्छे अंक चाहिए और आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है?
0: देखिए अब ये तो बिल्कुल ही जैसे मैंने आपको कहा कि ज़माना बदल गया है, समय बदल गया है, शिक्षा के प्रति हमारा जो हम कह सकते हैं कि एक देखने का नज़रिया भी हमारा बदल गया है। आज हम नंबरों को महत्व ना देकर स्किल को महत्व देते हैं, कौन कितना प्रैक्टिकली एफिशिएंट है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसका एक जीता जाता उदाहरण आपको देखने को मिला होगा, अभी IPL हुए हैं तो वैभव सूर्यवंशी के नाम से एक क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा सबने देखा। ठीक है, अब आप देखेंगे, मुझे नहीं पता वैसे, I'm not sure कि वो अब 10th की परीक्षा उसने दी है अभी कि नहीं दी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 15 साल में बच्चा एक इतने शिखर पर क्रिकेट के शिखर में पहुंच सकता है तो वो एक वैभव सूर्यवंशी हर बच्चे के अंदर है, सिर्फ उसको पहचानने की जरूरत है। और आप अपनी काबिलियत को अपनी योग्यताओं को स्वयं पहचानें और आपका रास्ता केवल मार्क्स नहीं है बल्कि मेरा कहना है कि आपकी स्किल, आपकी योग्यता, आपकी पहचान, आपका व्यक्तित्व वह आपकी एक सफलता को तय करता है।
1: जी बहुत बढ़िया अंबिका जी, तो बहुत सी बातें हमें भी आपसे करनी है लेकिन फिलहाल हम अपनी बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम और सुनवाते हैं अपनी सखियों को ये प्यारा सा गीत और हम भी साथ में मिलकर सुनते हैं।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गीत और विज्ञापन के बाद एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं नाक्षी अपने सभी श्रोताओं सखियों के बीच और हमारी आज की खास मेहमान डॉक्टर अंबिका शर्मा जी के साथ। तो अंबिका जी, आप जानना चाहेंगे कि लड़कियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर आपके क्या विचार है?
4: जी मीनाक्षी जी, अब देखिए, लड़कियों की शिक्षा तो आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम कह सकते हैं। अब लड़कियां तो हमारे अगर पूरे देश की बात की जाए तो वो एक आधी आबादी के रूप में आती हैं और वो ना केवल अपनी शिक्षा से केवल अपने जीवन को प्रभावित करती हैं, पर लेकिन हम कहते हैं कि जब भी कोई एक महिला आत्मनिर्भर बनती है या शिक्षित बनती है तो उसका जो असर है वो केवल उसके तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह अपने पूरे समाज और परिवार को भी आगे बढ़ाने का साहस जो है वो रखती है। तो एक प्रेरणा के स्तोत्र पर अगर हम देखें कि आगे चलकर अगर लड़की ने केवल एक गृहिणी भी बनना है तब भी हम कह सकते हैं कि एक आत्मनिर्भर माँ को अगर हम देखते हैं तो वही विशेषकर अपने बच्चों को भी बचपन में आत्मविश्वासी और साहसी बनाती हैं। और वैसे हम कहते हैं कि आज का दौर तो आपको पता है कि बदलाव का दौर है, जैसे हमने पहले भी बात करी है, तो इस बदलाव की सबसे खूबसूरत तस्वीर है वह महिलाएं जिन्होंने अपनी मेहनत, काबिलियत और अटूट संकल्प के दम पर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और सेल्फ मेड और सेल्फ डिपेंडेंट होना केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह करोड़ों महिलाओं की जीवन शैली भी बन चुका है। और जब सशक्तिकरण की अगर आपने बात करी है तो हम कहते हैं जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो अक्सर हमें एक सामाजिक आंदोलन या राजनीतिक एजेंडे के रूप में इसको देखा जाता है, लेकिन असल में महिला सशक्तिकरण कोई चैरिटी या एहसान नहीं है। ये किसी भी परिवार, समाज और देश के अस्तित्व और उसकी तरक्की के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत है। अगर हम आंकड़ों के चश्मे से नहीं बल्कि एक सोच के नज़रिए से समझते हैं तो सशक्तिकरण का असली मतलब है महिलाओं को पुरुषों से ऊपर उठाना नहीं है बल्कि किसी के खिलाफ खड़ा करना भी नहीं है। इसका सीधा और सरल मतलब है फैसला लेने का अधिकार। हर एक महिला को क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पढ़ना है, क्या कैरियर चुनना है, घर संभालना है या कुछ कैरियर के रूप में जाना है, शादी कब करनी है, किससे करनी है, अगर जब ये बुनियादी फैसले लेने का अधिकार बिना किसी डर और दबाव और आत्म अपराध बोध से लेने की आज़ादी अगर महिलाओं को मिलती है तो वही सही मायने में सशक्तिकरण

0: होगा।
1: जी, तो अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए आप कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि आजकल हम किसी से अपने आप को कम ना महसूस करें, कि अगर हम शहर में नहीं रहते तो हम कहीं किसी से कम हैं, बल्कि आजकल हर सुविधाएं जो हैं गांव-गांव तक उपलब्ध हैं, और हम देखते हैं कि हर गांव में स्कूल बने हैं, अच्छे शैक्षणिक संस्थान भी बने हैं, और केवल हम बल्कि जैसे मैंने आपको कहा कि आजकल हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन की बात करते हैं और डेली लाइफ के साथ जुड़ी हुई बातें करते हैं, तो जितना डेली लाइफ के ज्ञान, अगर मैं ये कहूँगी कि
1: जी
0: ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को रहता है, शहरी क्षेत्र में उतना नहीं रहता है, क्योंकि
1: जी
0: वो धरती से जुड़े हुए होते हैं, जो
1: जी
0: अपने लोगों के साथ जितना उनका सामाजिक एक दूसरे के साथ तालमेल रहता है, तो वो कहीं ना कहीं गाँव के बच्चे भी अब हमारे किसी से पीछे नहीं हैं।
1: जी तो व्यस्त प्रशासनिक जीवन के बावजूद आपकी रुचियां हम जानना चाहेंगे।
0: देखिए, मैं ये कहूँगी कि प्रशासनिक बातें तो एक अलग होती हैं, क्योंकि हर किसी को अपना कैरियर और आर्थिक स्वतंत्रता की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद अगर हमने अपनी पर्सनालिटी की ग्रोथ को देखना हो, तो कुछ रुचियों का को रखना जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जब हमारे मन खुश रहता है, तभी
1: जी
0: हम कुछ और अच्छा कर पाते हैं अपना, हमारे जो भी हम सोचें कि हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट समाज को कर पाएँ,
1: जी
0: तभी। तो मैं यही कहना होगा कि कुछ ना कुछ रुचि रहनी चाहिए सबकी। तो
1: जी
0: मेरी जो है, मैं देखती हूँ कि ड्राइंग और पेंटिंग में शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं अब भी प्रशासनिक कामों के बावजूद अगर मुझे थोड़ा भी समय मिलता है, तो
1: जी
0: मैं अपना एक कॉर्नर मैंने घर में बनाया है, जिसमें मैं अपना वो ड्राइंग पेंटिंग का
1: जी
0: काम करती हूँ।
1: तो जी अंत में हमारे अभिभावकों के लिए कोई प्रेरणादायक संदेश।
0: देखिए, मेरा यही संदेश रहेगा, क्योंकि आपने महिलाओं की बात करी है, तो मैं यही कहूँगी कि महिला सशक्तिकरण कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सिर्फ समाज या कानून के भरोसे छोड़ दिया जाए। ये एक हर घर से एक सोच शुरू होती है। जिस दिन हम महिलाओं को कमज़ोर और लाचार समझना बंद करके उन्हें एक समान इंसान के रूप में देखना शुरू कर देंगे, उस दिन समाज को किसी विशेष सशक्तिकरण
1: जी
0: अभियान की ज़रूरत नहीं
1: जी
0: पड़ेगी।
1: मैम, तो
0: तो यही मेरी
1: डॉक्टर
0: एक संदेश है कि
1: जी
0: एक हमें
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग-अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविज़न, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविज़न और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी ज़रूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. He added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah is chairing a high-level meeting to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB are present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. The Information and Broadcasting Ministry has released the draft Telecommunication Rules 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft rules have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the previous Telegraph Act 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act 2023. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NET UG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities, such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. In Pakistan-occupied Kashmir POK, 16 people were killed and 37 others wounded, as Pakistani army opened fire from AK-47 rifles on thousands of unarmed protesters in Eidgah ground yesterday. Although the demonstration started peacefully, demanding affordable flour, rice, electricity and basic rights, the scene soon turned violent, with the Pakistani army unleashing gunfire on the crowd. Around 60 to 70,000 people had assembled in Rawalkot to raise slogans against Pakistan's continued occupation and policies in the region. United Nations Secretary General Antonio Guterres and Secretary General of the International Maritime Organization, IMO, Arsenio Dominguez, has condemned the attack on a Palau-flagged tanker off the coast of Oman, in which three Indian seafarers have been killed. Spokesman for the UN Chief, Stefan Dujarric, said Mr. Guterres is deeply concerned by the continuing escalation. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana died at the age of 49 at a private hospital in New Delhi today. He mentored Manu Bhakkar and helped her secure a historic double bronze medal at the 2024 Paris Olympics. President Draupadi Murmu expressed sadness over the passing of Jaspal Rana. Prime Minister Narendra Modi has also expressed grief at the passing away of Jaspal Rana. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% up in afternoon trade today. The Sensex advanced 653 points to 74,486, while the Nifty rose 160 points to 23,322 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
4: ख्वाब जो इस गाने में आपने सुना, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, पुराना ख्वाब। बहरहाल, एक श्रोता ने लिखा है, प्रेम प्रसंगों के पर्याय बनी इबारतों की श्रृंखला में आज की कड़ी प्रमाणित कर रही है कि जीवन के सफर में सिर्फ मोहब्बत ही एकमात्र विकल्प है जो रिश्तों को आबाद करने में सक्षम है, चाहे वो प्रेमी दिलों की हो या आपसे रिश्तों की। प्रेम ही शाश्वत है। बहुत पते की बात आपने लिखी है कि अगर इस दुनिया से प्रेम हटा दिया जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी? एकदम बेरंग, सूनी, उदास। प्रेम के सहारे ही तो रिश्ते बनते हैं, प्रेम के सहारे ही तो परिवार बनता है, समाज बनता है। ये सृष्टि की रचना ही प्रेम से हुई है। चलिए अब छोटी सी मुलाकात, ये फिल्म का नाम है, सुनिए गाना और बताइए गीतकार का नाम।
5: तुझे

छोटी सी मुलाकात फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थीं। अभी पिछले दिनों ये खबर आई थी कि गायिका सुमन कल्याणपुर नहीं रहीं, तो कितना दुख पहुंचा था, कितना अवसाद हुआ था हम सभी को, जितने उनके चाहने वाले हैं। सचमुच एक अलग तरह की आवाज़ थी। अब हम आपकी टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल प्रेम की जगह मोबाइल ने ले ली है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मोबाइल में रहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत से सालों से मेरी तुझसे पहचान है आपके लिए। वैसे एक इस गाने में ये लाइन भी आती है, अनगिनत सालों से मेरी तुझसे पहचान है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि कब किससे पहचान हुई, कौन सी पहचान रिश्ते में बदल गई, ये हमारा सवाल है। कोई दोस्त मित्र प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी या भाई बहन का रिश्ता बन गया एक पहचान से। कई बार हम कहीं जाते हैं घूमने, कुछ अजनबी लोग मिलते हैं, वहाँ मुलाकात होती है, तो कुछ रिश्ते बन जाते हैं। कई बार दोस्ती का रिश्ता बन जाता है, भाई बहन का रिश्ता बन जाता है, प्रेमी प्रेमिका का। तो आप ये भी बता सकते हैं अपनी यादें साझा करते हुए। एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में नानी जी सुनाती थी कहानी, जब हम गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे, खूब लंबी लंबी कहानियाँ। दादी और दादाजी बहुत प्यार करते थे। एक श्रोता ने लिखा है, नवीं कक्षा में था जब मैं एनसीसी कैंप गया था, रोज़ाना ही जूनियर से कुछ न कुछ अफसर लोग हमसे पूछते रहते थे। लेकिन एक दिन कहानी किस्सों की बात हो रही थी तो सर ने पूछा, कल्चरल प्रोग्राम का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सुबह परेड पर 4 बजे आना है ग्राउंड पर, लेकिन मेरी नींद लग गई, बार बार सीटी बजाने के बाद भी नहीं उठ पाया, तो जो हमारे सीनियर थे उसने हमारे टेंट में आकर खूब पिटाई हुई, और उसके डर से 2 दिन तक बीमार होने का मैं नाटक करता रहा। भाई नाटक क्यों किया, पिटाई भी ठीक नहीं थी, लेकिन ना कुछ न कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक अनुशासन तो होना चाहिए छात्र जीवन में। एक श्रोता ने जानकारी दी है, एक छोटी सी मुलाकात 1967, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर, और तुझे चाहा तुझे पूजा, ये तो गाने के बोल हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कोई माने या ना माने, जो कल तक थे मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। बहुत सारे गानों की इबारत हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप इन्हीं इबारतों से आप कोई और पंक्ति रच सकते हैं, कोई कविता रच सकते हैं। हो सकता है आपकी रची कविता एक दिन आपको कवि बना दे, कहानीकार बना दे।

एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की कहानी एक चिड़िया की कहानी जो अपने दाल की चोरी होने पर सभी से गुहार लगाती है और अंत में वो जीत जाती है। ये कहानी बाबूजी हम लोगों को सुनाया करते थे और मैं भी अपने बच्चों को सुनाती हूँ। क्या बात है भाई, गानों से देखिए कितनी सारी बातें याद आ गई। इसलिए गाने जब हम सुनते हैं तो गानों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत सारे शब्द हमें यादों में ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिर कब मिलोगे, ये गाना हमें बहुत पसंद है। और बहुत सारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई है भरोसा फिल्म के गाने की, वो दिल कहाँ से लाऊं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो इबारत है उनमें वो शब्द होने चाहिए। तो देखा कि उनमें ये शब्द है, तो चलिए वो गाना हम सुनवाते हैं। फिल्म है भरोसा। कलाकारों के नाम ज़रा बताइए कि पर्दे पर कौन गा रही हैं, कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। वैसे पार्श्व गायिका हैं लता मंगेशकर। गीतकार संगीतकार का नाम आप बता सकते हैं अगर आप ये नहीं बता सकते कि कौन है अभिनेत्री। हीरो का नाम भी बताइए आप ही, जरा जल्दी टाइप कीजिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

भरोसा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे रवि का संगीत था, और हमने पूछा था पर्दे पर कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। अभी तक श्रोताओं की ओर से जवाब नहीं मिला। आशा पारेख और गुरुदत्त हैं इस फिल्म में हीरो। देखिए साथ साथ पहेलियों के जवाब भी देते चलिए, क्योंकि इबारत के साथ साथ पहेलियाँ भी शामिल हैं कि हम आपसे पूछते हैं जो सवाल, आपके जवाब का रहता है हमें इंतज़ार, और हम बाकायदा कमेंट को न्यूएस्ट कर कर देखते हैं कि नए कमेंट कौन आ रहे हैं। बस टिप्पणी साझा करके आप बैठ गए रेडियो सुनने, नहीं जी, हम आपको बिल्कुल साथ में लगा के रखते हैं, संलग्न रहें आप, ये हमें अच्छा लगता है जानकर। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ते हैं। कुछ मुलाकातें दिल में ऐसे ठहर जाती हैं जैसे माथे पर गिरी बारिश की पहली बूंद, हम उस पल को कभी भूल नहीं पाते, गाकर लिखकर रोकर हम उन लम्हों को फिर मिलने की चाह में याद करते रहते हैं। प्रेम की सारी मुलाकातें, सारी दूरियां, सारी शिकायतें उसे एक लम्हे की याद में एक रुदन बन जाता है कि किसी को चाहना क्या एक सज़ा है। ज़िंदगी में चाहे कुछ लम्हों का साथ ही क्यों न हो, जाने वाले कभी नहीं जाते, वे रह जाते हैं कुछ अधूरी बातों में, मुलाकातों में और उन जगहों में जहां से कभी हम साथ गुजरे थे। और आपके दिल में, दिल वो जगह है जहां से कभी कोई जाता नहीं, हमेशा टिका रह जाता है। आप चाहें भी कि ये फला व्यक्ति दिल से चला जाए, लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं होता है। तो अब चलिए यादों के गलियारों में चलते हैं। कौन सी यादें आपके जहर में दस्तक देती हैं ये बताइएगा आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/vbsmumbai ये टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब आ रहा है गाना उमर कैद फिल्म का, आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं इस बार सही कौन जवाब देता है। और यादों के गलियारों में जाकर कौन सी याद आई है एक लाइन में बताइए।

0: यादों के नाम बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम यहाँ नई जगह रहने आए तो एक प्यारी सखी मुझे मिली और हमने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन हमारा साथ बहुत कम समय के लिए था, कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। एक श्रोता ने लिखा है कि हम साथ हैं आपके, काम बाद में करेंगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बहुत मार्मिक है गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि आशा पारिक थी उस फिल्म में जिसका आपने पूछा था, भरोसा के लिए लिखा है। और एक श्रोता ने, क्या कई श्रोताओं ने लिखा है, दिल आशायर गमाज नगमा। हो सकता है इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये गाना मिल जाए। बस ये बताइएगा कि आपको अगला गाना कौन सा आ सकता है, ज़रा ये भी तो अंदाज़ा लगाइए। देखते हैं कि आप, वैसे गाने तो आपने बहुत सारे लिखे हैं जो हमारे पास हैं, जो मतलब हमारी और आपकी पसंद आज बहुत सारी मिल रही है। और ये जो वो दिल कहाँ से लाऊं, ये तो हमने आपकी पसंद पर ही सुनवाया। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही गंभीर गाना है वो दिल कहाँ से लाऊं, सुपर हिट सॉन्ग है। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म भरोसा के नायक और नायिका हैं गुरुदत्त, आशा पारिख। और भरोसा के गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आई है। एक श्रोता ने लिखा है 1970 में खुले ग्राउंड पर शाम को हम अपने मामा मामी के साथ ये फिल्म देखी थी। और एक श्रोता ने जानकारी दी है आशा पारिक, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि, फिल्म भरोसा। अब ज़रा कुछ और टिप्पणियाँ भी पढ़ दी जाएँ। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है, पिताजी प्यासे कौवे की कहानी सुनाते थे, बाद में ये किताब में पढ़ा मैंने, मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्यासा कौवा वाली कहानी। और आप में से किस किस लोगों ने सुनी थी, किन किन लोगों ने, ज़रा बताइएगा। और जब प्यासा कौवा की कहानी सुनते थे तो आँखों के सामने क्या चित्र बनता था, वो भी बता सकते हैं। अब तो सामने आपके टेलीविज़न पर देख लेते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन तब वो काल्पनिक चित्र बना करता था, और अब किताबों में चित्र बने बनाए आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मैंने अपने डायरी में लिखा था और गाती भी थी, ये 1990 की बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारे साथी की बात याद आई, अरे फिक्र क्यों करती है, मैं हूँ ना, पर अफसोस वो अब नहीं है, ओफ। एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं वादा करना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही मुश्किल, जब कोई वादा टूटता है तो सिर्फ एक बात अधूरी नहीं रहती बल्कि किसी का अटूट विश्वास कांच की तरह बिखर जाता है। वादे अगर कांच के हों तो टूट जाते हैं और अगर कच्चे धागे के हों तो छूट जाते हैं। क्या बात है भाई, ये वादे वाली बात आपने बेहतरीन लिखी है। अब कन्यादान फिल्म का ये गाना,
1: चेहरे से हटा सकता नहीं,
0: हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है,
1: दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं, कितनी दिलकश

0: कन्यादान फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी की बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है आशा पारिख और शशि कपूर। जरा उन श्रोताओं के लिए जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर इस वक्त उपलब्ध नहीं है लेकिन रेडियो सुन रहे हैं, उनके लिए हम इबारत दोहरा देते हैं। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा, क्या ये खता है? हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा, फिर कब मिलोगे इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना। उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी ना रह जाए, गले से लग जा। जिंदगी में शायद साथ इतना ही था और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आ रही हैं। इस इबारत के साथ आप भी कोई इबारत लिख सकते हैं, हो सकता है आपके भीतर छुपी प्रतिभा परवान चढ़े और एक कवि हो जाएं आप, एक कहानीकार हो जाएं। बहरहाल ये जो दिल शायर बन गया, इसको लेकर बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आई हैं और एक गाना चुना है हमारे श्रोताओं ने, गैम्बलर फिल्म का, दिल आज शायर है गम आज नगमा। तो चलिए यही गाना हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन ज़रा बताइए कौन है हीरो, हीरो का नाम बूझना है आपको।
1: गम आज नगमा है, सब ये गजल है सनम।
0: गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।
1: गम

0: गैम्बलर फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया देव आनंद, और गीतकार संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बचपन में सबसे पहले कहानी सुनी थी चिड़िया और कौवे की। चिड़िया मोम से घर बनाती है, कौवा गोबर से घर बनाता है। बरसात में कौवा का गोबर का घर बह जाता है और भीगा कौवा चिड़िया के मोम के घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन घर छोटा होता है और चिड़िया अपने छोटे चूजे को खाना खिलाने में व्यस्त होती है, इसलिए वो कौवा को अंदर आने नहीं देती। इस तरह की कहानियाँ बहुत प्रचलित है और हम सब ने अपने अपने बचपन में सुनी है। दरअसल वो जो कहानी वाला बचपन था कहीं गुम हो रहा है। अब कहानियों के बजाय मोबाइल वाला बचपन है। अब बहुत सारे मम्मी पापा को कहानियाँ याद ही नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि कोई कहानी वाली किताब बताओ ना जो हम पढ़कर सुना दें, या कोई वो बताओ, लिंक बताओ जहाँ हम उसे लगा दें तो सुनते सुनते सो जाए। भाई वो लिंक वाली कहानी का वो सुख नहीं है जो माँ अपने ज़बान से मॉड्यूलेट करके स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ सुनाती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर ये वक्त बहुत जालिम है, मिलता ही नहीं। वक्त को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कीजिए और लिख डालिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना, रिश्ते को पवित्र रखना है और बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आप अपनी बहुत अच्छी दोस्त याद आ गई इस प्रोग्राम के साथ, और अपना प्यारा पुराना घर याद आ गया जहां मेरी दादी और दादा रहते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत के साथ मैंने भी कुछ लिखा है कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मशहूर शायर साहिल लुधियानवी की पंक्तियाँ प्रेमियों के दिलों की हालात बयां करती हैं कि हर प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होती, प्रेम कहानी करवट लेती और उसमें विरह उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेम जीवन भर नदी के दूसरे छोर की तरह साथ साथ चलता है, महसूस भी होता है किंतु ता उम्र पहले छोर से मिल नहीं पाता। भाई प्रेम के साथ दर्द तो जुड़ ही जाता है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो मीराबाई क्यों कहती कि जो मैं ऐसा जानती नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम किए दुख होए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना सुनते हैं। जरा बूझिए आप गीतकार का नाम और स्वर किसकी आवाज में ये गाना है, फिल्म बड़ा आदमी। और कोई नहीं बूझ पाया ये गाना, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग गाने लिखे लेकिन ये गाना किसी ने नहीं लिखा। जरा सुनिए तो, और जरा संभालिए अपने दिल को और नोट कर लीजिएगा डायरी में ये गाना भी, जो लोग नियमित रूप से नोट करते हैं गाना।
1: संभालिए अदाएं आपकी के मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा।

बड़ा आदमी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम और किसकी आवाज़ में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ें, लेकिन गीतकार का नाम बहुत सारे लोगों ने गलत बताया, प्रेम धवन की रचना थी ये।

एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत का फलसफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उत्सव लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है और हर ख्वाब में उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं। लेकिन यही मोहब्बत जब अधूरी रह जाती है या बिछड़ने की दास्तान बनती है, तब वही फूल यादों की चुभन और अश्कों की नमी में बदल जाते हैं। मोहब्बत इबादत भी है और इकरार भी है, मुकद्दर के इम्तिहान की तरह कठिन भी। शायद इसीलिए मोहब्बत का फलसफा अजीब होते हुए भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये इंसान को जीना, मुस्कुराना, इंतज़ार करना और कभी कभी टूटकर फिर से संभलना भी सिखा देता है और बहुत सहनशीलता भी सिखाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे चाचा जी बाहर गांव सर्विस करते थे, तो उन्होंने एक रेडियो लाया था। वो वापस सर्विस पे जाते थे तो रेडियो पूरे दिन मेरे पास रहता था। तो आज की इबारत बहुत सुंदर लग रही है और मैं वो दिन याद कर रहा हूँ। शुक्रिया इस बात के लिए। अब बहुत सारे श्रोताओं की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है, फिल्म ये रात फिर ना आएगी, और जो इबारत है, इबारत में जो शब्द है, फिर मिलोगी कभी इस बात का वादा कर लो, तो इसमें कई शब्द आ जाते हैं। प्यार वाले शब्द भी आते हैं, इकरार वाले भाव भी आते हैं। तो सुनिए ज़रा ये गाना और हमें बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत और गीतकार का नाम। और आपको अपनी मुलाकात याद आती है किसी से, तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। यादों के गलियारों में आप टहल रहे हैं इन गानों के माध्यम से, तो अपनी यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कभी किसी से आपने ये बात कही थी जो गाने में है? कभी किसी से पूछा फिर कब मिलोगी?

गीतकार एसएच बिहारी, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें फिल्म ये रात फिर ना आएगी। और श्रोताओं की ओर से जानकारी आई है शर्मिला टैगोर, एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी से मेरी पहली मुलाकात मेरे जीवन का एक यादगार पल है, इस गाने के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार उन्हें देखकर मन में अपनापन और सम्मान का भाव जागा। उनकी सादगी, मुस्कान और सहज स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मुलाकात भले ही छोटी थी लेकिन उसी ने हमारे रिश्ते की खूबसूरती की शुरुआत की। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल पार्क में गर्मी बहुत हो रही है, कभी कभी कोई नहीं आती है, जब चलने का समय होता है तब पूछती हैं कल आओगी ना, मिलोगी ना। भाई ये तो सहज सा सवाल है और ये इस गाने में ज़रूर है। और हमने पूछा था कि आपने कब किसको कहा था, पूछा था ये सवाल, तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह, अपने जीवन साथी से प्यार करना रिश्ते को पवित्र रखता है, बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा कौवा वाली कहानी अपनी पोती को सुना रही थी, जैसे कि मैं हिंदी में सुना रही थी। पूरी कहानी सुनाने के बाद बोलता है, दादी ये प्यासा कौवा नहीं था, ये तो थ्रस्टी क्रो था। तब मैंने उसे बताया कि तुम्हें प्यास लगती है तो बोलते हो ना कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो हिंदी में प्यासा ही बोलते हैं। क्या बात है भाई। तो ठीक है, अगर वो थ्रस्टी क्रो के नाम से सुनता है तो भी उन्हें सुनाइए, धीरे धीरे वो प्यासा कौवा समझ जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि ज़रा संभालिए अदाएं आपकी, ये गाना साल 1961 का है, बड़ा आदमी फिल्म का, बड़ा ही खूबसूरत और सदाबहार रोमांटिक युगल गीत है। इस गाने को सुर कोकिला, लता मंगेशकर और दिग्गज गायक महेंद्र कपूर ने

इन सुरीली आवाज से सजाया था। और अभी अभी एक टिप्पणी आई है, लिखा है हमारे श्रोता ने कि अनेकों प्रेरणादायक कहानियां बच्चों को बचपन से आज तक धर्म पत्नी सुनाती रहती हैं और साथ में मैं भी सुन लेता हूँ, मैं स्वयं व्यस्तता के कारण सुना नहीं पाता हूँ। चलिए अच्छी बात है, ये सुनते और सुनाते रहिए। अब फिल्म दिल ने पुकारा, बताइए पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना? मुकेश की आवाज़ है, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

और अब हम गाने के साथ थोड़ी सी बेवफाई करके ये गाना पूरा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि एक गाना जो ज़रूरी है इबारत से जुड़ा हुआ और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, दिल ने पुकारा फिल्म का ये गीत था, उसके बाद छोटी सी मुलाकात ये वाला गाना सुनवाना है। लेकिन कुछ टिप्पणियां भी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकातें टीस देती हैं, बात अधूरी रह गई, साथ छूट गया। कुछ एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पतिदेव मुझसे भोपाल मिलने आया करते थे, वो बात याद आ गई। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह से 10:30 बजे तक विविध भारती हम सुनते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के साथ हमारी दोस्त याद आ गई, दादी और दादा याद आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लाइन में कहानी वाली बात, बहुत मज़ा आया पढ़कर। अब ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: छोटी सी मुलाकात, बस आज की मुलाकात तो बस इतनी ही हो सकती है, यही फिल्म का नाम था। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। आज के प्रोग्राम का सफ़र बस इतना ही। सुरीला सफ़र का ये सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 32वीं कड़ी।

0: बारिसाल अधिवेशन को पहले ही दिन मिले इस उत्स्फूर्त प्रतिसाद से बौखलाए हुए अंग्रेज अधिकारी जमा हुए युवाओं और नेताओं पर निर्मम लाठीचार्ज करके भी नहीं रुके। अधिवेशन के लिए आए सभी लोगों के नेता और आदरणीय स्थान रखने वाले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ब्रिटिश अधिकारी कैंप ने गिरफ्तार कर लिया। उस दिन अदालत की छुट्टी होने के कारण उन्हें मजिस्ट्रेट के घर ले जाया गया। वहां सुरेंद्रनाथ ने सरकार की तानाशाही की कड़े शब्दों में निंदा की। इससे चिढ़कर मजिस्ट्रेट इमर्सन ने अदालत की अवमानना के लिए उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही जुलूस में भाग लेने के लिए 200 रुपये का जुर्माना और अलग से लगाया। वकील और सबूत पेश करने का अनुरोध भी इमर्सन ने ठुकरा दिया। सुरेंद्रनाथ ने तुरंत यह जुर्माना भरा और सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अधिवेशन स्थल की ओर दौड़ पड़े।
1: वंदे मातरम शब्द पर प्रतिबंध लगाना, सुरेंद्रनाथ की गिरफ्तारी, उन्हें हुआ जुर्माना, लाठीचार्ज, ये सब गैर कानूनी था। उस परिस्थिति में भी वंदे मातरम की विराट गूंज के साथ अधिवेशन की शुरुआत हुई। वंदे मातरम गायन से सभा शुरू हुई। अश्विनी कुमार दत्त और सुरेंद्रनाथ बनर्जी अभी सभा स्थल पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए निवारण चंद्र दास गुप्त ने भाषण दिया। अध्यक्ष अब्दुल रसूल ने कहा,
2: हिंदू हो मुसलमान हो, हम सबको मिलकर ये आजादी की लड़ाई लड़नी है। हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। देश की भलाई के लिए हम में से हर एक को ये काम करना ही चाहिए।
1: ये भाषण चल ही रहे थे कि सभा मंडप के बाहर वंदे मातरम के नारे और शोरगुल सुनाई देने लगा।

0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी का सभा मंडप में आगमन हुआ। उनके आने से सभा स्थल पर जुटे युवाओं में और भी उत्साह भर गया। लाठीचार्ज के घामों से लहू लुहान हुए शरीर का ख्याल भी कार्यकर्ताओं को उस उत्साह के जोश में नहीं रहा। स्वयं सुरेंद्रनाथ भी इस प्रतिसाद से भाव विभोर हो गए। मंच पर पहुंचने के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अत्यंत संयमित स्वर में मजिस्ट्रेट के बंगले पर घटी घटना सुनाई। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल का भी भाषण हुआ।
1: बारिसाल का युवा नेता चित्तरंजन गुहा बुरी तरह से घायल हो गया था। एक दिन पहले ही निकले जुलूस में आगे रहने वाला यह युवक वंदे मातरम के नारे लगा रहा था और बाकी युवाओं से मिले प्रतिसाद से चिढ़े अंग्रेज अधिकारी ने इस युवक की बेरहमी से पिटाई की। उस खून से लथपथ हालत में भी वो वंदे मातरम के नारे लगाता ही रहा, इसलिए सिपाहियों ने उसे सामने के तालाब में फेंक दिया। साथियों के कारण उसकी जान बची। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि दिन दहाड़े सड़क पर वो भारत माता की जय जयकार कर रहा था। उस हालत में भी उसके पिता मनोरंजन गुहा उसे मंच पर लेकर आए। उनका भी भाषण हुआ।
0: दूसरे दिन 15 अप्रैल को सुबह फिर अधिवेशन शुरू हुआ। बिपिन चंद्रपाल युवाओं को मार्गदर्शन देने लगे। तभी बंग भंग विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संध्या के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय सभा स्थल पर आए। उन्हें देखकर तो प्रतिनिधियों ने फिर से वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वंदे मातरम पूरे गीत का और मागो जाए जौन जीवन चले गीत का भी गायन हुआ।

0: अश्विनी कुमार दत्त ने सभा के सामने प्रस्ताव रखा,
1: जिस स्थान पर पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू किया, हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार किया, उस स्थान पर इस घटना की याद में एक स्तंभ बनाया जाए।
0: इस प्रस्ताव पर वहीं के वहीं अपने हाथों की अंगूठियां और पैसे देकर सदस्यों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया।
2: उसी समय कैंप ने निषेधाज्ञा का आदेश दिखाकर सबसे वचन मांगा कि कोई भी प्रतिनिधि सभा समाप्त होने पर वंदे मातरम का घोष नहीं करेगा। बीते कल निर्ममता से लाठी चार्ज करने वाले कैंप को सभा स्थल पर देखकर उपस्थित जन समुदाय और भी क्रुद्ध हो गया। कैंप सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के पास गया और बोला,
3: लिसन, I'll be safe here with you. Being a government officer, I have to obey the government orders.
2: सरकारी अफसर होने के नाते मुझे सरकारी हुक्म मानना पड़ता है। सभा समाप्त होने पर यहाँ जुटे लोग वंदे मातरम के नारे नहीं लगाएंगे, ऐसा आश्वासन आप दें, तभी मैं ये सभा आगे चलने दूंगा, अन्यथा अभी ही इसी समय सभा बंद करनी पड़ेगी।
0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित सभी नेताओं ने ऐसी सहमति देने में असमर्थता जताई। कैंप ने सभाबंदी का आदेश दिया। उपस्थित जनसमुदाय सभाबंदी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लोगों को समझाया,
1: कल बहुत बड़ा रक्तपात हुआ है, आज फिर उसकी पुनरावृत्ति किस लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन का हमारा उद्देश्य सफल हो गया है।
0: अध्यक्ष ने परिस्थिति पर विचार किया, अधिक विरोध से स्थिति बिगाड़ने की बजाय ये अधिवेशन सर्वसम्मति से बर्खास्त कर दिया, परंतु वंदे मातरम के संबंध में कोई भी वचन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्रोधित कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और भी जोर से वंदे मातरम का घोष करते रहे। खाली मंडप में रह गए केवल सशस्त्र सैनिक। अधिवेशन समाप्त होने पर बाहर निकल रहे लोगों से बिपिन चंद्र पाल ने कहा,
1: आज भले ही निषेधाज्ञा लागू की गई हो, फिर भी क्रांति की आग यहाँ भड़क चुकी है। आप सब अपने अपने गांव जाकर सभाओं का आयोजन करें और क्रांति की आग सब और फैला दें। आज का दिन शोक संतप्त होने का नहीं, बल्कि अत्यंत आनंद का दिन है।
2: अधिवेशन समाप्त कर घर जाने वाले प्रतिनिधियों का हर स्टेशन पर वंदे मातरम की घोषणाओं के साथ जोरदार स्वागत हो रहा था। बरिसाल से लौटते समय रेल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी से भगिनी निवेदिता ने कहा,
4: आपको जेल में बंद करने का सरकार का षड्यंत्र आपने विफल कर दिया है। अपने ही बुने जाल में ब्रिटिश सरकार फंस गई है। नैतिक विजय तो हमारी ही हुई है।
2: भगिनी निवेदिता की यह बात आगे सच साबित हुई।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 32वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग, समृद्धि नाइक, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

नमः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है। अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24,00,000 रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जाँच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
4: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए

0: मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज में।

मुकेश की आवाज में ये था तीसरी कसम फिल्म का गाना, रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुनिए रोशन की बनाई तर्ज पर लता मंगेशकर का गाया गाना, रचना है साहिल लुधियानवी की फिल्म बहू बेगम।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दिल दिया दर्द लिया फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। लिखा था इसे शकील बदायूनी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। राजा मेहदी अली खां के बोलते फिल्म थी वो कौन थी। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: हमारा अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, बस थोड़ी ही देर में।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब थोड़ी देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे सामयिक चर्चा।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। नड्डा आज शिमला में भाजपा द्वारा आयोजित 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत शिमला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये 12 साल केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं बल्कि विकसित भारत की मजबूत आधारशिला रखने वाले परिवर्तनकारी वर्ष हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिनों तक प्रदेश के प्रधान सेवक के रूप में कार्य करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये उपलब्धि केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ जनता के विश्वास, समर्थन और आशाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल का आह्वान करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा था और पिछले 12 सालों में उस संकल्प की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। नड्डा ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को विकास की नई रफ्तार दी है और स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत ढांचे में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय राजमार्गों से हिमाचल की तस्वीर बदली है।
3: और ये 12 वर्ष मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि ये विकसित भारत की आधार रखने वाले 12 साल, जिस विकसित भारत को 2047 में देखने के लिए आतुर है, उस विकसित भारत का आधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 12 सालों में रखा है। कोरोना के दौरान जब भारत अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि अब अगले 25 साल वह अमृत काल होगा और उस अमृत काल के लिए हम विकसित भारत की कल्पना को पूरा करें। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये 12 वर्ष जहां हमारे को आधार बन के रूप में मिले हैं, वहीं हम पूरी संकल्प के साथ आगे की लंबी छलांग लगाते हुए देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए हम आतुर हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
2: नड्डा ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास योजना से हिमाचल के लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदलकर जन विश्वास को मजबूत किया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि मेले, उत्सव और त्यौहार हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग है। ऐसे आयोजन न केवल लोगों को मनोरंजन का अवसर प्रदान करते हैं बल्कि समाज में आपसी भाईचारे, सद्भाव, सहयोग और सांस्कृतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुलदीप सिंह आज भटियात विधानसभा क्षेत्र की सिंहुता पंचायत में छिंज मेले के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना समय की जरूरत है और खेलों के माध्यम से युवाओं को अनुशासन, आत्मविश्वास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने इस अवसर पर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की कुश्ती प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत खरगट निवासी नवीश कुमार को स्वर्ण पदक जीतने पर 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व विधायक विनोद कुमार ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे समाप्त करने के अभियान पर चल रही है। विनोद कुमार ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक 2000 से अधिक शैक्षणिक व अन्य जनहित संस्थाओं को बंद कर प्रदेश के विकास की रफ्तार को रोक दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए छात्र संख्या का बहाना बनाकर स्कूलों को बंद कर रही है जो सरासर गलत है। भाजपा नेता ने कहा कि सरकार शिक्षण संस्थाओं को बंद कर प्रदेश का भविष्य नहीं बना सकती। उन्होंने स्कूल बंद करने के निर्णय को जन विरोधी करार दिया और कहा कि सरकार इस फैसले को तुरंत वापस लें। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जून 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 13 व 14 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में प्रदेश भर के 24,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, जेबीटी और टीजीटी संस्कृत विषयों की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें धर्मशाला पहुंच गई हैं। मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि धर्मशाला के मैदान पर दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। बीती रात राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तेज आंधी और तूफान के साथ वर्षा हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज कुल्लू, मंडी, सिरमौर और शिमला जिलों में ओलावृष्टि, वर्षा, आसमानी बिजली, कड़कने और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा।
4: 12 जून तक लगभग प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 13 और 14 जून को भी संभावना है कि स्पेशली जो मध्यवर्ग डिस्ट्रिक्ट है, जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बारिश का दौर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ जारी रहेगा। हालांकि
2: इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
5: प्रादेशिक समाचारों के बाद आकाशवाणी शिमला से लीजिए प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। आज का विषय है फाइबर अर्थव्यवस्था, भारत का अगला वैश्विक अवसर। वाचक हैं राकेश शर्मा।
2: फाइबर के साथ भारत का 5000 वर्ष पुराना सभ्यतागत संबंध है, जो हमारे गांवों, परंपराओं और सामूहिक पहचान में गहराई से गुंथा है। बुनी हुई हवा कहलाने वाली मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध मलमल से लेकर समस्त महाद्वीपों तक फैली भारतीय कारीगरी तक फाइबर हमेशा से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा रहा है। आज जब दुनिया वैश्विक स्थिरता की क्रांति की कगार पर खड़ी है, तब यही प्राचीन ज्ञान हमारी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति है। दशकों तक केले के पेड़ के तने को बेकार अपशिष्ट मानकर फेंक दिया जाता था। आज वही बायोमास प्रीमियम फाइबर बनकर निर्यात बाजारों की मांग पूरी कर रहा है, ग्रामीण आजीविकाओं को सशक्त बना रहा है और इस कृषि अवशेष को राष्ट्रीय आय में बदल रहा है। अपशिष्ट से समृद्धि तक, स्थानीय प्रचुरता से वैश्विक अवसर तक, यही भारत की न्यू एज फाइबर मुहिम का सार है, जो हरित सामग्रियों और भविष्य के लिए तैयार वस्त्रों में भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर कर रहा है। न्यू एज फाइबर ऐसे टिकाऊ और पौधों आधारित पदार्थ है जो भारत के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक नवाचार के साथ जोड़ते हैं। बांस, भांग, केला, PLF, फ्लेक्स, रेमी सीसल, मिल्कवीड और कपोक जैसे फाइबर सदियों से मौजूद रहे हैं, लेकिन अब इन्हें वस्त्र उद्योग, रक्षा, बायोडिग्रेडेबल कंपोजिट्स और प्रीमियम उत्पादों में उच्च मूल्य उपयोगों के लिए नए सिरे से खोजा जा रहा है। ये हरित भविष्य के लिए नए भारत के प्राकृतिक फाइबर भंडार का विस्तार कर रहे हैं। बढ़ती आय, वैश्विक स्थिरता संबंधी अनिवार्यताएं और ट्रेसबल सोर्सिंग की आवश्यकताएं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को पूरी तरह बदल रही हैं और एक नई फाइबर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही हैं। उपभोक्ता अब अपने पहले कपड़े के आराम, पसीना सोखने की क्षमता या ब्रीदेबिलिटी और टिकाऊपन चाहते हैं। यही महत्वपूर्ण बदलाव भारत में फाइबर की खपत को आज के 15 MMT से बढ़ाकर 2030 तक 23 MMT तक ले जाने वाला है। दुनिया अब तेजी से वही तलाश रही है जिसे भारत प्रदान कर सकता है, नैतिक, टिकाऊ और उच्च प्रदर्शन वाले प्राकृतिक फाइबर जो सदियों के अनुभव पर आधारित हैं। इस विजन को एक स्पष्ट संस्थागत एवं नीतिगत ढांचे का समर्थन प्राप्त है। वर्ष 2026 से 31 तक के लिए 5,664 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाले मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत न्यू एज फाइबर्स के लिए 300 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान रखा गया है। इस प्रयास को और

0: सशक्त बनाते हुए केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित राष्ट्रीय फाइबर मिशन एक व्यापक रणनीतिक ढांचा प्रदान करता है जो चार प्रमुख स्तंभों कृषि, सूत्र, खेती और कच्चे माल के विकास के लिए, इन्फिनिटी अनुसंधान और नवाचार के लिए, ग्राम सेतु अवसंरचना और उद्यम सृजन के लिए तथा GMPS ब्रांडिंग और बाजार विकास के लिए आधारित है। इस नीतिगत ढांचे की शक्ति दशकों से जारी वैज्ञानिक अनुसंधान में निहित है जिसके ठोस परिणाम पहले से ही सामने आ चुके हैं। इस सेमिनार ने मानकों, प्रसंस्करण अवरचना और संस्थागत वित्तपोषण में मौजूद खामियों को भी स्पष्ट रूप से पहचान की, जो एक ऐसे मिशन को दर्शाता है जो केवल नीति नहीं बल्कि वास्तविक क्रियान्वयन पर केंद्रित है। इसके लाभ पूरी मूल्य श्रृंखला में फैलते हैं। उपभोक्ताओं को बेहतर आराम और कार्यक्षमता मिलती है, निर्माताओं को प्रीमियम और विशिष्ट उत्पाद विकसित करने का अवसर मिलता है और किसानों को विविध प्रकार की मांग और अधिक मजबूत आय प्राप्त होती है। इसके साथ ही ये सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धन्नो जायसवाल बोल रहे हैं झांसी से। हाँ
0: झांसी से धन्नो जायसवाल।
1: झांसी।
0: धन्नो जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे हमारे
0: जी
1: 3 बच्चे हैं।
0: जी तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और दो लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी
1: हाँ,
0: किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते
1: सब
0: थे,
1: हम ही करते थे, मैडम सब हम करते थे। हाँ
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है, जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए
1: हाँ,
0: आप ही की जी, तो तुम बिन फिल्म का आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी, जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ,
0: जी
1: बताइए।
0: जी हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण गृहिणी हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
0: जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगे अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ,
0: जी
1: मैं
0: सुनाइए।
1: आपको अपनी रचना सुनाती हूँ।
0: जी।
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई। जब से तुमको ना खुदा माना है, कुत्ते हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, गुफा में ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये भैया दुकान कविता है।
0: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: सरस्वती चंद्र का
0: जी
1: छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: जी बेहद सुंदर गीत है। तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैला सुतार बात कर रही हूँ बिड़ले से। हाँ
0: बीड जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा चल रहा है जीवन? क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैं कुछ हूँ। और यहाँ इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ, टाटे चौक में।
0: जी
1: हाँ, उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती
0: जी
1: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा
1: बहुत
0: है।
1: बहुत
0: और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल, तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का। वो हैंडीकैप्ट होके भी बहुत काम करते हैं, स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते
1: हाँ
0: हैं, सभी
1: यस,
0: का एक
1: हाँ हाँ
0: अपना अपना
1: यस,
0: अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना
1: बहुत बहुत बहुत। हाँ
0: जी। तो घर में आपके बच्चे भी
1: हाँ
0: हैं?
1: हाँ मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है। और मिस्टर जो है तो काम भी कर रहे थे यहाँ पे।
0: जी जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं, है ना? तो उन दिनों में बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
1: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल। और छुट्टों में भी कैसा करते थे, पढ़ाई में तो ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो, बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू, तो फिर कवर लगाने का, मैं बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
0: जी बिल्कुल। और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे
1: ओ बहुत बहुत,
0: करते थे?
1: हाँ ये शाम भी करते थे ना, उधर की पत्ता इधर इधर का उधर ऐसा करके हम
0: हाँ
1: उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
0: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ
1: हाँ
0: साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना
1: बहुत बहुत मैम,
0: जी। आपसे बात करके हमें
1: बहुत
0: बहुत
1: बिल्कुल।
0: अच्छा लगा वैजयंती जी। आज
1: हाँ
0: बताइए, आप
1: हाँ
0: कौन सा
1: मुझे
0: गीत
1: जिंदगी
0: सुनना चाहती हैं?
1: हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद
0: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है
1: है।
0: इसलिए आप सुनना चाहती हैं।
1: बहुत पसंद है, यस।
0: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है
1: जी,
0: ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी। तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी, मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है। बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है, वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी
0: जी।
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी जी मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ
0: जी।
1: और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी, ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कंधे से मजबूत उसकी छत हो, छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो शहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूल्हा, ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं से खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए आप आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं वो सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा ही गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम,
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजवे बोल रही हूँ मैडम। मैं नागपुर से।
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में, गाने
0: जी
1: का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं।
0: जी तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम, मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, और घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की।
0: जी, मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम
1: पापड़
0: करती हैं।
1: बनाते, ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर पे बनाते,
0: जी, तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: किलो
0: हैं?
1: से घर के। जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
0: अच्छा।
1: जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला, और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेशा, ये गाना सुनना है
0: बिल्कुल,
1: अग्निपथ 2 का।
0: आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता,
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता। कहाँ से बात कर रही हैं
1: कोटपुतली
0: आप डॉक्टर श्रुति?
1: जयपुर राजस्थान से। हाँ
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: जी, ये छोटा टाउन है, जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली, तो मैं
0: जी
1: वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा
1: हाँ
0: में
1: जी,
0: आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?

0: हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
1: अरे वाह।
0: तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई हूँ।
1: तो अभी अभी शादी हुई है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
0: जी, बिल्कुल।
1: तो कैसा लग रहा है अब यहाँ पर नए शहर में है? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
0: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
1: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है या आप अभी कर नहीं रही हैं?
0: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
1: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए? इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
0: नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं है
1: बहुत अच्छी बात
0: इसलिए।
1: है। तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
0: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम कर रहे हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना
1: जी
0: होगा।
1: बिल्कुल
0: तो
1: जी।
0: इसीलिए जड़ से उपचार करने के लिए हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
0: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे। वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर वो
1: जी
0: बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
1: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
0: बहुत धन्यवाद आपका।
1: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
1: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, ये तो बताइए नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता उइके।
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसे हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी सिकंदरा से। तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है
0: अच्छा।
1: और बालाघाट है।
0: जी बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी है।
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी, हाँ जी जी जी
0: जी। तो सुनीता जी हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा है, मेरे पति है, दो बच्चे हैं
0: जी।
1: देवर के, एक है एक मेरा है। हाँ।
0: अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
1: नहीं नहीं छोटे हैं दीदी, एक है अभी 9 साल का है, अभी मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी। तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे?
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं पूरा दिन, तो हाँ उनको भी कभी कभी समय मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
0: जी जी। तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ
0: जी।
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे
1: हाँ।
0: गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया, आप ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुना था, मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालगाना का इंदौर से मैडम
0: जी। ये
1: जी।
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ। गाने के बोले दिल का सुनना था ताराना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियो, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की, और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबां। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02-2400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02-2400-24662, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02-2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02-2867-0288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नज़र 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफ़ेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नज़र आ रही थी और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नज़र उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नज़र उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफ़ेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नज़र रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नज़र उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नज़र पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नज़र दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नज़र से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि। बहुत जगह है मेरे कमरे में, यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने। कोई ज़रूरत नहीं है। आप अंदर रखवाती हो या नहीं? नहीं। आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो। नहीं। अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो। पक्का ना? हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदलकर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज़ सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नज़र हटाकर मेज पर सजी महिला की फ़ोटो देखने लगी, फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छन कर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती? क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती। पर बताना तो पड़ेगा ना? पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू। प्रेम। ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है, देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूँगा। तुम जानते हो मेरी हालत, तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नज़र पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है, लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम, उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है, लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फ़ोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज़ की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाज़ा तो लगा हुआ है, लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुरा कर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहन कर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ, वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो, क्या मैं कर दूँ मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूँगी। अच्छा, बुआ ने ज़्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुँह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो, अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ, मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध लो बेटा। बुआ, मुझे खुले बाल पसंद हैं। अच्छा बाबा, जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले।
तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफ़ेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जमा दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी। और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना मिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नज़र उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, इतनी तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो। बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज़ घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फ़ोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी। लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूँ कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी लेकिन अरविंद की नज़र शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नज़र शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी लेकिन शिवानी अरविंद के इस नज़र का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं, कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नज़र का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदाबांदी रुक गई थी लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी, वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

वह कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे। ये बता, अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहाँ वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। दो दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूँगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई ना कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उसे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थी। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज़ ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वहां उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहां तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहां अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

उस रोज मोबाइल किनिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे, अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में है। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली। अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में? आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ अभी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था। हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज़्यादा प्यार नहीं करती। इतना ज़रूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ नहीं आया कि कैसे दूँ।

बुआ, तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज़ तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है, मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है, जिसमें लिखा है, मम्मा, मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वो इंतज़ार बहुत साल पहले ख़त्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फ़ोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी, अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतज़ार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज़ हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरगवान रब्बही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: सरसों को
1: क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने के भक्तों के सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। गृहमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्री शाह ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित प्रयास करने चाहिए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वे नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारियों ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छुपाने पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरतों का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए थे। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चैन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 21 जून तक नई दिल्ली में BSF मुख्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान आपसी तालमेल वाली गश्त को और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने, वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सुधार और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को तेज करने पर सहमति बनी। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सम्मेलन में पवन ऊर्जा क्षेत्र के अगले चरण में ऊर्जा की मांग में वृद्धि पर चर्चा होगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में PV सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकानो यामागुची से होगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल रात तक बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। घरेलू शेयर सूचकांक आज 2% की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1695 अंक के उचाल के साथ 75,528 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारे सभी श्रोताओं को आज के इस कार्यक्रम में आपके रेडियो दिस रेणु मनकोटिया का प्यार भरा नमस्कार। कर्म वह दर्पण है जिसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। श्रेष्ठ कर्म सुगंध देते हैं और मिट्टी में भी फूल की भांति दिखाई देते हैं। जीवन कर्म का दूसरा नाम है। जो कर्म नहीं करता उसका अस्तित्व तो है परंतु वह जीवित नहीं है। हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आज के इस कार्यक्रम में।

भक्ति आत्मा का परम सुख है। जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है तो उसे एक अनोखी शांति और आनंद की अनुभूति होती है। सांसारिक सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन भक्ति का आनंद शाश्वत और अटूट होता है।

0: गैर फिल्मी भजन अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: परमात्मा का स्पर्श हो।
0: श्री कृष्ण की नटखट अठखेलियां सबके मन को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। सांवरे कन्हैया की मधुर बांसुरी कीर्तन सबके मन को मोह लेती है।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी भजन, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम युवा मंच में। जी हाँ, सप्ताह भर की भागदौड़ और व्यस्तता के बाद आ गया है शुक्रवार, यानी मनोरंजन, संगीत और सिनेमा की दुनिया में खो जाने का दिन। स्वागत है आप सभी का हमारे खास सेगमेंट फिल्मी फ्राइडे में। युवा दोस्तों, भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, भावनाओं और समाज का आईना भी है। फिल्मों के माध्यम से हमें हंसी, खुशी, प्रेरणा, संघर्ष और जीवन के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। फिल्मी फ्राइडे में आज हम बात करेंगे उन फिल्मों की जिन्होंने युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला दिया। चाहे बात हो दोस्ती की, परिवार की, प्रेम की या अपने लक्ष्य को पाने के संघर्ष की, भारतीय सिनेमा ने हर भावना को बड़े पर्दे पर खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए।

0: this June. Make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

युवा दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपके अपने कार्यक्रम युवा मंच में। जी हाँ, फिल्मी फ्राइडे में जहाँ बातें होती हैं बॉलीवुड की दिलचस्प किस्से और फिल्मी दुनिया की रंगीन बातें। युवा दोस्तों, सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज का आईना भी है। फिल्में हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं, प्रेरित करती हैं और जीवन को नए नज़रिए से देखने का अवसर देती हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही फिल्मों की। जी हाँ, इन तीनों है जवानी तो इश्क होना है दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। रोमांस और कॉमेडी से भरपूर यह फिल्म युवाओं को खूब पसंद आ रही है। वहीं निर्देशक इम्तियाज अली की फिल्म में वापिस आऊँगा भी चर्चा का विषय बनी हुई है। भावनाओं और रिश्तों पर आधारित यह फिल्म दर्शकों के दिलों को छूने का प्रयास करती है। और अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो वेलकम टू द जंगल का नाम भी चर्चा में है। फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है और सभी इसकी रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं।

0: जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
4: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
5: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
4: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
5: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
4: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
5: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
6: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
7: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
8: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.

जी हाँ, कार्यक्रम युवा मंच में एक बार फिर से स्वागत हमारे सभी युवा दोस्तों का और हमारे तमाम श्रोताओं का भी। क्या आप जानते हैं भारतीय सिनेमा विश्व के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक है। हर साल भारत में विभिन्न भाषाओं में हजारों फिल्में बनाई जाती हैं। बॉलीवुड के साथ साथ क्षेत्रीय सिनेमा भी अपनी शानदार कहानी और अभिनय के लिए विश्व भर में पहचान बना रहा है। जी हाँ, तो चलिए अब हम करते हैं फिल्मी क्विज। सवाल है कि किस अभिनेता को खिलाड़ी कुमार के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, यदि आपका जवाब है अक्षय कुमार तो बिल्कुल सही।

फिल्मी फ्राइडे अभी आप सुन रहे हैं। शुक्रवार का ये दिन है और आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में भी युवा दोस्तों आपसे बात करेंगे। बहुत ही आज खास दिन है, आज है 12 जून और पूरे विश्व में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जा रहा है। युवा दोस्तों, बचपन जीवन का सबसे सुनहरा दौर होता है। यह समय शिक्षा प्राप्त करने, खेलने कूदने, अपने और भी सपने देखने और अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का होता है। लेकिन दुनिया में अनेक हिस्सों में लाखों बच्चे आज भी बाल श्रम करने के लिए मजबूर हैं। गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता और जागरूकता की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को बाल श्रम की समस्या के प्रति जागरूक करना तथा बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार दिलाने के लिए प्रयासों को मजबूत करना है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे का अधिकार है कि वह विद्यालय जाए, अपने सपनों को साकार करे और सुरक्षित वातावरण में जीवन व्यतीत करे। युवा दोस्तों, बाल श्रम केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह बच्चों के बचपन और उनके भविष्य के साथ अन्याय भी है। हमें अपने आसपास ऐसे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए जो मजदूरी करते दिखाई देते हैं। यदि संभव हो तो उन्हें शिक्षा और सहायता से जोड़ने का प्रयास करें तथा संबंधित अधिकारियों को जानकारी दें। युवाओं की भूमिका इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा जागरूकता अभियान चला सकते हैं, शिक्षा के महत्व को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव के वाहक बन सकते हैं। जब हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि किसी भी बच्चे को श्रम नहीं बल्कि शिक्षा और अवसर मिले, तभी एक सशक्त और विकसित समाज का निर्माण संभव होगा।

कार्यक्रम का समय हुआ जा रहा है, तो चलते चलते हम आपको बता दें कि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला विपिन कुमार से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

0: अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। विषय रहेगा शून्य लागत प्राकृतिक खेती। साथ ही होंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी, भेंट वार्ता और आपके मनोरंजन के लिए कुछ लोकगीत। शाम 6:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम मुजाग्रहिदियां। आज इसमें बातचीत का विषय है कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग। शाम 7:10 पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम जन विश्वास, इज ऑफ डूइंग बिजनेस। जी हाँ, ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात्रि 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस और 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे। 9:15 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा 1986 में प्रदर्शित की गई मजलूम फिल्म से कुछ चुनिंदा गीत। रात्रि 9:30 से 10:00 तक सुनिएगा सुरों का कारवां। बॉलीवुड बीट्स नई फिल्मों से गीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00 से 10:30 तक। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 न्यूज 8:09। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कल सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी का लुत्फ उठाइएगा। इस कार्यक्रम में जानकारियों के साथ होगा मनोरंजन का संगम भी। महिलाओं के कार्यक्रम सुनो सखी आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:59 और 20 सेकंड हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। नड्डा आज शिमला में भाजपा द्वारा आयोजित 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत शिमला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये 12 साल केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं बल्कि विकसित भारत की मजबूत आधारशिला रखने वाले परिवर्तनकारी वर्ष हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिनों तक प्रदेश के प्रधान सेवक के रूप में कार्य करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये उपलब्धि केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ जनता के विश्वास, समर्थन और आशाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरा किए तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल का आह्वान करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा था और पिछले 12 सालों में उस संकल्प की मजबूत नींव रखी जा चुकी है।
1: और ये 12 वर्ष मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि ये विकसित भारत की आधार रखने वाले 12 साल, जिस विकसित भारत को 2047 में देखने के लिए आतुर है, उस विकसित भारत का आधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 12 सालों में रखा है। कोरोना के दौरान जब भारत अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि अब अगले 25 साल वह अमृत काल होगा और उस अमृत काल के लिए हम विकसित भारत की कल्पना को पूरा करें। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये 12 वर्ष जहां हमारे को आधार बन के रूप में मिले हैं, वहीं हम पूरी संकल्प के साथ आगे की लंबी छलांग लगाते हुए देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए हम आतुर हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
0: नड्डा ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को विकास की नई रफ्तार दी है और स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत ढांचे में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेजों और राष्ट्रीय राजमार्गों से हिमाचल की तस्वीर बदली है। नड्डा ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास योजना से हिमाचल के लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदलकर जन विश्वास को मजबूत किया है। प्रदेश सरकार में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को रैत कोहला बल्ला सड़क की टारिंग का कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पठानिया ने विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ इस सड़क के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में स्थानीय शहरी निकायों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आए, लगभग आधा महीना बीत चुका है लेकिन इन निकायों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चयन नहीं हो पाया है। ऐसे में नवनिर्वाचित पार्षद अब जल्द से जल्द ये चुनाव संपन्न करवाने की मांग कर रहे हैं। नाहन नगर परिषद के लिए नवनिर्वाचित पार्षद संजय चौहान का कहना है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का अभी तक चुनाव नहीं होने के कारण नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने उपायुक्त नाहन को ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद नाहन के लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव तुरंत करवाने की मांग की है।
2: की डेट मांग रहे हैं जो चुनाव होना है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तो उसके लिए हमें समय दिया जाए और तारीख दी जाए, यही हमारी जो है मांग है।
0: बेंगलुरु स्थित भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास विषय में पीएचडी के लिए आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में शिमला की छात्रा विपाशा श्रीवास्तव ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। पीएचडी करने के लिए उन्हें संस्थान की ओर से फेलोशिप भी दी जाएगी। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के पहले चरण के छठे दिन किन्नौर जिला के प्रतिभागियों ने भारत तिब्बत सीमा के उच्चतम क्षेत्र शिपकीला का दौरा किया। ये दौरा सीमांत क्षेत्रों के प्रति इन युवाओं में जागरूकता, राष्ट्र भावना और आपसी सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:06 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनकर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम। किसान साथी अज टियाले पर मिंजे सो की पंच ता पंच जी राम राम।
1: राम राम बड़का चाचू जी कने कार्यक्रम सुना कर दे सारे ही स्रोतियां जो भी पंच दी तरफा ते राम राम
0: जी। कने किसान साथी अहां टियाले पर दोनों आई पुज्जे न और जानकारी दा जेड़ा अहां सिलसिला के भी जारी करना था अज जेड़ी जानकारी साझा करनी है से है शून्य लागत प्राकृतिक खेती दे बारे च।
1: जी जी जी
0: तो दिखा कि भी असा दे किसान साथी कहने भी भली भांति जान देन कि ये जड़ी शून्य लागत प्राकृतिक खेती है ये किस तरह की खेती है और किया किया यह खेती जो अहां जड़ा किसान के भी अपना करता है।
1: बिल्कुल तो बड़का चाचू ठीक बोला दे अहां दी जड़ी प्राकृतिक खेती है साढ़े बुजुर्ग भी जड़े से साढ़े पूर्वज प्राकृतिक तरीके ने ही जड़ी से खेतीबाड़ी करते थे तिना अपने माल बच्चू देसी नस्ल दे पाले होंदे है ना।
0: बिल्कुल
1: और उन्हां दा जड़ा खाद बनदी ही देसी तिसदा ही उपयोग जड़ा से अपने खेत खलिहाना च करते और जो भी विधि होंदी है उन्हां दी खेतीबाड़ी करने दी से परंपरागत होंदी ही तिस विच जड़ा से प्राकृतिक रूप कन्ने ही जड़ा से अपनी खाद बनानी है तिना जड़े बीमारियां ते रोकथाम वास्ते जड़ा से कई तरह दे जड़े उन्हें दी दवाइयां होंदी सब भी प्राकृतिक रूप कन्ने ही बनदी ही हैं
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: तिसदा ही उपयोग करते और इन्हों का फायदा यह रहा है कि इसते एक तो साड़ी मिट्टी की स्वास्थ्य जड़ा सर ठीक बने रहा और कन्ने ही इस विच साड़े जड़े मित्र कीट होंगे साड़ी मिट्टी विच
0: जी जी
1: सब भी खराब नहीं होंगे क्योंकि अहाँ रसायनिक दवाइया का अगर प्रयोग करते तो इसते साड़े जड़े मिट्टी मौजूद अच्छे तत्व और कन्ने कन्ने साढ़े जड़े अच्छे मित्र कीट होंदे ने सह प्रभावित होंदे ने इन रसायनिक दवाइयों कन्ने।
0: बिल्कुल बिल्कुल और दिखा कि उस टाइम जिया कि अहां गल करना जिया 40-45 साल पहले तब बिल्कुल अहां एक प्राकृतिक विधि कने खेती बाड़ी करते थे लेकिन बोले जी जिया समय बदलौंदा गया है ना
1: हाँ जी
0: और चीज़ा की जी मांग बढ़ती गई तो उस चक्रा च क्या कि भी अस जो किसान साथी है मतलब रसायनिक खादा का प्रयोग किया भी शुरू कर दिता
1: जी
0: रसायनिक खादा का प्रयोग उन्हें शुरू कर दिता और उसके उत्पादन भी ज़्यादा निकलना लग्या।
1: हाँ जी
0: और काफ़ी मतलब भी जी मांग होंगी थी एक बाजार से भी मतलब भी पूरी होना लगी लेकिन जिया जिया मतलब इसका दौर बढ़ता गया तिया तिया इसका जड़ा प्रभाव के भी साढ़े जीवन च भी पिया।
1: बिल्कुल तुहाड़े बोलने का मतलब कि हाँ ये फायदे तो गिणते हैं पर कन्ने कन्ने ये नुकसान भी सू दिखने मिला करते है ना।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि इसका सीधे तौर पर साड़ी मिट्टी के स्वास्थ्य खराब हो करता है और कन्ने कन्ने जेड़े उत्पाद फसल है सब्जियां है फल फ्रूट जेड़े भी अहाँ तिना का उपयोग करा करते इसते साड़ा स्वास्थ्य भी जरा खराब हो करता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो इन सारिया चीज़ा जो इन नुकसान जो दिखते हुए जोड़ा से हूँ साड़ी सरकार भी जी से बोला करती कि प्राकृतिक रूप कन्ने यहाँ अपनी खेतीबाड़ी करनी और प्रकृति तरफ अगर हम मुड़ गए और उसी तरीके ने जड़े से कम कार करके तो इससे सारा अपना भी स्वास्थ्य ठीक रहना और मिट्टी का भी स्वास्थ्य जड़ा से बढ़िया रहना है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल तो देखा कि गल की जाए राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की तो उन्होंने भी भरपूर जोड़े प्रयास कहने कि भी अस किसान साथी की भी ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक विधि कहने खेतीबाड़ी कर और इस ताई टेमे टेमे पर शिविर भी लगाए जाते हैं और इस बारे प्रशिक्षण भी दिता जाता है।
1: जी जी
0: और अज तो दिखा कि असा जो किसान साथी इतना जागरूक है कि भी एक ही दूगे के विचार सुनता एक ही दूगे की विधि दिखता कि भाई ये किस तरीके ने अपनी खेतीबाड़ी करा करता है तो उस हिसाब ने कि भी इसे अपनी खेतीबाड़ी जो कहने भी कर देने
1: जी ता अस,
0: जी जी
1: ये तो थी प्राकृतिक खेती के बारे च साड़ी गलबात और उन्हां चलना प्यारे दे लोक गीत दी तरफ।
0: बिल्कुल

0: किसान साथियों, आशा करने की ये प्यारा दे लोकगीत जरूर पसंद आया होना। और इस लोकगीत के बाद उन्हें चलना अगली जानकारी की तरफ, तो सुनते ने जानकारी।
1: जी, किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी विच अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन नोई ते नोई जानकारी अहां तुहां तकर पुजाइए। चाहे ओ अहां दे कृषि विज्ञानिकां द्वारा दित्ती गई जानकारी होवे या फिर अहां दे उन्नत किसान बागवान साथियों कन्ने कीती गई गलबात होवे। उसी कड़ी विच अज इक उन्नत महिला किसान अहां कन्ने जुड़ा करदे हन, करदे ने इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
2: हां जी, राम राम जी। राम राम सभी को नमस्कार। जी, मेरा नाम सुनीता है और मेरा गांव नड़न, पंचायत नाणा।
1: किन्नी की जमीन है तुहां वाल जिसे तुहां खेती बाड़ी करदे ने?
2: कुछ मतलब जंगल एरिया भी चाहिए जांदियां ने, कने कुछ जानवर ये बजट छड़ती हैं, फिर भी यहां कई मतलब 8-10 कनाल दे विच जेड़ी असे खेती बाड़ी करदे।
1: क्या क्या खेती करदे 8-10 कनाल च?
2: जिस तरह परवी खेती जियां कणक या जा जो अन जेड़े से मतलब सारे करदे ने किसान सहे, पर उस तो अलावा हां जियां कुछ जमीना दे विच पहले हां औषधि पौधे भी ज्यादा लगाए।
1: हां जी,
2: लेमन ग्रास ता हाली भी साडे खेतरां दे विच मता लगे। फिर साडे इलाके विच एलुमा हुंदी है, सहा एलुमा भी लगाई।
1: अच्छा,
2: जिस तरह अशव गंदा या सर्प गंदा या जा कोई इस तरह
1: ते जियां औषधि पौधे पर तोहां जेड़ा सा कामकार करा करदे हन?
2: ए साकी मिशन धनवंतरी दे तहत साकी बीज मिले है, फिर यहां से खुद नर्सरियां तैयार कीतियां।
1: हां जी,
2: और हां और भी काफी ज्यादा महिलाएं की अपने नाना पंचायत दे विच साडा काफी नां चलदा है, धर्मशाला दे विच भी, फिर यहां काफी मेहनत कीती और पूरे पिंड तकरीबन 5-6 लेडीज ने काम किया, कने बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है।
1: अच्छा जी, जियां बेचने दी गल आई बाद जद जल तो हां ये तैयार कर ले है, तो फिर तो हां क्या करना है, फिर ये बेचिए
2: कुछ? मतलब ये थोड़ी जी मुश्किल बेचने दी आई ना, फिर असी ज्यादा करके जिस तरह आप ही ओदा जिस तरह तुलसी दा अर्क कढवाया।
1: हां जी,
2: फिर अर्क तो असी ओदा साबण सूबण तैयार किया।
1: हां जी,
2: फिर जिस तरह दूसरे पासे फिर यहां जेडी जिस तरह लेमन ग्रास था, कैमोमाइल था, फिर अपना तुलसी थे, ए दा सारियां चीजां मिक्स करके यहां ग्रीन टी बनाई है दी, जेडी के काफी फेमस है और काफी लोग एदा पसंद भी करदे है।
1: अच्छा,
2: और जेडी की सेहत लई भी बहुत अच्छी है।
1: हां जी,
2: कल असा जेड़ा जिस तरह फिर हल्दी दा भी करदे हां असा कन्ने।
1: हां जी,
2: मोटे नाजे पर जियां अपना बाजरा है, ज्वार है,
1: हां जी,
2: सोयाबीन है, ए तां बीजी चुकियो।
1: हां जी,
2: और काफी अच्छी उगी भी हो, पर जिस ते बाद थोड़ियां बरखा ज्यादा स्टार्ट हुई है, तो उन से जिस वेले भी थोड़ी जी बरखा दा ठीक होनी है, ते कंगनी कोदरा वांग मतलब इस तरह दी चीजां भी यहां ले रखी उन कने सह चीज यहां ज्यादा तो ज्यादा तैयार करनी, ताकि ये मोटे अनाज वल जिस तरह सरकार भी ज्यादा जोर दिया दी है कने ए अच्छा है।
1: सुनीता जी, जिये तुहां दस्या कि तुहां औषधीय पौधे पर जेड़ा सा खेती बाड़ी शुरू कीती, ते जिये तुहां कल्ले जिये तुहां दस्या कि हां 5-6 जिया मिली के?
2: हां जी, पहले साल असा 5 जनानियां थीयां, दूसरे साल बधी के 10-11 हो गईयां।
1: हां जी,
2: यहां सारे मिली जुली की करदे है जी।
1: अच्छा जी, जियां कि औषधीय पौधे दी जलो तुहां खेती शुरू कीती, ते इस विच जियां खाद वगैरह भी तुहां जेड़ी सा प्राकृतिक जेड़े सा देसी खादां कन्ने तैयार कीते?
2: बिल्कुल जी, हां यो एग्रीकल्चर ने असा जुड़े न, साडा ब्लॉक नगरोटा सूरियां पौंदा है, समय-समय सर साडे ब्लॉक ते आंदे रहंदे।
1: हां जी,
2: साकी साकी ते ना प्रशिक्षण दित्ता, साकी सह जीवा गम अमृत भी यहां बनांदे, घन जीवा अमृत भी बनांदे।
1: हां जी,
2: बाकी कीटनाशक 10-परनी वगैरह ऐसा कीते ना, सब कुछ नीम अस्त्र ब्रह्म अस्त्र आहां ज्यादा ओदा ही उपयोग कर दे, कने असा मतलब दूसरियां चीजां दा जेड़ा कीटनाशक जेड़ियां डब्बी बंद होंदियां हां तिना दा उपयोग जेड़ा असे खेतां विच बिल्कुल नहीं करदे, कने इहदा औषधि पौधियां दा इक सब तो अच्छा फायदा ए है वी इसे कोई जिस तरह जानवर जंगली जानवर हन जा बंदर हन इहो जो कोई इहदा नुकसान नहीं हुंदा,
1: ग्रीन टी तुहां दस्या था, ग्रीन टी जेड़ा सा कुतू तुहां जाई के बेची कुतू जियां तुहां?
2: ए यहां घर ही साड़ी जिस तरह आई जाते साढ़े जिस तरह ब्लॉक दे भी कई बारी आंदे न, फिर आखें बखें भी
1: जी ग्रीन टी जड़ी से जल तो हाँ बनाई है, इस क्या क्या पूरी जड़ी से प्रक्रिया क्या क्या रही, क्या क्या किता पहला, इस क्या क्या समान इस पिया कने?
2: जी हाँ लेमन ग्रास,
1: हाँ जी
2: तुलसी,
1: हाँ जी
2: कैमोमाइल,
1: जी जी
2: दालचीनी, अदरक,
1: अच्छा
2: फिर छोटी इलायची, ये पांच चार चीजा पाई करी इनू हाँ मशीना घर लाई हाँ खुद पसाई की, एरी पसाई करन तो बाद इनू डब्बा बंद किया और पूरा हाँ लेबल लगाया अपना ग्रुप का।
1: अच्छा
2: हाँ जी हाँ जी, क्योंकि वो हरेक जेडिया चीजा ने इस वक्त जी पहले हाँ बारे ते मंगाते है
1: हाँ जी
2: ये चीजा आम जी, कंगनी कोदरा वगैरा इतो लोकल तो मिलता नहीं है,
1: हाँ
2: मेरे
1: जी
2: जाए कि अमृतसर ते आना पौधा हाँ समान,
1: जी जी
2: पर यही प्रयास है कि यहाँ ये चीजा जेडिया ना अपने खेतों विच ही रागी ये सारिया चीजा जेडिया ना हाँ अपने खेतों से तैयार करनिया ना मशीन इसे करके लाई हो ताकि वो ताजी चीज जेडी है से आपू ही पीसीए कने आपू ही से हाँ पैकिंग कर दिए। हाँ
1: जी हाँ जी इस
2: जी
1: इलाके विच जी सिंचाई किए करते तो हाँ खेतां दी, पानी दा क्या
2: सिंचाई
1: साधन
2: तो
1: है?
2: बरखा पर निर्भर है, वैसे यहाँ अपने अपने टैंक बनाए उन्होंने
1: हाँ जी
2: पर टैंका बिच जिया साग सब्जियां तो हो सकदियां ना लेकिन खेती नहीं हो सकती,
1: हाँ जी
2: ते बरखा पर ही निर्भर है ना, लेकिन ये ज्यादा करके जड़ियां चीजा ने ज्यादा करके इस टाइम में बिच ही होंदियां ना, ते इस टाइम में पर थोड़ी बरखा बुरखा हो जांदियां ना छी हो जांदी है।
1: जी हाँ जी कहना प्राकृतिक विधि कहना चलो हाँ खेती करते हैं ना तो उस विच देखा पानी की भी जड़ी से घट जरूरत पौंदी है।
2: हाँ जी हाँ जी, इन्हां चीजें पानी दी वैसे भी घट जरूरत होंदी है और जिन्नी होंदी है से इन्हां दिनां विच से पूरी हो जांदी, तो असें घरे दी साड़ी खाद है कने घरे दी आह सारियां चीजां पाने कने जे सब्जियां असां अपने घरे दिया यूज करिए जे थोड़ी सब्जी भी होंगी से तभी स्वाद लगती है कने, मेरा तो यही प्रयास रहा कने सब तो बड़ी गल है हाँ पोषण वाटिका वाल ज्यादा जनानियां की गलांदे रहंदे ओदे विच अच्छे फल लगे होन, मतलब साड़ा गर्म इलाका है लेकिन मेरे को इस टाइम ते चार पांच बूटे सेबां दे न और क्वांटलां दे हिसाब दे न सेब लगदे न
1: अच्छा
2: कने,
1: जी
2: अमरूद है, अंब है, पपीता, केले, यानी के हर तरह का फल जेड़ा है, मतलब थोड़ी जी सकी जरूरत है मेहनत करने दी, अगर
1: बिल्कुल
2: हर
1: हाँ जी
2: जनानी मेहनत करे तो हम बाजारे का कुछ भी लेना ही नहीं पौंदा और अपने घर दी हाँ कोई स्प्रे नहीं करते हाँ कुछ नहीं करते जी, जहां बिल्कुल जो नेचुरल जो जिन्नी पक्षी खाई जाते हैं खाई आन फिर भी बतेरे बची जाते।
1: जी
2: अच्छा कहना सर जदों तो खेत खेते बिच तो खड़ोंगे कहने जाई करी कने फसल अच्छी लगी होंगी
1: हाँ जी
2: तो तुहाडा खुद मन दिखी करी बड़ा खुश हुंदा है कने, सब्जियां अगर घरे दे चार चफेरे लगियां होन
1: हाँ
2: तो
1: जी
2: अपना ही दिल करी पौना कि हाँ शो गुडना शुरू कर दिए,
1: जी हाँ जी
2: ताजी सब्जी अगर थोड़ी भी हो बड़ी अच्छी लगती है, फुल बूटे घर से लगाए होना तो दिखने भी
1: बिल्कुल
2: शहर
1: हाँ जी
2: लगते कने उइया भी।
1: जी तुहां दस्सिया कि तुहां स्वयं सहायता समूह जेड़े से बनाए हुए कहने मिली के जी काम कर तरह दे आसे कोई उत्पाद और भी कुछ जी तुहां बनांदे हैं ना?
2: सेवियां वाली मशीन ली थी दे विच यहां फिर इसे दाली पीने वाली मशीन लिया मेरिया भेणा जेडिया होर हैं
1: हाँ जी
2: ते कोई सेमियां बना दियां, कोई सीरा बना दियां, कोई बड़ियां बना दियां, अपने अपने घरां च अपना अपना काम, दो तीन कणका कटने वालियां मशीनां दित्ती दे विच हां से अपना चार्जिंग वाले पंप मिले न,
1: हाँ जी
2: फिर घा कट्टन वाले ट्रैक्टर हैं छोटे दो,
1: हाँ
2: फिर
1: जी
2: ही मतलब इस तरह का सा कि काफी ज्यादा समान जेड़ा है फ्री उन्होंने दिता है साकी भी तुहाई कोई मतलब महिलाओं किसी तरह की कोई तंगी ना होवे, मैं तो
1: अच्छा
2: धन्यवाद करती हूँ सरकार का, धन्यवाद करती हूँ अपने ब्लॉक का
1: हाँ जी
2: और धन्यवाद करती हूँ सारियां दा ही जिन्होंने साका सहयोग दिता कने बड़ा ही अच्छा काम है साड़े पिंड लई ते एक बहुत ही बड़ी खुशी की गल है।
1: सुनीता जी अहां दी जिहड़ी नौजवान युवा पीढ़ी है उन्हां जो तुहां क्या संदेश देना चाहंगे कि सह भी जिहड़ा सह कुछ तरीके कन्नै खेतीबाड़ी जो अपनाई के अपना व्यवसाय चलाई सकन?
2: बिल्कुल जी, मैं तो यही गलानी हाँ भी खेती अज कल दे समय दे बीच मैं कहनी हूँ सब तो बेस्ट अगर कोई अच्छा रास्ता है तो वो ये एग्रीकल्चर है और इस दे बीच जेडी युवा पीढ़ी है मैं तो बोलनी है थे ये बीच पाई की ता दिखा गवर्नमेंट साड़ा इतना साथ दिया दी है, इतना तो पग पग ते तो सहायता करने लिए तैयार बैठी।
1: सुनीता जी बड़ी खुशी हुई तुहां कन्नै गलबात करी के कन्नै बड़ा अच्छा जड़ा संदेश तुहां अहां दी नौजवान युवा पीढ़ी जो जड़ा दिता है खेतीबाड़ी दे अनुभव तुहां अहां कन्नै साझा कीते तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: किसान साथियों आशा करने कि इस जानकारी दे तुसां जरूर लाभ लेना है और दिखा पंच जी कि असा दा जड़ा किसान साथी के भी तरह तरह दी खेतीबाड़ी के भी करदे न
1: जी
0: है ना। दिखा कि अगर हाँ एक ही फसल दे या एक ही कोई भी जी एक व्यवसाय करते ना
1: जी
0: उस व्यवसाय जो करने दे बाद फिर ही अपने आप मन च ख्याल आता कि हाँ ये वाला काम भी करना है,
3: हाँ
0: ताकि
3: बिल्कुल
0: इस दे होर सानू एक अतिरिक्त जी आमदनी के भी मिल सके।
3: बिल्कुल। और ये जितने भी अहाँ के उत्पाद होंगे ने, चाहे फसलों से संबंधित होनी या सब्जियों से संबंधित या फल फ्रूट है ना,
0: जी जी जी,
3: इन्हों बारे च भी सानू जी जानकारी पूरी होना चाहिए कि इन्हों का भाव जो बाजार में क्या चले है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: इस हिसाब ने अहाँ खेतीबाड़ी करने का बड़ा अच्छा जो फायदा रहा सानू। और बाजार के भाव की गल करिए तो अज अहाँ कांगड़ा सब्जी मंडी के जो थोक भाव ने, सब तो पहले गल करिए आलू 8-12 रुपये प्रति किलो, प्याज 24-25, टमाटर 22-36, लहसुन 120-130, अदरक 130-140, शिमला मिर्च 35-40, अरबी 32-35, खीरा 18-22, मटर 50-60, फुल गोभी 50-60 रुपये प्रति किलो रही है
0: जी जी,
3: बंद गोभी 12-14 रुपये प्रति किलो, बैंगन 20-30 रुपये, कद्दू 12-14, मूली 15-20, टिंडा 20-25, पालक 25-30, हरी मिर्च 35-40, धनिया 70-80, तोरी 25-26 रुपये, भिंडी 35-40, घीया 20-25 रुपये प्रति किलो, कटहल 50-55 रुपये, करेला 20-30, फ्रास बीन 100-110 रुपये, गाजर 25-30, मशरूम 130-140 रुपये अज कांगड़ा सब्जी मंडी च रहे न। कने गल करिए फलों की, तो फलों च सेब 120-140 रुपये, केला 40-50 रुपये प्रति दर्जन, अनार 50-170, अनानास 40-50, अमरूद 90-100, मौसमी 90-100, पपीता 40-45, खरबूजा 20-30। और गल करिए तरबूज की, तो 10-15 रुपये प्रति किलो, आड़ू 30-50, पलम 80-130, चेरी 200-250 रुपये, लीची 140-150, अंब जड़ा सै 70-80, अंब तोता किस्म का 50-55, दशहरी 50-60, नींबू 75-80, कने कीवी पर पीस जड़ा सै 60-62, लुंगड़ू 30-32, कने माल्टा 110-120 रुपये प्रति किलो दे हिसाब ने जड़े से अज कांगड़ा सब्जी मंडी च रहे न।
0: जी तो किसान साथियों फिर यहाँ सुनना सारे रली मिली एक प्यारा दे लोकगीत, तो सुनते ने लोकगीत।

0: किसान साथियों इसी लोकगीत कन्ने खेती बाड़ी कार्यक्रम इतु संपन्न होकर दा कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रिया विपिन कुमार प्रस्तुत करता जितेंद्र पाल सिंह हूँ अपने ट्रायल दस्त से बड़का जाती
1: पंच जो दिया अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:35 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मोजा ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राएं दी सुनने वाले सारे ही स्रोतियां जो बागवान भाई जो किसान भाई जो जेड़ा सा एक बारी फिर ते टियाले पर सारे दा ही स्वागत है। और मेरे कन्ने टियाले पर मेरा साथ दिया करदे ने बड़का चाचू जी, तुहाड़ा भी टियाले पर एक बारी फिर ते स्वागत है।
1: राम राम पंच जी, राम राम। और जितने भी किसान बागवान भाई बहन कार्यक्रम मौजा ग्राएं दियां सुना करदे ने, उन्हां सारे जो बड़का चाचू तरफा दे राम राम।
0: जी तो राम राम होई। और दिखा तो हाँ पिछले दिन जड़ी से बारिश भी अच्छी होई गई साढ़े किसान भाई जिन्हें कि हूँ खेती जड़ी अगली लगानी है जी कि मक्की दी है जिथू की सिंचाई का प्रबंध नहीं है था बारिश का उन्हें जो न्याल थी। और बारिश भी जड़ी इसे हुई और साड़ी मिट्टी च अच्छी जड़ी इसे नमी भी मौजूद है। तो अहाँ जड़े सुनो आने वाले एक दो दिन च भी जड़े से बोला दे मौसम विभाग की बारिश भी होने वाली है
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और जड़ी इसे नमी अच्छी बनी आनी कने इस दे कने ही अहाँ दे किसान भाई जिन्हें मक्की की बिजाई करनी या फिर और खरीफ दसलों अलग अलग तरह दा तिना की बिजाई जी इसे हूँ करी सकते हैं आरामे कने, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। कने दिखा कि भई जियां कि यहाँ कोई बीज लेना
0: हाँ
1: है
0: जी
1: ना, तो बीज जी यहाँ अपने जेडे कृषि विभाग के ने उन्हें सोगी भी सलाह मशवरा कर सकते हैं
0: जी
1: कि भई यहाँ कौन जहा जेड़ा बीज के भी इस विशेष इलाके ताई भी यहाँ ले सकते हैं।
0: हाँ
1: तो अहाँ अगर अपनी खेती जो जियाँ कि एक वैज्ञानिक विधि कने करेंगे ना, तो इससे भी एक जड़ा अलग फायदा के भी समझो मिलना है। और आजकल तो दिखा पान साहब की भी ऐसा जड़ी खेती बाड़ी के भी बदलवा कर दी है, मतलब ना
0: बिल्कुल
1: आधुनिक जड़ी तकनीक का भी उसका जड़ा प्रयोग के भी खेती बाड़ी से खूब दिखने मिला करता है
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: और दिखा तो हूँ साढ़े किसानों वास्ते तो अलग अलग चुनौतियां जड़ी इसे हूँ समय च इस समय वो कर दी जी कि कई जगह जंगली जानवरों का प्रकोप है, कई जगह कोई बीमारी लगी आ दी है। तो इन सारी चीज़ों से जड़े से पार पाने वास्ते साढ़े किसान भाई जड़े से अलग अलग तरह के तरीके जड़े से अपना करते हैं, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: इन तरीकें जो अपनाते हुए साढ़े किसान भाई जड़े से हूँ नई नई तकनीक इस बिच लिया करते हैं। और जी कि जिन्ह जगह च जड़े से सिंचाई का ज़्यादा प्रबंध नहीं है उत्थ जड़े से साढ़े किसान भाई अजकल ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई के माध्यम कने जड़े से अपने खेतर की सिंचाई जी इसे करा करते हैं। ये कुछ एक तकनीक ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई तकनीक ऐसा जिसते जड़े से पानी जड़ा से बिल्कुल ही घट लगता है, यानी कि पानी दी जड़ी से 70 से 80% जड़ी से बचत होंगी है।
1: जी जी
0: और इस दे कन्ने फसलों जो जड़े से आवश्यकता अनुसार जड़े से पानी आसानी कन्ने मिलता है ना।
1: जी जी
0: और कन्ने साढ़े जड़े सब्जियां लगाते हैं किसान भाई फलां या बागवानी करते हैं उन्होंने वास्ते ये तकनीक ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई की तकनीक जड़ी से बड़ी अच्छी मनी जाती है। और साढ़े किसान भाई बागवान भाई इन तकनीक का जो जड़े से अपना भी करते हैं। और कन्ने कन्ने अहाँ गल करा करते कि हुण जंगली जानवरों का प्रकोप भी जड़ा से दिन प्रतिदिन बढ़ा करता है ना।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: उस बीच अहाँ दे किसान भाई जड़े से कई जगह मैं देखिया कि सोलर बाड़ जड़े से लगाए न तिना पिछले दिनों च भी। और इस बीच साड़ी सरकार भी जड़ी से समय समय पर सांझो अनुदान जड़ी से आर्थिक सहायता दिया करती है। तो उस दे तहत तो साढ़े किसान भाई जड़े से अपने खेतरों की जड़ी से फेंसिंग करवाई सकते हैं और अपनी फसलों जो अपनी जड़ी सब्जियां ने तिना जो जड़े से जंगली जानवर के प्रकोप से बचाई करी, यानी कि कुल मिलाई के जड़े से तकनीक का जड़ा से बड़ा प्रभाव जड़ा से आज दे समय साढ़े किसान भाइयों की जिंदगी च हो गया। और तकनीक का सहारा जड़ा से सांझो लेना ही पौना है ताई अहां जड़ा से अगे जड़ा से अज के दौर च बधी सकते हैं।
1: बिल्कुल। कहना दिखा कि भई कृषि क्षेत्र से जरा आधुनिक तकनीका का उपयोग के भी वर्तमान समय की बड़ी जरूरत
0: जी
1: है ना।
0: जी
1: जी कि उन्नत बीज हो गए, आधुनिक सिंचाई प्रणाली जी कि यहाँ गल करा करते
0: हाँ
1: है
0: जी
1: ना, कृषि मशीनरी हो गई, ड्रोन हो गया है ना,
0: हाँ बिल्कुल
1: और सूचना प्रौद्योगिकी हो गई, फिर स्टिक कृषि और जड़ी जैव प्रौद्योगिकी, जड़ी इस तरह की जड़ी तकनीका दी खेती जो कि अभी ज़्यादा उत्पादन के भी मिला करता और इससे जड़ी साड़ी खेती बाड़ी के भी टिकाऊ बना कर दी है। अगर किसाना जो इन तकनीका दी उचित जानकारी और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, तो कृषि उत्पादन च बड़ी ज्यादा जड़ी वृद्धि के भी हो सकती है।
0: बिल्कुल। तो ये तो थी जानकारी आधुनिक तरीके ने हाँ खेतीबाड़ी करनी है ना।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: उसका फायदा जड़ा से जरूर लेना और हूँ हाँ चलना प्यारे दे लोक गीत की तरफ। और उससे पहले कुछ एक संदेश जड़े से हाँ सुनने
1: जी
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa.
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।

0: Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
4: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
5: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
6: सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
7: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
8: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोजांग राइंदियां। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the US Jason Meeks and lodged a strong protest regarding continuing attacks by US naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. The US envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The ministry said such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Yatra. During the meeting, Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinated efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. The minister emphasized to further strengthen the security framework with the extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata on the occasion of 12 years of NDA government at the centre. Mr. Adhikari said, people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. He said that by giving fair price, the government of West Bengal is taking the lands from common people and handing over the lands to BSF. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit Nice in France on the 14th of June as the first stop of his two-nation European tour covering France and Slovakia. The visit carries special significance as it will be his first bilateral summit with President Emmanuel Macron since the two nations elevated their ties to a special global strategic partnership in February this year. From Nice, Mr. Modi will travel to Slovakia before returning to France for the G7 summit in Avignon, where India will participate as a leading voice of the Global South. India AI Mission today launched Varya, a distilled video model built to make frontier video AI affordable, accessible and relevant. Addressing the launch event in New Delhi, Secretary in the Ministry of Electronics and Information Technology, S. Krishnan said, the launch of one of the foundational models supported under the India AI Mission marks a significant milestone in India's AI journey. He said that Varya represents the kind of research-led capability building that reflects the government's commitment to developing indigenous AI capabilities and fostering a vibrant deep tech ecosystem. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei Shen Su Yu 21-6, 21-9 in a one-sided quarter-final clash today. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston, Birmingham. The match is scheduled to begin at 11 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup 2026, co-host Canada will be up against Bosnia and Herzegovina in a Group B clash at Toronto Stadium tonight. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The encounter marks the first ever World Cup meeting between the two nations. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विशेष कार्यक्रम।
1: साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
2: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि ये 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
2: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
3: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती हैं तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज़्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
2: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
3: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज़ को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में GST का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति पड़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसके और प्ले करके रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर के कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
2: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पांस आप देख रहे हैं?
3: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
2: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
3: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए, और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क का स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सब के प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने, और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से जैसा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी, और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, उसूली पर लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है, और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है, 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्यशास्त्र लिख रहे थे। और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी, और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा, और न केवल भारत के प्रति अपितु तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
2: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
3: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर की श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सकें, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाएं। इसके लिए कंपटीशन आयोजित किए जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आज़ादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
2: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
3: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
2: जी,
3: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहाँ तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है, और भारत जिस दिशा जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है, और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
2: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
3: देखिए, आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहाँ जा कर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव
2: जी,
3: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
2: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
3: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा क्या भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़ें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
2: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का, और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
3: धन्यवाद।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
2: आप सुन रहे
0: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन विश्वास जो आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोर्ट

0: दारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदली देश की राजनीतिक संस्कृति, जन विश्वास को किया मजबूत। पशुपालकों की आजीविका में सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने चराई नीति 2026 को दी मंजूरी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, मेले, उत्सव और त्यौहार हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से धर्मशाला में, दोनों टीमें तैयार। और प्रदेश में वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से तापमान में गिरावट, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। नड्डा आज शिमला में भाजपा द्वारा 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत शिमला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये 12 साल केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं, बल्कि विकसित भारत की मजबूत आधारशिला रखने वाले परिवर्तनकारी वर्ष हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिन तक प्रदेश के प्रधान सेवक के रूप में काम करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये उपलब्धि केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश की 140 करोड़ जनता के विश्वास, समर्थन और आशाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरा किए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल का आह्वान करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा था और पिछले 12 सालों में इस संकल्प की मजबूत नींव रखी जा चुकी है।
3: और ये 12 वर्ष मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि ये विकसित भारत की आधार रखने वाले 12 साल, जिस विकसित भारत को 2047 में देखने के लिए आतुर है, उस विकसित भारत का आधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 12 सालों में रखा है। कोरोना के दौरान जब भारत अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि अब अगले 25 साल वह अमृत काल होगा और उस अमृत काल के लिए हम विकसित भारत की कल्पना को पूरा करें। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये 12 वर्ष जहां हमारे को आधार बन के रूप में मिले हैं, वहीं हम पूरी संकल्प के साथ आगे की लंबी छलांग लगाते हुए देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए हम आतुर हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
2: नड्डा ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को विकास की नई रफ्तार दी है और स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत ढांचे में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेजों और राष्ट्रीय राजमार्गों से हिमाचल की तस्वीर बदली है। नड्डा ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास योजना से हिमाचल के लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदलकर जन विश्वास को मजबूत किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में संपन्न पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव नतीजे प्रदेश की जनता के भाजपा के प्रति बढ़ते विश्वास और कांग्रेस सरकार के प्रति असंतोष का स्पष्ट सबूत है। बिंदल ने आज शिमला में पार्टी के बुद्धिजीवी सम्मेलन और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में भाजपा की बढ़ती स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि जनता विश्वास, सुशासन और राष्ट्रहित की राजनीति के साथ खड़ी है। बिंदल ने यह भी कहा कि नड्डा के प्रदेश दौरे से भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह अतुलनीय और भारत के पुनरुत्थान का स्वर्ण काल रहा है। जयराम।

0: ठाकुर ने आज शिमला में नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री 12 साल की अवधि पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के रूप में सशक्त नेतृत्व मिलने से वर्षों से रुके हुए काम संभव हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाने और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। ये नीति चराई प्रबंधन व्यवस्था में सुधार कर उसे पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक सशक्तिकरण के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि चराई नीति हरियाली भी खुशहाली भी की सोच को साकार करती है। ये नीति हमारे चरागाहों की रक्षा करती है, पशुपालक परंपराओं का सम्मान करती है और पशुधन पर निर्भर परिवारों के भविष्य को सुरक्षित बनाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नीति पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करते हुए राज्य में एक समावेशी टिकाऊ और सशक्त पशुपालन अर्थव्यवस्था की नींव रखेगी। बेंगलुरु स्थित भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास विषय में पीएचडी के लिए आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में शिमला की छात्रा विपाशा श्रीवास्तव ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। पीएचडी करने के लिए उन्हें संस्थान की ओर से फेलोशिप भी दी जाएगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि मेले, उत्सव और त्यौहार हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग है। ऐसे आयोजन न केवल लोगों को मनोरंजन का अवसर प्रदान करते हैं बल्कि समाज में आपसी भाईचारे, सद्भाव, सहयोग और सांस्कृतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुलदीप सिंह आज भटियात विधानसभा क्षेत्र की सिहुंता पंचायत में छिंज मेले के अवसर पर बोल रहे थे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम व हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकास खंड बसंतपुर में आयोजित 3 दिवसीय आपदा रक्षक कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम अधिकारी अमित टुटेजा ने की। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और सामुदायिक आपदा प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदेश में स्थानीय शहरी निकायों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आए, लगभग आधा महीना बीत चुका है लेकिन इन निकायों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चयन नहीं हो पाया है। ऐसे में नव निर्वाचित पार्षद अब जल्द से जल्द ये चुनाव संपन्न करवाने की मांग कर रहे हैं। नाहन नगर परिषद के लिए नव निर्वाचित पार्षद संजय चौहान का कहना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अभी तक चुनाव नहीं होने के कारण नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने उपायुक्त नाहन को ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद नाहन के लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव तुरंत करवाने की मांग की है।
1: की डेट मांग रहे हैं, जो चुनाव होना है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तो उसके लिए हमें समय दिया जाए और तारीख दी जाए, यही हमारी जो है मांग है।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच कल से धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉर्कल ने कहा है कि विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी की अनुपस्थिति टीम को खलेगी। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा अवसर भी है। उन्होंने कहा कि आगामी विश्व कप और दक्षिण अफ्रीका दौरे को ध्यान में रखते हुए टीम प्रबंधन तेज गेंदबाजी में अधिक से अधिक विकल्प तैयार करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज कांग्रेस के 5वें स्तंभ कार्यक्रम की राष्ट्रीय प्रवक्ता शुभ्रा जंटा ने शुरुआत की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए शुभ्रा जंटा ने कहा कि डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया में सक्रिय युवाओं को इस कार्यक्रम के तहत युवा कांग्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है।
2: ऐसे युवाओं को जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पर आम जन की आवाज और आम जन के मुद्दों को रखा है, उन लोगों को अपने साथ या फिर मैं ये कहूं कि उनके साथ हम जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ नाहन में, तो ये संविधान लीडरशिप प्रोग्राम जो है भारत युवा कांग्रेस ऐसे युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए लॉन्च कर रहा है, जो निडरता के साथ निर्भयता के साथ असली मुद्दों को जो है ग्रास रूट लेवल पर उठाती आई है।
0: प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हुई हल्की से मध्यम वर्षा से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से हल्की राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान सोलन जिला के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने अगले दो दिन तक प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा और आंधी तूफान का सिलसिला जारी रखने की संभावना जताई है।
3: हिमाचल प्रदेश में WD कल 11 जून से हुआ है और ये जो है रुक रुक के इसका असर हमें 13 जून तक पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिड हिल्स लोअर निचले मैदानी इलाकों में दो दिनों तक हमें देखने को मिलता रहेगा। हवाओं की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज के टाइम पे 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है इन सभी जिलों में। सिरमौर जिला, शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जैसे जिलों में ओलावृष्टि के साथ साथ तेज हवाएं आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है 12 जून को, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिले में ऑरेंज जारी किया हुआ है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदली देश की राजनीतिक संस्कृति, जन विश्वास को किया मजबूत। पशुपालकों की आजीविका में सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने चराई नीति 2026 को दी मंजूरी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, मेले, उत्सव और त्योहार हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से धर्मशाला में, दोनों टीमें तैयार। और प्रदेश में वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से तापमान में गिरावट, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रही थी प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। वन ही धरती मां के रक्षक, करो ना इनका नाश निरर्थक।

0: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत हैं केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष परिचर्चा। विषय है केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा 12 वर्षों में आम आदमी का सुरक्षा कवच बनाती।
1: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के गाई इस गजल के साथ।
2: आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अर्चना फुल। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बहुत से क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत सरकार ने पिछले 12 वर्षों में अतुलनीय कार्य किया है और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसे ही पूरे विश्व में एकमात्र सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत है, जिसका मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गुणवत्तापूर्ण एवं कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या पीएमजे भी कहा जाता है। श्रोताओं, आज की हमारी चर्चा का विषय है आम आदमी का सुरक्षा कवच बनती केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं। चर्चा के लिए आकाशवाणी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्री देवेंद्र कुमार, जो हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा सोसाइटी में डिप्टी डायरेक्टर कम नोडल अफसर हैं, और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर उमेश भारती जी, जो नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश में डिप्टी डायरेक्टर हैं। डॉक्टर भारती रेबीज, स्नेक बाइट वो उपेक्षित ट्रॉपिकल डिजीज के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी हैं। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद जी।
2: सबसे पहले देवेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत योजना है क्या, ये कब शुरू हुई और इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
3: देखिए अर्चना जी, इस योजना के बारे में बताने से पहले मैं वर्ष 2008-09 में जाना चाहूंगा। जो योजना है हमारी 2008-09 में केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, क्योंकि सरकार को ये लगा हमारे पास जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, इतनी हमारी 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, लेकिन कोई ऐसी योजना नहीं थी जो कि जो गरीब लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुरक्षा कवच उपलब्ध करवा सके। वैसे जो हमारी प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनीज वाली है, प्राइवेट मेडिक्लेम पॉलिसीज है, वो बहुत सी योजनाएं चल रही है, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं होता है गरीब आदमियों के पास कि वो जाके प्राइवेट मेडिक्लेम पॉलिसी को वो ले पाए या 10,000-20,000 का वो प्रीमियम दे पाए। तो भारत सरकार ने 2008-09 में एक योजना शुरू की, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। उस योजना में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष एक परिवार को दाखिल होने पर 30,000 रुपए तक का सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाया, और उसमें सबसे पहले वो बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है हमारे उनको लेके आए, उसके बाद मनरेगा वर्कर जिन्होंने कम से कम 15 दिन काम किया हो मनरेगा के अंदर में उनको लेके आए, फिर इसमें रेड़ी फड़ी वाले को इसमें शामिल किया उन्होंने, रैग पिकर, रिक्शा पुलर जो हमारे हैं उनको शामिल किया, इस तरह कुछ कैटेगरीज उन्होंने टैक्सी ड्राइवर वगैरह को इसमें शामिल किया। तो आते आते वर्ष 2014 के बाद 18-19 आ गया, और हुआ ये कि क्योंकि 30,000 रुपया जो था एक परिवार को एक साल में 2008-09 में शुरू भारत सरकार ने किया था, तो 30,000 रुपया एक परिवार के लिए कम लगने लगा। भारत सरकार ने फिर ये निर्णय लिया 2018 में आके कि क्यों ना इस जो बीमा कवर है, जो सुरक्षा कवर है, उसको बढ़ा के हम कुछ और ज्यादा करें। तो इस संदर्भ में जो है भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू करने का निर्णय लिया, और एक परिवार को प्रति वर्ष 5,00,000 रुपए तक का सुरक्षा कवरेज में उपलब्ध करवाया अस्पताल में दाखिल होने पर। और 23 सितंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को पूरे भारत में शुरू किया, और हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना को 23 सितंबर 2018 को आरंभ किया गया। वैसे ये देखा गया है जो भारत सरकार का जो मानना है इस योजना को शुरू करने के पीछे, कि एक गरीब इंसान अपने परिवार के सदस्यों को अस्पताल में दिखाने के लिए नहीं ले जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दिहाड़ीदार है जो कि दोपहर को कमाता है और शाम को जाके अपने परिवार का पेट पालता है, उसको खिलाता है, अगर उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल में लेके नहीं जाता है। कारण क्या है? डर। उसको सबसे पहला कारण ये होता है कि उसको ये डर रहेगा कि पता नहीं कौन सी बीमारी निकलेगी या डॉक्टर कौन सा, मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा, और उस दिन वो अपने परिवार को कुछ खिला भी पाएगा कि नहीं जब वो दिहाड़ी नहीं लगा पाएगा वो गरीब आदमी। और भारत सरकार और प्रदेश सरकारों ने इस दर्द को समझा तब वो इस योजना को लेकर क्या है कि कम से कम उसके पास ये अगर आयुष्मान भारत का कार्ड है उस परिवार के पास, तो उसको अस्पताल में जाने का डर नहीं है कि कितना खर्चा आएगा, और इसका इलाज जो है निःशुल्क जो है चयनित अस्पतालों में किया जाता है। तो ये कारण था इस योजना को लागू करने का, जो भारत के गरीब परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाए।
2: तो इसमें जो एक आयुष्मान भारत का कार्ड बनता है, क्या जो पात्र व्यक्ति है उनको उसके लिए कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, कोई फीस है इसकी?
3: जी नहीं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना का कार्ड बनाने के लिए किसी तरह की कोई फीस का भुगतान इसमें नहीं करना पड़ता है।
2: जी देवेंद्र जी, तो इस योजना के पात्र कौन लोग होते हैं और पात्रता के लिए क्या करना पड़ता है, क्या इसके लिए कोई आय की सीमा भी है?
3: इस योजना के अंतर्गत देखिए, हमारा जो सेंसस का जो सर्वे होता है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का जो सर्वे हुआ था, उसमें कुछ डेप्रिवेशन क्राइटेरिया था। जो भी अभी सेंसस का सर्वे चला हुआ है, तो उस डेप्रिवेशन क्राइटेरिया के आधार पर D1 से लेकर D7 तक जो डेप्रिवेशन क्राइटेरिया है, उसमें D6 को भारत सरकार ने नहीं लिया है। जैसे किसी का कच्चा घर है, किसी के पास घर नहीं है, ये D1 क्राइटेरिया में आते हैं। डी डेप्रिवेशन का जो 2 क्राइटेरिया होता है, जिसमें अगर परिवार में 18 से 59 साल का कोई एडल्ट मेंबर नहीं है, मान लीजिए 18 से कम साल के बच्चे हैं। डेप्रिवेशन 3 क्राइटेरिया जो है, उसमें फीमेल हेडेड जो हाउस होल्ड है, मतलब परिवार का मुखिया जो एक महिला है, और 16 से 59 साल का उसमें कोई भी मेल परिवार का सदस्य नहीं है। D4 का जो हमारा क्राइटेरिया है, अगर हम कहें विशेष पर्सन या स्पेशली एबल्ड अगर हम बात करते हैं, अगर परिवार का मुखिया स्पेशली एबल्ड है उसमें और वो कमाने के लायक नहीं है। D5 जो क्राइटेरिया है हमारा, वो SC ST हाउस होल्ड से रिलेटेड है। D6 क्राइटेरिया वैसे लिटरेसी रेट से रिलेटेड है, तो इसको एक्सक्लूड किया गया है। और D7 का जो क्राइटेरिया, जो हमारा मेजर जो लेबर क्लास जो लोग होते हैं, जैसे दिहाड़ीदार की हम बात करते हैं, तो डेप्रिवेशन का 7 क्राइटेरिया इसमें ये रखा गया है। और इस योजना की जब दिशा निर्देश बनाए जा रहे थे, गाइडलाइन बनाए जा रहे थे, तो SECC 11 को भारत सरकार ने लिया, लेकिन कुछ राज्यों में उस दौरान की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही थी। तो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया इसमें कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत लाभार्थी हैं, चयनित लोग हैं, उनको भी इसमें डेप्रिवेशन SECC 11 के साथ साथ उनको भी इसमें डाला जाए। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, तो SECC 11 का जो डेप्रिवेशन क्राइटेरिया है, प्लस जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के 2014-15 के जो लाभार्थी थे, उनको भी इस योजना में डाला गया।
2: तो इसकी पात्रता के लिए क्या करना पड़ता है?
3: इसमें पात्रता के लिए अगर किसी व्यक्ति के पास माननीय प्रधानमंत्री जी से आया हुआ पत्र है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेप्रिवेशन क्राइटेरिया के बेस पे है, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का 2014-15 का जो कार्ड है, अगर किसी परिवार में वो है, तो वो इस योजना के लिए पात्र है। इसमें मैं एक और बात बनाना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत जैसे पात्रता की आपने बात की, तो कार्ड कैसे बनाया जाता है? जब योजना को शुरू किया गया था, तो इसमें बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भारत सरकार ने बनाया था, BIS जिसको हम कहते हैं, 1.0 था वो। उसके अंतर्गत किसी भी लोकमित्र केंद्र में जाके या पंजीकृत अस्पताल में जाके व्यक्ति अपनी पहचान बता के कार्ड बनवा सकता था, और उसमें व्यक्ति के नाम के आधार पे, उनके डेमोग्राफिक डिटेल हम कहते हैं जिला गांव का नाम, उसके आधार पे, राशन कार्ड के आधार पे और मोबाइल नंबर के आधार पे अपने वो आंकड़े डिटेल सर्च करवा सकता था, वहां पे कार्ड बनवा सकता था। लेकिन भारत सरकार ने 2 वर्ष पहले बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम 2.0 लागू कर दिया है। अब उसके आधार पे आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना आधार नंबर डाल के भी कार्ड बनवाया जा सकता है, वो व्यक्ति खुद भी बनवा सकता है। अगर उसके परिवार के सदस्यों का किसी का कार्ड और पहले से ही बना है, तो व्यक्ति उस ऐप को डाउनलोड करके आइडेंटिफिकेशन डाल के EKYC करवा के अपना कार्ड बनवा सकता है। और अगर उसमें कार्ड नहीं बना है, जो भी नजदीकी लोकमित्र केंद्र है या आशा के थ्रू या नजदीकी अस्पताल में जाके वो कार्ड बनवा सकता है।
2: तो उसका सरलीकरण जो है भारत सरकार ने किया है, जो कार्ड बनवाना होता है। तो आयुष्मान भारत के लाभार्थी जो है वो कहाँ कहाँ अपना इलाज करा सकते हैं, और इसमें कौन कौन सी बीमारियां कवर होती हैं, और क्या अगर कोई अस्पताल में एडमिट होता है तभी इसका बेनिफिट मिलता है?
3: इस योजना के अंतर्गत 1949 तरह की स्पेशलिटीज के अंदर बीमारियां कवर है, जिसमें की 3227 तरह की अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं कवर है, और इसमें हमारा मेडिकल मैनेजमेंट से लेके सर्जरी तक सारी बीमारियां इसमें कवर की गई है। फिर भी अगर कोई सर्जरी इसमें कवर नहीं होती है इस योजना के अंतर्गत, तो भारत सरकार ने अनस्पेसिफाइड करके एक बीमारी का नाम दिया है, उसमें वो अस्पताल अपनी डिटेल डाल सकता है पेशेंट का इलाज करने के लिए, उसमें वो कवर किया जा सकता है। तो जिस भी राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने योजना के अंतर्गत किसी अस्पताल को पंजीकृत किया है, वहां पर जाके पूरे भारत का लाभार्थी, पूरे भारत से कहीं से भी, जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, तो हिमाचल प्रदेश का लाभार्थी कहीं पे भी जाके पंजीकृत अस्पताल में, चाहे वो निजी अस्पताल है या सरकारी अस्पताल है या भारत सरकार का अस्पताल है, वहां पे जाके वो इलाज करवा सकता है। और अगर मैं बात करूं कि कितने अस्पताल इस योजना के अंतर्गत भारत में पंजीकृत है, तो लगभग 29,000 अस्पताल इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में पंजीकृत है, जिसमें से कि लगभग 12,500 अस्पताल निजी क्षेत्र के हैं और लगभग 16,000 के करीब जो अस्पताल है वो सरकारी क्षेत्र के हैं। इसके अलावा हमारे लगभग लगभग 250 के करीब जो अस्पताल है वो एम्स जैसे हम मिलाते हैं या भारत सरकार के जो अस्पताल है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो अस्पताल है वो इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत है।
2: तो अगर कोई व्यक्ति पहले सरकारी अस्पताल में जाता है और फिर जैसे रेफर करने का एक प्रोसीजर रहता है तो उसके बाद वो प्राइवेट में जा सकता है उसी कार्ड।
3: और दूसरा, आपने जो अभी रेफरल की मुझसे बात कही, तो इस योजना के अंतर्गत क्योंकि भारत सरकार का ये मानना है कि जो लाभार्थी है वो किसी भी अस्पताल में जाने के लिए स्वतंत्र है, तो इसमें किसी तरह का रेफरल की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर व्यक्ति चाहे तो किसी भी पंजीकृत निजी या सरकारी अस्पताल में जहाँ पे वो अपने आप को कंफर्टेबल समझता है कि मुझे यहाँ पे अच्छा इलाज मिलेगा, वहाँ पे जाके वो इलाज करवा सकता
2: है। लेकिन अगर एक व्यक्ति एक अस्पताल में जाता है ये सोच के कि मेरा पूरा इलाज वहाँ हो जाएगा, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स को लगता है कि यहाँ नहीं हो पाएगा तो इन्हें किसी बड़े अस्पताल में जाना चाहिए, निजी या सरकारी, तो ऐसी स्थिति में उसको वो सुविधा मिलेगी?
3: बिल्कुल मिलेगी जी, किसी भी अस्पताल में जा सकता है। अगर उसको रेफर भी करते हैं तो वहाँ पे जाके वो पंजीकृत अस्पताल होना चाहिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वो अस्पताल पंजीकृत होना चाहिए, तो वहाँ पे जाके उसको वो सुविधा मिलेगी।
2: तो ये आपकी वेबसाइट जो आयुष्मान भारत की है उस पे पंजीकृत अस्पतालों का ब्यौरा रहता होगा?
3: जी, उसमें पंजीकृत अस्पतालों का पूरा ब्यौरा रहता है और किस स्पेशलिटी के लिए वो अस्पताल पंजीकृत है उसके साथ उसका ब्यौरा रहता है। कि अगर कोई व्यक्ति उस वेबसाइट पे जाके या आयुष्मान ऐप पे भी जाके भी अगर वो अस्पतालों की सूची देखना चाहता है तो वहाँ से भी वो सूची देख सकता है।
2: जी देवेंद्र जी, एक विषय जो हिमाचल जैसे ग्रामीण राज्य में बहुत महत्व रखता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो है एनिमल बाइट्स व सर्पदंश। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित भी रहते हैं, तो क्या इस तरह की इमरजेंसीज भी आयुष्मान भारत में इंक्लूडेड है?
3: इस योजना के अंतर्गत लगभग 3227 प्रक्रियाएं शामिल की गई है, तो उसमें सभी कुछ शामिल किया गया है, एनिमल बाइट्स, डॉग बाइट्स भी और सर्पदंश की जो आप बात कर रहे हैं ये भी इस योजना में शामिल किया गया। अगर किसी को ये समस्या आ जाती है कोई दुर्घटनावश, अगर तो हम दुर्घटना ही कहेंगे ना, अगर किसी को डॉग काट दे या सांप किसी को काट दे, अगर वो अस्पताल में जाते हैं तो उनका इलाज जो है योजना के अंतर्गत निःशुल्क करने का इसमें प्रावधान।
2: डॉक्टर भारती, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में एनिमल बाइट्स, खासकर डॉग बाइट्स और स्नेक बाइट की समस्या कितनी गहन है?
4: देखिए, हमारा जैसे कहा कि 80% जो भाग है वो रूरल एरिया में है, ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं और गांव में हमारे एनिमल बाइट की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि डॉग बाइट के अलावा हमारे पास लंगूर बाइट या दूसरे जो जंगली एनिमल है, चीता का अटैक जो है या भालू का अटैक जो है वो हमारे गाँव में होता है, तो ये एक बहुत ही भयावह समस्या है एनिमल बाइट। और सिमिलरली स्नेक बाइट भी एक बहुत बड़ी आबादी जो है, गांव में रहने की वजह से, जंगली एरिया होने की वजह से स्नेक बाइट भी बहुत ज्यादा हिमाचल में प्रेवलेंट है। तो मैं ये कहूंगा कि कुछ समय पहले तक, मान लो कुछ साल पहले तक, ये दो समस्याएं जो थी वो किसी के, कोई ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट का इसमें कोई प्लान नहीं था, तो लोग अपने भरोसे पे थे और ज्यादातर लोग जो है खुद इलाज कराते थे। लेकिन अभी कुछ समय से, पिछले 4-5 सालों से भारत सरकार ने इन दोनों समस्याओं के लिए नेशनल प्रोग्राम बनाए। नेशनल प्रोग्राम बनाने से इसमें कई चीजें जुड़ गई, इसकी मॉनिटरिंग शुरू होगी, इसमें ट्रेनिंग शुरू होगी, इसमें दवाइयां आनी शुरू होगी, इसमें मुफ्त इलाज शुरू हो गया। तो ये जो दो समस्याओं के लिए भारत सरकार ने जो दो नेशनल प्रोग्राम बना दिए, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट, तो ये दो बड़े प्रोग्राम जो हैं अभी पिछले 5 सालों में जो हैं रिलीज हुए हैं, लॉन्च हुए हैं, और उससे जो है लाखों लोगों का जो गांव में रहते हैं खास करके उनका भला हुआ है। और मैं ये कहूंगा कि पिछले जो हम पूरे वर्ल्ड में जाने जाते थे कि हमारी एनिमल बाइट से दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, 20,000 के करीब मौतें होती हैं, और स्नेक बाइट से 50,000 से ज्यादा जो भारत में जो है मृत्यु दर है स्नेक बाइट से, तो वो जो एक टैग था कि सबसे ज्यादा मृत्यु दर जो है एनिमल बाइट और स्नेक बाइट से भारत में होती है, तो वो दर बड़ी शार्पली कम हुई है। और जब ये दो नेशनल सर्वे हुए हैं उसमें से हम देखें तो 20,000 से हम एनिमल बाइट में डेथ जो है लगभग 6,500 के करीब आई है, और इसी तरह से स्नेक बाइट की 50,000 जो डेथ होती है उनकी भी लगभग इतनी 6-7,000 के आसपास जो है इस वक्त जो सर्वे कराए हैं आईसीएमआर ने उसमें डेथ जो है 3 गुना कम हुई है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा उल्लेखनीय काम जो साइलेंटली हुआ है जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों ने नहीं दिया है, और पूरे वर्ल्ड के भी जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी इस पे अभी तक ये इसको अप्रिशिएट इतनी ज्यादा नहीं किया है। लेकिन आने वाले टाइम में जो हमारा एक टैग था कि भारत जो है वो एनिमल बाइट की डेथ में और स्नेक बाइट की डेथ में विश्व में सबसे ज्यादा यहाँ पे है, तो वो टैग शायद इन योजनाओं की वजह से कम हो जाए।
2: देवेंद्र जी, माइग्रेंट वर्कर्स और वृद्ध लोग, माइग्रेंट वर्कर्स की भी बहुत बड़ी समस्या है कि वो दूसरी स्टेट में जाके काम करते हैं, तो वो अपना कार्ड कहाँ बनवाएं, और क्या वृद्ध लोग जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं इस बेनिफिट के लिए?
3: इस योजना के अंतर्गत एक सुविधा ये दी गई है कि माइग्रेंट लेबरर हो या वर्कर हो जिसका नाम SECC-11 जो डेटाबेस है उसके हिसाब से, या RSBY राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अगर उसका नाम भारत सरकार के डेटाबेस में उपलब्ध है, वहां पे पाया जाता है, तो व्यक्ति पूरे भारत में कहीं पे भी जाके कार्ड बनवा सकता है और कहीं पे भी जाके वो इलाज ले सकता है। दूसरा, आपने वृद्ध व्यक्तियों के लिए बात कही तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 में एक निर्णय लिया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसमें कि 70 वर्ष या उससे अधिक के आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल, इसका मतलब ये है कि उनकी इनकम लेवल चाहे कुछ भी हो, वो इस योजना के अंतर्गत पात्र हो सकते हैं और कार्ड वो बनवा सकते हैं उस योजना के अंतर्गत। और अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हमारे हिमाचल में लगभग 1,05,000 ऐसे 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक है जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत कार्ड बनवाया।
2: जी, तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक कितने परिवार आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं?
3: हिमाचल प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है जिसने 100% सेचुरेशन, हम इसको वर्ड बोलते हैं, कि जो टारगेट भारत सरकार ने दिया प्रदेश को कि इतने परिवारों को आपको योजना में शामिल करना है, तो हिमाचल प्रदेश ने परिवारों और व्यक्तिगत, परिवार के अंदर व्यक्ति होते हैं, तो लगभग हमारा यहाँ टारगेट था कि 14,66,000 के करीब व्यक्ति थे जो इस योजना के अंतर्गत जिनको पंजीकृत करना था, तो उनका हिमाचल प्रदेश ने 14,66,000 से ज्यादा लोगों को इसमें EKYC कर दिया है, 100% इसमें लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया है। और मैं आपको एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा कि 2024-25 में ही भारत सरकार ने एक और निर्णय लिया था कि जो आशा है हमारी स्वास्थ्य विभाग की, आंगनवाड़ी वर्कर है और आंगनवाड़ी हेल्पर है, इन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाए। तो आशा 6,711 आशाओं ने इस योजना के अंतर्गत कार्ड बनाया है, 18,128 आंगनवाड़ी वर्कर ने बनाया है और 22,167 आंगनवाड़ी हेल्पर ने इस योजना के अंतर्गत कार्ड बनाया है। तो अलग अलग कैटेगरीज को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा मैं आपको और थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो हमारे CAPF के अंतर्गत जो आते हैं हमारे सेंट्रल आर्म जो पुलिस फोर्सेज हैं उसके अंतर्गत, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि इन्हें भी आयुष्मान भारत योजना में लाभ दिया जाए, तो भारत सरकार ने इनको भी आयुष्मान भारत योजना में चयनित कर लिया है।
2: तो हिमाचल में तो बहुत सारे लोगों को इसका लाभ हुआ है।
3: हाँ जी।
2: कितना खर्च अभी तक भारत सरकार इस योजना पे हिमाचल प्रदेश में कर चुकी है?
3: हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, इसमें जो खर्चा होता है हिमाचल सरकार का और भारत सरकार का मिला के होता है, तो अभी तक जो इलाज जो लोगों ने लिया है, लगभग 600 करोड़ का इलाज हिमाचल प्रदेश के लोगों ने प्रदेश में और प्रदेश के बाहर जो पंजीकृत अस्पतालों में वो ले लिया है इस योजना के अंदर
2: अभी तक 2018 के बाद।
3: हाँ जी।
2: तो हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में आयुष्मान भारत लागू करने में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि पहाड़ी राज्य है, यहाँ पे रास्तों की दिक्कत है, यहाँ पे इंटरनेट की दिक्कत है, तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी।
3: चुनौतियों की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए जो आती थी वो थी EKYC करवाना। कि कोई भी लाभार्थी है जिस व्यक्ति का डेटाबेस में नाम है, अगर हम बात करते 2022 तक की जो कोविड का भी टाइम था, कोविड के बाद 22-23 की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी जो मैंने सेचुरेशन की बात करी, हम 68% सेचुरेशन पे थे, जो हमारा टारगेट था उससे लगभग 68% लोगों को हमने इस योजना में कवर किया था। 22 के बाद थोड़ा अभियान स्तर पे ये प्रदेश में किया गया, जब प्रदेश में सरकार बदली यहाँ पे, तो उसके बाद अभियान स्तर पर यहाँ पे काम किया गया कि सभी लोगों को यहाँ पे कवर करना है। तो 23-24 में जो है घर घर जाके लोगों को आइडेंटिफाई करके लोगों को हमने भेजा और वहाँ पे उनका EKYC करवाया। तो थोड़ी इंटरनेट की भी समस्या आती है, जैसे अगर हम बात करते हैं लाहौल स्पीति किन्नौर, हमारे ट्राइबल एरिया है, चंबा के कुछ क्षेत्र है जहाँ पे पहुंचना मुश्किल था, लेकिन वो टीमें घर घर गई, उन्होंने लोगों के कार्ड बनवाए और 2025 में हम ये सेचुरेशन, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हम ये सेचुरेशन अचीव कर पाए कि हमने 100% लोगों को इसमें आयुष्मान भारत में कार्ड दिया। दूसरी जो प्रदेश को जो समस्या आ रही है, जो हम बात करते हैं फंडिंग पैटर्न की बात करते हैं, इस योजना के अंतर्गत आपने अभी पूछा था कि कितना खर्चा भारत सरकार ने इस योजना में किया है, 90-10 भारत सरकार 90% वहन करती है, प्रदेश सरकार 10% वहन करती है। लेकिन उसके लिए अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार ने प्रति परिवार एक सीलिंग लगाई है इस योजना में, कि भारत सरकार प्रदेश को प्रति परिवार 1,052 रुपए एक सीलिंग है जिसका 90% भारत सरकार देती है। योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यह है कि प्रदेश को भारत सरकार से लगभग 50 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आ रहा है, लेकिन हमारा जो प्रदेश सरकार का जो खर्च इस योजना पे हो रहा है वो लगभग 120 करोड़ रुपया, 1,20 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रतिवर्ष होता जा रहा है। तो भारत सरकार से केवल 50 करोड़ आ रहा है और प्रदेश सरकार से लगभग 80 से 90 करोड़, अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो 154 करोड़ रुपया खर्च 2025-26 में इस योजना के अंतर्गत हुआ है और प्रदेश को 50 करोड़ प्राप्त हुआ है, तो लगभग 100 करोड़ प्रदेश ने अतिरिक्त इस योजना में वहन किया है।
2: डॉक्टर भारती, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हिमाचल की मैं बात कर रही हूँ, क्या हमारी स्वास्थ्य सेवाएं डॉग बाइट या स्नेक बाइट के मरीज, खासकर मैं कहूंगी, उनको टैकल कर पाती है?
4: देखिए, अब तो क्योंकि राष्ट्रीय योजनाओं की भी सपोर्ट है और नेशनल हेल्थ मिशन से भी फ्री ड्रग इनिशिएटिव की सपोर्ट है और हमारी लोकल परचेजेस जो हेल्थ डिपार्टमेंट करता है उसकी भी सपोर्ट है, तो कभी एक समय था जबकि ये दवाइयां उपलब्ध नहीं होती थी और लोग बाजार से भी खरीद नहीं पाते थे, महंगी भी होती थी। तो अब जो ऐसी स्थिति है कि हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ये दवाइयां उपलब्ध हैं और डिस्पाइट द फैक्ट कि जो डॉग बाइट है वो 10 गुना बढ़ गया है पिछले 5-7 सालों में, यानी कि यदि 10,000 डॉग बाइट होते तो अब लगभग 1 लाख के आसपास जो है एनिमल बाइट हो रहे हैं, और स्नेक बाइट भी बढ़ा है। लेकिन अच्छी बात यह कि क्योंकि दवाइयां उपलब्ध हैं, उनका उपचार उपलब्ध है, डॉक्टरों की और दूसरे पैरामेडिकल की ट्रेनिंग्स हुई है, आशा वर्कर की ट्रेनिंग्स हुई है, तो वो हमारे हिमाचल में भी वो डेथ रेट जो है वो काफी कम हुई है।
2: देवेंद्र जी, हिमाचल के स्वास्थ्य क्षेत्र में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इतनी सुविधाएं हैं, जो आयुष्मान भारत में आपने कहा कि हम बहुत सारी बीमारियां कवर करते हैं, कि कोई भी व्यक्ति जो है हिमाचल में आयुष्मान भारत कार्ड का पूरा लाभ उठा सके।
3: इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पहले सुविधाएं हिमाचल प्रदेश में नहीं थी
2: जी।
3: अभी अगर हम बात करते हैं वर्तमान सरकार के कार्यकाल की बात करते हैं तो हमारे पास लगभग 6 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे हैं और बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ प्रदेश में हमारे मेडिकल कॉलेजेस में दी जा रही हैं, तो यहाँ पे सुविधाएं सारी उपलब्ध हैं जो कि लोग यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो है तो लाभ उठा पा रहे हैं या उठा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जो अगर हम प्रदेश के बाहर की भी बात करते हैं तो पीजीआई चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, हमारे जो यहाँ के हिमाचल के लोग हैं उनका सबसे ज्यादा फेस भी पीजीआई चंडीगढ़ पे रहता है। हमारा वैसे सबसे ज्यादा इलाज हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है कि लोगों को इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा का लाभ प्रदान किया जा सके। और मैं आपको थोड़ा सा एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि अस्पतालों में इलाज करने के लिए लाभार्थी को क्या करना पड़ता है, कि जब भी कोई लाभार्थी अस्पताल में जाएगा तो उसको कहाँ पे जाना है, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत से लोग इस कार्यक्रम को सुनेंगे तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए लाभार्थी को कि कहाँ पे उसको जाना है। जब भी कोई लाभार्थी अस्पताल में इलाज करने के लिए जाता है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र इस योजना के अंतर्गत जो अस्पताल के प्रबंधन के द्वारा लगाया गया इस कार्य के लिए जो भी उनके चिकित्सक होंगे उनके पास दिखाएंगे, अगर उनको लिखा जाता है कि आपका सर्जरी होनी है। एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी होनी है और उसका अल्ट्रासाउंड करवा दिया उन्होंने और चेक किया कि 20 mm का एक स्टोन निकल के आ गया है उसको, तो उसकी सर्जरी होनी है, तो डॉक्टर उसको रिकमेंड कर देते हैं कि आप सर्जरी करवाइए। वो आयुष्मान भारत का कार्ड दिखाता है और डॉक्टर के पास कोड अवेलेबल है इसका कि ये कोड इस सर्जरी का है, वो कोड उसको लिख के देगा, आरोग्य मित्र के पास वो व्यक्ति जाता है। आरोग्य मित्र के पास वो लाभार्थी जब जाता है तो आरोग्य मित्र उसकी एंट्री करेगा, उसका बायोमेट्रिक आधार से उसका EKYC मैच किया जाता है और व्यक्ति का पंजीकरण योजना के अंतर्गत कर दिया जाता है और उसके सारे कागजात जो है अपलोड कर दिए जाते हैं। ऑनलाइन सिस्टम है इसका सारा, रियल टाइम बेसिस पे है, और अपलोड करने के बाद प्री ऑथोराइजेशन पैनल डॉक्टर के लॉगिन में वो चले जाता है, वो उसको चेक करेगा, उसको वो अप्रूवल दे देगा उसके बेस पे कि ट्रीटमेंट कर दिया जाए। अस्पताल के द्वारा उसका निःशुल्क इलाज कर दिया जाता है। निःशुल्क इलाज करने के बाद वो दोबारा से डिस्चार्ज पे वही आरोग्य मित्र के पास जाएगा और अब बायोमेट्रिक अपना अंगूठा का निशान लगाएगा और अपना डिस्चार्ज वहां से करवाएगा। साथ में वो आरोग्य मित्र उसके क्लेम फाइल जो भी उसके OT नोट्स हैं या अलग जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स हैं, जो भी डॉक्टर ने प्रोसीजर किया है उसका 3-4 दिन वो है कि उसको जो इलाज करवाया है वो उसकी फाइल वो अपलोड कर देगा, फिर वो क्लेम के लिए भेज देगा, तो वो क्लेम पैनल डॉक्टर के पास चला जाता है, वो उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद हमारे पास आता है, यहाँ से शिमला से SHA से उसको पेमेंट कर दी जाती है। तो ये सारा सिस्टम ऑनलाइन रहता है, लाभार्थी के कार्ड बनवाने से लेके अस्पताल में इलाज करवाने तक और अस्पताल को पैसा जाने तक सारा सिस्टम ये ऑनलाइन रहता है।
2: लेकिन हम सबको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोग जो हैं वो अनअवेयर रहते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, कि डिफिकल्ट एरियाज में वो रहते हैं, जानकारी उन तक पहुंचती नहीं है, तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और जैसे कि आपने बताया कि अस्पताल जाकर उनको क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपका क्या प्रोग्राम रहता है?
3: अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस योजना के अंतर्गत एक चीज रहती है, सबसे ज्यादा जो अवेयरनेस का है वो हमारी आशा होती है, जो स्वास्थ्य विभाग की आशा होती है, उसको इस योजना की पूरी जानकारी दी गई है क्योंकि वो घर घर जाती है सभी के पास और वो लोगों को इस योजना के बारे में बताती है कि आपकी ये योजना है। सबसे बेस्ट जो रहता है वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की बात हम करते हैं। मान लीजिए मेरे पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, मैं अपना इलाज निशुल्क करवा के आता हूँ, तो मैं अपने पड़ोसी को जरूर बताऊंगा जाके कि मेरे पास आयुष्मान भारत का कार्ड था, मैंने अपना निशुल्क इलाज करवाया, मुझे अस्पताल में पैसा न लगे, तो पड़ोसी भी देखेगा कि मेरा इसमें नाम है कि नहीं है। BMO लेवल पे जो मंथली मीटिंग्स होती है और पंचायत स्तर पे जो मीटिंग्स होती है उसमें हमारे BMO ऑफिस से व्यक्ति जाते हैं, जो फीमेल हेल्थ वर्कर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अगर हम बात करते हैं आशा जाती है, वो भी पंचायतों में इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं इस योजना के बारे में। हिमाचल के जो नागरिक हैं वो बहुत अवेयर हैं इस योजना के बारे में। अगर हमारे 100% सैचुरेशन अचीव की है हिमाचल जैसे राज्य ने यहाँ पे और इतना लोगों ने इलाज लिया है, एक पहाड़ी राज्य की बात है, 600 करोड़ पिछले 8 साल में छोटे से राज्य के लिए इतने बड़ा इलाज लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि इतने लोगों को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इसमें लाभ लिया है।
2: जी बिल्कुल, वाकई आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित भी होंगे। लेकिन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन ने भी बहुत सी चुनौतियां खड़ी की हैं, खासकर हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देखते हैं?
3: मुश्किलें आती है, हमें भी मुश्किलें आई थी, जो मैंने आपको बात बताई कि हमने घर घर लोगों को भेजा। अगर हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो सर्दियों का जो समय आता है जो 6 महीने वो बर्फ से कटा रहता है, कुछ हमारा जो स्पीति का एरिया है वो लोग कुल्लू आ जाते हैं या रामपुर चले जाते हैं, तो हमने लोगों को ढूंढ ढूंढ के कि आपका नाम आयुष्मान भारत बनारस में है वहां पे उनके हमने कार्ड बनवाए। मुश्किलें आई हमें क्योंकि इंटरनेट की समस्या रहती है, पहाड़ी एरिया है, क्योंकि ये योजना बिल्कुल ही ऑनलाइन चलती है।
2: नहीं, लेकिन इसमें सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। आपने बताया कि अस्पताल जाके भी ऑनलाइन ही सब कुछ अपलोड होता है, तो उसमें जो समय काफी बर्बाद होता है लोगों का, तो उसको चेक करने के लिए आपके पास क्या समाधान है?
3: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अगर हम बात करते हैं, डिजिटाइजेशन भारत सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, जिसमें की आभा मनाए जा रहे हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट करवाए जा रहे हैं। लगभग 65 लाख लोगों के आभा हिमाचल में बन चुके हैं। अभी जो समय की अगर हम बात करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, हमारे 53 अस्पताल हैं प्रदेश के, जिसमें की QR कोड के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसमें आभा ऐप कितने रखी है अपने पास, उसमें QR कोड स्कैन करेगा, उसमें लाइन को लगने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पर्ची यूज किया जाएगी और टोकन नंबर के थ्रू उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, इसमें डिजिटल होना बहुत जरूरी है, ऑनलाइन सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इतनी बड़ी योजना चलाई जाती है तो ऑफलाइन मोड पे ये योजना नहीं चल सकती है। व्यक्ति के जो इलाज के कागजात है वो सारे डिजिटली रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इतना समय भी नहीं लगता है, बट ये आसान चीजें कर दी गई है। क्योंकि इसमें देखिए, व्यक्ति का प्री ऑथराइजेशन से लेके उसका इलाज होने तक, अस्पताल को पैसा देने तक, सारी चीजें ऑनलाइन है। इसमें ऑफलाइन कुछ नहीं करना होता है, ट्रांसपेरेंसी पूरी है इस योजना के अंतर्गत कि सारी चीजें ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही सब कुछ जाता है, जो पैसा है उस अस्पताल के बैंक अकाउंट में चला जाता है। और तीसरी मैं एक चीज और बात करता हूँ, अगर हम निजी अस्पतालों की बात करते हैं तो इनकम टैक्स क्लॉज 194J है इसमें, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम किसी निजी अस्पताल को इन योजनाओं के लिए अगर हम पैसा देते हैं तो 10% TDS काटने का, जब निजी अस्पताल को पैसा जाता है तो ऑटोमेटिकली वो 10% TDS कट के चला जाता है और जो 10% है वो सरकार के खाते में जमा हो जाता है।
2: जी डॉक्टर भारती, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे डॉग बाइट पे जो खर्चा होता है वो तो लगभग सारे अस्पताल जो है वो फ्री में अब उपचार उसका कर रहे हैं, चाहे एंटी रेबीज वैक्सीन हो या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन जो गांव में लगाई जाती है, लेकिन स्नेक बाइट पे लोगों का बहुत खर्चा होता है। और देवेंद्र जी ने जैसे बताया कि आयुष्मान भारत में वो कवर्ड है, तो आपको क्या लगता है कि स्नेक बाइट विक्टिम्स जो हैं, क्या वो आयुष्मान भारत का लाभ उठा रहे हैं हिमाचल में?
4: डेफिनेटली हमने कभी ऐसी कंप्लेन नहीं आई कि कोई डॉग बाइट का विक्टिम है या एनिमल बाइट का या स्नेक बाइट का विक्टिम है, उसको कोई बड़ा ज्यादा खर्चा अपनी जेब से करना पड़ा, ऐसी कोई हमारे पास कोई इस तरह की कंप्लेंट आई नहीं है। इसका मतलब यही है कि लोग जो है इन योजना का फायदा उठा रहे हैं और अपने आप को जो है वो मौत के मुंह से बचा रहे हैं।
2: जी डॉक्टर भारती, आपको हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस के एक्सपर्ट ग्रुप का भी सदस्य बनाया गया है। भारत सरकार ने विभिन्न ऐसी बीमारियां जो नेग्लेक्टेड हैं, उनकी रोकथाम और निदान के लिए क्या कदम उठाए हैं और उससे पूरे भारत में और हिमाचल में उसका क्या असर हुआ है?
4: देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पहले डॉग बाइट स्नेक बाइट एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम नहीं था, तो ना तो इन बीमारियों की कोई मॉनिटरिंग होती थी ना ही कुछ पता चलता, तो इसी तरह से जो बाकी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज हैं उसमें मान लो मलेरिया है, लिशमेनियसिस है, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है और रेयर सेल डिजीजेज हैं, इस तरह की जितनी भी डिजीजेज हैं उन सबके भारत सरकार ने प्रोग्राम बनाए हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि उन सब प्रोग्राम्स का जो है वो लाभ गाँव तक, गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुँच रहा है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि उन सारी प्रोग्राम्स की, उन बेनिफिशियरी की, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग हो रही है। आज हम ये कह सकते हैं कि थैलेसीमिया से कितने बच्चे जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं, कितनों की डेथ हो रही है, प्रोग्राम किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जो 20 से अधिक राष्ट्रीय प्रोग्राम भारत सरकार के बने हैं, उन्होंने लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा गांव-गांव तक पहुंचाया है। और जैसे हमारी इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस है या इमरजेंसी सर्विसेज, अब भारत सरकार जो है वो लॉन्च करने जा रही है सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जितने भी अप टू CSC लेवल तक, जबकि लक्ष्य PSC लेवल तक है। तो मैं समझता हूँ जो ये रोड एक्सीडेंट है और जो इस तरह की इमरजेंसीज है, ताकि गोल्डन आवर में इमरजेंसी सर्विस में लोगों को ले जा सके, उनकी जान बचाई जा सके, तो एक बहुत एम्बिशियस जो प्रोग्राम भारत सरकार ने स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों के बेनिफिट के लिए चलाया है और आगे भी चला रहे हैं, दैट इज इन प्लान।
2: जी देवेंद्र जी, योजना से संबंधित जो शिकायतें आती हैं, जैसे कुछ लोग निश्चित रूप से करते होंगे और जिनको लाभ नहीं मिलता, तो उसके लिए आपके पास क्या प्रावधान है, वो कहाँ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं?
3: भारत सरकार का टोल फ्री नंबर है 1455,
2: जी
3: वहाँ पे जाके शिकायत कर सकते हैं। और एक CGRMS पोर्टल भारत सरकार के चलता है और एक PMO पोर्टल है, PG पोर्टल है, उस पे भी वो शिकायत कर सकते हैं। लेकिन मैं हिमाचल की अगर बात करूं तो हिमाचल में हमने इस तरह का सिस्टम बनाया है कि व्हाट्सएप ग्रुप हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाए, अस्पतालों में वो नंबर फ्लैश होते हैं, अगर किसी को कोई भी समस्या आती है तो वो उस ग्रुप के माध्यम से हम तक अप्रोच कर सकते हैं और इमीडिएटली उसकी समस्या को हम सुलझा देते हैं। और ग्रीवेंसीज की अगर हम बात करते हैं, ग्रीवेंसीज तो आइडली वैसे नहीं आती है, ये आती है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, आती कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, तो हम उसको रियल टाइम बेसिस पे ऑन द स्पॉट हम उसको रिजॉल्व करते हैं।
2: जी जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि लोगों के मन में डर रहता है कि जब उनको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल जाएंगे तो उनका खर्चा होगा, तो हमें लगता है कि जो आयुष्मान भारत है उसने लोगों के मन से ये डर भी खत्म किया है। और जो लोग लोग एक्सीडेंट विक्टिम्स को पहले उठाते नहीं थे, अब वो भी उठा के ले जाते हैं कि उनको लगता है कि हमें अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। तो इस दिशा में भी आयुष्मान भारत का एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो पूरे भारत में रहा है और हमारे प्रदेश में भी खासकर रहा है।
3: जी, जैसे आपने एक्सीडेंट की बात करी, भारत सरकार ने एक और योजना मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड एंड हाईवे है, पीएम राहत योजना अभी शुरू की है। उस योजना के अंतर्गत अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी चलाते हुए या गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो 1.5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क उस योजना के अंतर्गत हो रहा है।
2: जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए। श्रोताओं, इस चर्चा को अब हम यही विराम देते हैं। देवेंद्र जी और डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आकाशवाणी स्टूडियो में आए और आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस कार्यक्रम की परिकल्पना आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार प्रमुख रितेश कपूर द्वारा की गई।
0: अभी आप सुन रहे थे केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रसारण के 90 वर्षों के उपलक्ष्य पर लोक कलाकार कमर सिंह से सपना ठाकुर की भेंट वार्ता।
5: नमस्कार, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी ने न केवल समाचार और विचारों को जन जन तक पहुंचाया, बल्कि संगीत, संस्कृति और कला को भी नई पहचान दी। आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार जिन्होंने लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, दिलरुबा वादन जैसी अनेक विधाओं में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। कमर सिंह जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
6: नमस्कार।
5: कमर सिंह जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि रेडियो में आपकी रुचि कैसे पैदा हुई, कब से आपने रेडियो सुनना शुरू किया?
6: हाँ, सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जब से समझ लीजिए कि जब से मैंने होश संभाला है, क्योंकि हमारे पिताश्री ने एक रेडियो खरीद रखा था और मुझे याद है कि वो एक निप्पन कंपनी कोई जापान की थी, वो रेडियो उन्होंने खरीदा था और पूरे गांव में सिर्फ हमारे घर में ही रेडियो था। और उसमें कार्यक्रम जो भी आते थे वो कान में पढ़ते रहे। जब थोड़ा होश आया तो मुझे याद है कि शिमला रेडियो तो था नहीं उस जमाने में, और ये 60s की मैं बात कर रहा हूँ
5: जी।
6: तो वहाँ से एक कार्यक्रम चलता था, पर्वत की गूंज, और वो पर्वत की गूंज पूरा गांव इकट्ठा होता था उस सुनने के लिए, क्योंकि हिमाचल के कार्यक्रम उसमें ज़्यादातर, उस कार्यक्रम में हिमाचल के जो लोक गीत हैं वो प्रसारित होते थे। और बस वो कान में पढ़ते रहे, क्योंकि उस जमाने में हम लोगों ने स्कूल में उर्दू 6ठी क्लास से हमको शुरू हो गई थी, तो उर्दू, क्योंकि पिताजी हमारे उर्दू पढ़ाते थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई उर्दू मीडियम से ही की थी, चाहे वो गणित हो, चाहे समाज हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, वो उर्दू उनका मीडियम था, तो उनका तलफ़ुज़ जो था वो बहुत अच्छा था, तो हमको बहुत अच्छा वो अट्रैक्टिव लगता था। और मेरी भी रुचि उर्दू में बहुत अच्छी थी, और 3 साल उर्दू हमने का अध्ययन किया स्कूल में 8वीं तक। उसके बाद शायद उर्दू बंद हो गई, तो होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गई
5: जी।
6: स्कूल में तो उर्दू की वजह से हमारा जो उच्चारण जो था वो कुछ कुछ एक अदबी जुबान कह लो आप, वो उस वैसा वैसा एक बनने लगा कुदरती
5: जी।
6: तो कभी कभी रेडियो से गजलें आती थीं तो वो भी अच्छी लगी, हालांकि समझ नहीं थी इतनी उतनी, क्योंकि अरबी फारसी के शब्द तो नहीं समझ आते, लेकिन वो एक लहजा जो था वो हमारे मन को भाने लगा धीरे धीरे। फिर क्योंकि हमारे घर में पिताजी को संगीत का बड़ा शौक था, रामलीला हुआ करती थी वहाँ, तो रामलीला हुआ करती, तो उसकी वजह से हम में और भी थोड़ी रुचि उसमें होने लगी। तो कभी हारमोनियम बजाते, तो घर में हमारे हारमोनियम और तबला पिताजी ने रखा, तो वही था कि रेडियो में ये कैसे प्रसारण होता है, कैसे इसका क्या होता है, तो मालूम नहीं था ये। तो फिर जब मैं शिमला आया पढ़ाई करने, तो धीरे धीरे तब जाके पता लगा कि ये रेडियो का बहुत योगदान है। मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में या पूरे संसार में रेडियो आया तो लोगों तक ये जन जन तक ये पहुंचा है और हर तरह की सूचनाएं, हर तरह का संगीत, हर तरह की विधाएं जो है ना, फिर एक जुड़ाव हो गया।
5: पहली रिकॉर्डिंग और पहला प्रसारण का कुछ अनुभव आपको याद हो आकाशवाणी शिमला का?
6: जी जी, तो जब मेरी नौकरी हो गई शिमला में पढ़ाई करने के बाद, तो मुझे फिर ऐसा लगा कि मुझे अब थोड़ा रेडियो की तरफ जाना चाहिए, तो मैंने फॉर्म भर दिया। उस जमाने मुझे लगता है कि 50 रुपये शायद फीस हुआ करती थी, ऑडिशन फीस या कम थी पता नहीं, ऐसा कुछ था, भर दिया गया। तो उस वक्त गजल, गीत, भजन ये तीनों एक ही विधा में गिने जाते थे। अब तो अलग अलग हो गया, गीत भजन अलग हुआ और गजल अलग हो गई। तो फॉर्म भर दिया और मेरे को आकाशवाणी ने पास कर दिया। पर उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू हो गए, तो बड़ा योगदान है रेडियो का। फिर उससे मुझे पहचान भी मिली
5: जी।
6: पहचान मिली धीरे धीरे धीरे धीरे, फिर ग्रेजुअली मैं करता रहा उसको। क्लासिकल की तरफ रुझान हुआ, फिर वही सीखा है ना, और बाकी भी चीज़ें सीखी, सितार सीखी, दिलरुबा सीखा थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा तो नहीं सीखा, पर लेकिन मेहनत करने से फल उसका मिल गया, ऐसा हुआ।
5: कमर सिंह जी, कहा जाता है कि संगीत साधना, समर्पण और धैर्य मांगता है।
6: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
5: और आप लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, सेमी क्लासिकल,
6: जी जी जी,
5: सुगम संगीत,
6: जी जी,
5: इन विधाओं में पारंगत हैं, तो किस तरह से संतुलन आप बनाते थे?
6: हाँ,
5: अलग अलग धाराएं रही हैं ये, तो किस तरह से ये संतुलन बनाया, किस तरह से आप रियाज करते थे?
6: हाँ हाँ, ये पारंगत तो खैर इस विधा में कोई हो ही नहीं पाया आज तक, जितने भी बड़े बड़े हुए हैं वो सब यही कहे कि हम सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट ही बनकर रहना ज्यादा अच्छा है और सीखते रहना चाहिए, जितना सीखें अच्छा है
5: जी।
6: हाँ, टाइम देने की जहाँ बात है, क्योंकि ये सारा कुछ आपस में कनेक्टेड है, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो लाइट म्यूजिक हो, सेमी क्लासिकल हो, कोई भी संगीत जो कनेक्टेड है, क्यों, ताल और सुर दो चीज़ें हैं, और नृत्य भी बीच में ही आ जाता है, कि तीनों जो विधाएं हैं ना, इन तीनों कलाओं को समावेश है, तीनों को हम संगीत बोलते हैं। तो संगीत में ये सारी ही चीज़ें हो जाती, चाहे फोक हो, सुर तो वही साथ हैं, कुल मिला के वो 12 हो जाते हैं शुद्ध और विकृत करके, तो उसी में ही घूमना है सब, उसी में ही वो है।
5: तो
6: है
5: जब आप आकाशवाणी में पहली दफा आए रिकॉर्डिंग के लिए, आपको तब कैसा महसूस हुआ?
6: हाँ, थोड़ा हल्का सा भय तो होता ही है, क्योंकि माइक को जब फेस
5: कोई
6: करता
5: ऐसा
6: है,
5: अनुभव हो जो आप साझा करना चाहें?
6: हाँ हाँ बिल्कुल, जब माइक को फेस करता आदमी थोड़ी घबराहट तो होती है, लेकिन फिर दो चार रिकॉर्डिंग जब हो जाती है आदमी की, तो फिर वो उसका हौसला अफजाई हो जाती है। और खास करके जितने भी यहाँ रेडियो स्टेशन में स्टाफ आर्टिस्ट थे, उन्होंने बहुत सहयोग दिया, वो भी सीखना ही होता है, क्योंकि सीनियर कलाकार जो है जूनियर को जब सिखाएगा, उसके साथ सामंजस्य करेगा, तो फिर वो कलाकार सीखता ही है, पनपता ही है
5: जी,
6: ये
5: जी।
6: तो इसमें होता ही है।
5: आप काफी लंबे अरसे से आकाशवाणी शिमला से जुड़े रहे हैं, तो संगीत के क्षेत्र में और संस्कृति संरक्षण में क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की, और कलाकारों के लिए क्या योगदान रहा है आकाशवाणी शिमला
6: का? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है, मुझे लगता है कि इसके बराबर कोई दूसरा योगदान है नहीं। तो हर कला को विकसित करने में आकाशवाणी का बड़ा रोल रहा है और रह रहा है और आगे भी रहेगा, है ना?
5: आकाशवाणी ने अनगिनत कलाकारों को मंच प्रदान किया।
6: बिल्कुल बिल्कुल,
5: आकाशवाणी के इसी मंच से बहुत से कलाकारों ने अपना नाम कमाया है।
6: बिल्कुल।
5: तो आपको क्या लगता है कि आकाशवाणी ने आपको किस तरह से प्रोत्साहन दिया?
6: हाँ,
5: इसमें आगे बढ़ने के लिए।
6: हाँ, आकाशवाणी ने मुझे इतनी पहचान दी, मुझे माइक को फेस करना आया, माइक के सामने कैसे गाना स्टूडियो में, उसके साथ साथ फिर हौसला जब आदमी का खुल जाता है, तो वो स्टेज पे भी अच्छी परफॉर्मेंस देने लगता है। और इसी आकाशवाणी की वजह से जो पहचान मिली है, वो देश विदेश, मैं करीब करीब मुझे लगता है 7-8 विदेशों में, देशों में जा चुका हूँ, और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत बड़ी देन है आकाशवाणी की कि मैं इतना आगे तक जा पाया।
5: आकाशवाणी से जुड़ा संगीत जीवन का कोई ऐसा यादगार अनुभव जो आज भी आपके दिल के करीब हो?
6: हाँ, आज तक जितने भी डायरेक्टर्स यहाँ आए हैं शिमला रेडियो पे, जिन्होंने अपना कार्यकाल निभाया है, वो इतने प्रसन्न हुए मेरी इस प्रस्तुति से, तो काफ़ी मुझे उनसे प्यार मिला, सबसे ही मिला, और ये था।
5: अच्छा, गायकी के साथ साथ जैसे आप लोग गीत भी गाते हैं आकाशवाणी के माध्यम से
6: जी,
5: और आपने एक दिलरुबा वादन
6: जी जी जी,
5: जिसे हम कहते हैं कि वाद्य
6: जी जी,
5: उसमें भी आप निपुण हैं, तो इसकी क्या विशेषता रही और कहाँ से आपके मन में आया कि इसे भी सीखा जाए?
6: हाँ हाँ, ये जो जितने भी ये बोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें एक अलग ही कशिश होती है, चाहे वो सारंगी हो चाहे वायलिन हो, तो और दिलरुबा क्योंकि सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है, और इसराज और दिलरुबा सिर्फ थोड़ा सा ही उसमें आकृति में ज़रा सा कहीं फर्क होता है, वैसे वो एक जैसा ही है, और वो दोनों की पूर्ति कर देता है। सारंगी का आभास हो जाता है हल्का सा, तो क्योंकि उसमें फ्रेट्स लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, सारंगी में पर्दे नहीं होते, वो थोड़ा मुश्किल वो है। निपुणता, जहाँ तक निपुणता, निपुण तो बड़ा मुश्किल है निपुण होना, और कहना भी नहीं चाहिए कोई निपुण हो गया, सब यही कह के गए हैं
5: शिक्षार्थी बनकर।
6: हाँ,
5: रहे
6: हाँ, हमेशा एक
5: बस, अगर हम शिक्षार्थी बनकर रहते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते
6: हाँ,
5: हैं।
6: हाँ हाँ
5: जी
6: हाँ, क्योंकि बस उसकी निपुणता ये है कि वो अच्छा काम करके जब जाता है तो वो जो काम है ना वो अपने आप में निपुण होता है, लेकिन कलाकार कभी अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं निपुण हूँ।
5: लोकगीतों की ओर आपका रुझान कैसे रहा? जैसे आपने कहा कि मेरा उर्दू का वो लहजा रहा
6: जी
5: था।
6: जी जी,
5: आप कैसे जुड़े लोकगीतों हाँ, की ओर?
6: तो हमारे यहाँ पैक्स थे मिस्टर भारद्वाज जी, तो उनको लगा कि ये आवाज़ जो है, हम अगर हम इसको थोड़ा लोक संगीत की तरफ वो डाइवर्ट करें तो कैसा लगेगा, एक तजर्बा किया गया। तो जब मैंने गाया तो वो लोगों को भी पसंद आया, श्रोताओं को पसंद आया, चिट्ठियाँ आने लगी, तो भारद्वाज जी बड़े खुश हुए कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, आप इसको करिए
5: जी।
6: हाँ, तो फिर मेरा रुझान इस तरफ भी हुआ,
5: लोकगीत की तरफ,
6: लोकगीत तरफ भी हुआ, और अब क्योंकि हमारी संस्कृति है लोकगीत, तो कहीं का भी लोकगीत है वहीं के लोगों को वो गाना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारी एक, एक
5: हमारी पहचान है,
6: पहचान
5: है
6: हमारी, एक इसको क्या कहते हैं कि मूल पहचान हमारी लोकगीत है, क्योंकि उसमें संस्कार गीत आ गए, सारे ही आ जाते हैं, प्यार मोहब्बत के गीत भी हैं, प्रकृति के गीत भी हैं,
5: सावन के गीत आपने लिखे
6: हाँ,
5: हैं।
6: हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
5: इस मास का गीत हमारे आकाशवाणी से प्रसारित होता था, जैसे कि आपने कंपोज भी किए हैं गीत।
6: जी जी, तो मुझे ये भी लगा कि मुझे थोड़ा कंपोज करना चाहिए, जो जो कंपोज किया वो पसंद आने लगा, फिर मुझे कहा गया कि आप इसमें फॉर्म भर दीजिए, तो मैंने फॉर्म भर दिया, तो फिर हो गया, फिर वो अप्रूव हो गया।
5: हम आपसे यही तो कह रहे हैं
6: जी जी, हाँ जी,
5: लोक संगीत, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाइट म्यूजिक, इन अलग अलग धाराओं में आप कैसे बहे?
6: जी जी, हाँ जी,
5: आपने मेहनत की, आपने रियाज किया, आपकी रुचि इसमें पैदा हुई, तभी आपने नाम कमाया।
6: जी जी, आकाशवाणी शिमला का ही योगदान था ये।
5: हाँ जी, हाँ, हाँ जी,
6: है ना, उसको करने में, क्योंकि अगर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो फिर वो बात वहीं दब जाती है, खत्म हो जाती है। हाँ।
5: कमल सिंह जी, जैसे कि लोक संगीत हमारी मिट्टी की खुशबू है,
6: बिल्कुल बिल्कुल,
5: आज की युवा पीढ़ी को लोक संगीत और पारंपरिक वाद्यों से जोड़ने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए?
6: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि अपनी लोक विधाओं को कभी मत छोड़ें, आप सारा म्यूजिक सुने, चाहे वो पाश्चात्य हो, चाहे वो अपना हमारे देश के अलग अलग हिस्सों का हो, लेकिन जो हमारी एक पृष्ठभूमि है उससे अलग नहीं होना चाहिए
5: जी,
6: उससे अलग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पहचान है, है ना, और
5: जी,
6: हमारा वजूद भी वही है
5: जी,
6: बाकी सब करिए आप, वो कोई मना ही नहीं है, वेस्टर्न भी अच्छा है, हिंदुस्तानी तो खैर वो है ही अच्छा, है ना, उसके बाद बाहर का संगीत भी आप करना चाहें तो करें आप, लेकिन हर चीज़ को बैलेंस करके करें, खाली अगर ड्रम की बीट बहुत ज़्यादा तो कान भी फिर खराब हो जाते हैं ना, तो ये हर चीज़ को बैलेंस करके उसको एक कितना क्या होना चाहिए उसी हिसाब से चिंतन करें, उसी हिसाब से उसको रखें।
5: 90 वर्षों की इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं आकाशवाणी की?
6: हाँ, ये बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव है, और ये निरंतर चिरकाल तक चलता रहना चाहिए बराबर।
5: लोक संगीत में, संगीत में क्या आकाशवाणी का योगदान रहा?
6: बहुत बड़ा योगदान रहा। सारे जितने भी हमारे यहाँ के कलाकार हुए हैं हिमाचल के, उन्होंने एक बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है रेडियो के ही माध्यम से, आकाशवाणी के ही माध्यम से, और ये पहचान है हमारी।
5: बिल्कुल सही कहा।
6: और ये चलता रहना चाहिए, निरंतर प्रवाह चलता रहना चाहिए।
5: आजकल के युवा कलाकार हैं और संगीत सीखने वाले जो युवा हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप?
6: उनको ये कह रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें, बहुत जल्दबाजी ना करें। हाँ, जल्दी जल्दी में तो फिर ऐसे ही होता है कि गर्म गर्म खाएंगे
5: और धैर्य की आवश्यकता है।
6: हाँ हाँ हाँ, धीरे धीरे धैर्य रखें, धीरे धीरे टाइम जब आएगा तो अपने आप रंग लाएगी चीज।
5: कमर सिंह जी, आज आपने अनुभव, विचार और संगीत यात्रा की सुंदर बातें आज हमारे साथ साझा की। आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
6: नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। आप आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे।
7: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के

0: काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
0: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Charge d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
1: Union Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route. He also emphasized for ensuring adequate arrangements for all essential services including pilgrim registration, accommodation, healthcare facilities and disaster management. With Dipendra Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
5: Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata on the occasion of 12 years of the NDA government at the centre. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. He said that by giving fair price, West Bengal government is taking the lands from common people and handing it over to the BCF. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
6: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken Snake Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
5: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today we focus on the measures taken by the government towards positioning India as a global leader through its foreign policy. A report.
7: Over the last 12 years, India emerged as a formidable global leader driven by bold initiatives that fuse ambition with action. Prime Minister Narendra Modi's leadership has anchored these efforts in responsibility and inclusivity, ensuring India's voice resonates across global platforms. India strengthened its old relationship while making new friends, infusing fresh energy into India's foreign policy while keeping the principle of India first supreme. Humanitarian assistance and disaster relief operations are a vital part of India's global engagement. Cyclone Dithwa made landfall on the eastern coast of Sri Lanka in November 2025, leaving hundreds dead, thousands displaced, and critical infrastructure damaged. Standing in solidarity with the people of Sri Lanka, India launched Operation Sagar Bandhu to provide immediate humanitarian assistance and disaster relief to Sri Lanka. The effort brought together the Indian Navy, Air Force, Army, and disaster response team in a coordinated rescue and relief operation. India provided comprehensive support to Sri Lanka, including immediate relief supplies, medical aid, search and rescue assistance, and restoration of damaged infrastructure. Thanking the Indian government, Sri Lanka's Deputy Minister for Ports and Civil Aviation, Janith Ruwan Kodithuwakku, stated that India had shown immense warmth and solidarity toward the people of Sri Lanka.
8: We are very thankful to India because since the day this Dithwa happened, opened their warm heart to us and we really appreciate their help. We are very good friend of India and we would like to extend our thanks to Indian government and the Indian people on behalf of Sri Lankan government and the Sri Lankan people.
7: The major highlight of India's foreign policy came during the COVID-19 crisis. India launched the Vaccine Maitri initiative as a testament to its human diplomacy. Since January 2021, India has supplied over 30.12 crore vaccine doses to 99 countries and two UN bodies. This included 1.51 crore doses gifted to over 50 nations and 5.2 crore doses through COVAX mechanism. Talking to Akashwani News, Dr. Jyotishko Biswas, a physiotherapist and yoga teacher based in Bangladesh, said that the rapid dispatch of the vaccines from India was a profound gesture of goodwill.
9: India jo kiya hamare liye vaccine.
10: At that time, India made a fast response and sent the vaccine to us. us. I also took that vaccine. It was very good for us, our relatives and all the countrymen. It was a very nice gift from India to the world. So for this, we are very grateful. Best wishes to the Indian government and the people. Many, many thanks to India.
11: India government and people ke liye bahut bahut dhanyawad.
7: In the last 12 years, India has stepped up as a global leader through impactful initiatives like Vaccine Maitri and Operation Sagar Bandhu that blend vision with execution. Its commitment to humanitarian aid and regional partnership is anchored in the civilization ethos of Vasudev Kutumbakam. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
5: Union Minister for Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat has said that the Modi government is committed to the conservation and restoration of India's cultural heritage. In an exclusive interview with Akashvani News, he said, under the mission to bring back stolen or smuggled antiquities from abroad, 670 sculptures and artifacts have been brought back so far. Mr. Shekhawat expressed confidence that this number will cross 1,000 by the end of this year.
12: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको ज्ञान भारतम मिशन
13: अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दिस इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन मिशन मोड अंडर द नेम ज्ञान भारतम मिशन वी आर डिजिटाइजिंग आवर मैन्युस्क्रिप्ट्स इन दिस विजन डिजिटाइजेशन डज नॉट मेयरली मीन क्रिएटिंग अ डिजिटल कॉपी और स्टोरिंग अ डिजिटल वर्जन ऑफ दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स रादर द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग देम इनटू अ कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट
12: को आसानी से ट्रांसलिटरेट किया जा सके.
5: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. External Affairs Ministry today summoned Charge d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. Our correspondent has the details.
14: The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The ministry said such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The U.S. Charge d'Affaires was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operate in the region, take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
5: As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem, with over 2,55,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. A report.
15: Several reforms brought by the government over the last 12 years, from the launch of Startup India, establishment of Atal Incubation Centers, the Fund of Funds, and the simplified compliance norms, have transformed India's entrepreneurial landscape beyond recognition. The ecosystem today spans deep technology, space, defense, agri-tech, health tech, and clean energy. Among those that will be spotlighted at the summit is MedUp Plus, a medtech startup that has developed a comprehensive, portable eye screening device now being adopted across India, Europe, and USA. Built mostly on government support without any venture capital funding. Talking exclusively to Akashvani News, co-founder Ravi Kiran spoke about how the government platform gave their innovation the visibility.
16: When we started, the early stage startups were given a high priority and the government was focusing more on early stage startups, and the government is learning very quickly. Modi ji has started putting a lot of efforts towards not just the early stage startups but also the mid stage.
15: It may be noted that India-France Year of Innovation, of which this summit is the centerpiece, seeks to deepen collaboration between the two nations in emerging technologies, startups, and scientific research. This is Shailesh Menon, Akashvani News, Nice, France.
5: A Seoul court has sentenced former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison today after finding him guilty of ordering drone incursions into North Korea to escalate tensions and justify his December 2024 martial law declaration. The Seoul Central District Court convicted the jailed former president on charges of benefiting the enemy and abuse of power. Former Defense Minister Kim Yong-un also received a 30-year sentence for his role in the operation. On to sports. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Shen Suyu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will next face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final match. Yamaguchi defeated India's Tanvi Sharma in the quarter-final clash today. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin tonight, with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgewood.

जी हाँ, आज हम आपको सुनवा रहे हैं। वर्ष 1986 में प्रदर्शित हिंदी फिल्म मजलूम के कुछ चुनिंदा गीत। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सीपी दीक्षित ने किया था। फिल्म में उस दौर के लोकप्रिय कलाकार जैकी श्रॉफ, अनीता राज, नसीरुद्दीन शाह, शक्ति कपूर और अरुणा ईरानी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। इस कहानी में संघर्ष एक व्यक्ति का दिखता है जो परिस्थितियों का शिकार बनकर अन्याय और अपराध के जाल में फंस जाता है।

मजलूम फिल्म के गीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। मजलूम फिल्म की कहानी समाज में व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार और एक आम इंसान की बेवसी को उजागर करती है।

मजलूम फिल्म यह संदेश देती है कि सत्य और न्याय की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंततः जीत सच्चाई की ही होती है। फिल्म का संगीत भी दर्शकों को काफी पसंद आया था। इसके गीतों में उस समय के संगीत का मधुर स्वरूप सुनाई देता है, जो आज भी पुराने फिल्म संगीत प्रेमियों को आकर्षित करता है।

इस फिल्म के लिए गीत लिखे श्याम वालकर ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पार्श्व गायक गायिकाएं हैं मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, शब्बीर कुमार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। अब समय है कार्यक्रम कारवां सुरों का। जी हाँ, ये फिल्म संगीत हम लेकर हाजिर हैं और ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति। प्यार तो होना ही था। इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर। आवाजें हैं आशा भोसले और उदित नारायण की। बोल हैं समीर अंजान के और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

कारवां सुरों का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी धर्मशाला के साथ ही। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ गुनगुनाते रहिए। तो ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत आपके रेडियो सेट्स पर। दिल है तुम्हारा इस फिल्म का गीत, आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और गीत लिखा है समीर ने।

अलका यज्ञिक बाबुल सुप्रियो, कविता कृष्णामूर्ति की मिलीजुली आवाजों में जीना सिर्फ मेरे लिए, इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

ये संगीत है आनंद श्रीवास्तव का और मिलिंद श्रीवास्तव का। आवाजें हल्का यज्ञिक और मोहम्मद अजीज विनोद राठौर की। मृत्युदाता इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर और यह है इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, क्योंकि इसके बाद हम आज प्रसारित करेंगे बॉलीवुड बीट्स, नई फिल्मों से गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। रात्रि के 10 बज चुके हैं, समय है बॉलीवुड बीट्स कार्यक्रम का। नई फिल्मों से गीत लेकर हम हाजिर हैं, तो ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति। तमाशा फिल्म से ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर, आवाजें हल्का यज्ञिक और अरिजीत सिंह की। बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत से सजाया है AR रहमान ने।

टॉयलेट एक प्रेम कथा। इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर आवाज़ें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। संगीत दिया है विक्की प्रसाद ने और बोल हैं सिद्धार्थ और गरिमा के।

बचना ऐ हसीनो इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन व साथियों का गाया हुआ, और ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

जर्सेज फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं। आवाजें हैं सचेत परंपरा के और संगीत यह है सचेत परंपरा नहीं, बोल हैं शैली के।

तो ये थी बॉलीवुड बीट्स की आखिरी पेशकश। जी हाँ, 30 मार खान फिल्म से ये गीत हमने लिया था और बोल थे अन्विता दत्त के और संगीत से सजाया था विशाल शेखर ने। आवाजें थी प्रजाक्ता सुक्रे, हर्षित सक्सेना, अभिजीत सावंत और दिवजीत साहा की। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है फिल्म बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं, समय है कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। तो ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपके रेडियो सेट्स पर।

मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और संगीत से सजाया था मदन मोहन ने, और इस गीत को गाया था मोहम्मद रफी ने। आखिरी ताव फिल्म से ये गीत हमने लिया था। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की मिलीजुली आवाजों में।

0: जाल फिल्म से ये अभी गीत आप सुन रहे थे, संगीत दिया था सचिन देव वर्मन ने और बोल थे साहिर लुधियानवी के। कार्यक्रम का अगला गीत आर पार फिल्म से आपके रेडियो सेट्स पर। आवाजें हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफी की।
1: जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है, मोहब्बत कर लो, जी भर लो।

पुनर्मिलन इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। बोल हैं इंदिवर के और संगीत दिया है सी अर्जुन ने।

ये संगीत है मदन मोहन का, बोल हैं साहिर लुधियानवी के, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत है। गज़ल फिल्म से ये गीत हमने लिया है।

ये रही चित्रपट संगीत की आखिरी प्रस्तुति काजल फिल्म से, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत दिया है रवि ने और बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत संपन्न करने की दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त रेनुमन कोटिया को। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
4: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
3: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. External Affairs Ministry today summoned Shah Jade Affair of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security, and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The Shah Jade Affair was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operating in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup.